आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की छठी तिथि, तदनुसार 28 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह की 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016

0: के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक

0: संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिनः। वाचन स्वर प्रेम कुमार सडाना का है।
2: सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय मनीषा की इस चिंतन धारा में सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो। न केवल समस्त धरती पर रहने वाले मनुष्य ही समाये हुए हैं, न केवल प्राणी मात्र, अपितु समस्त सृष्टि जिसमें पशु पक्षियों के साथ ही साथ जल और समस्त हरितिमा को सजाने वाले पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं, ये वासुदेव कुटुंबकम का प्रत्यक्ष श्रेष्ठ उद्घोष है। इस सारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी एक कुटुंब के समान ही नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति एक कुटुंब ही है। एक व्यक्ति का दुख सबका दुख है और धरती के एक छोर पर रहने वाले एक व्यक्ति का सुख धरती के दूसरे छोर पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति के सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण और संचार सुविधाओं ने जिस सत्य को आज हमारे सामने इतने करीब ला दिया है, उस सत्य को सृष्टि को रचने वाले ने सबसे पहले ही स्थापित कर रखा है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सागर, ये नदियां, ये पहाड़, ये जंगल, ये निरंतर अपने अनुशासन में बदलता मौसम का चक्र, पूरे संसार में एक सी व्यवस्था चल रही है और सह अस्तित्व में ये सारा संसार गुथा हुआ है। हिमालय की बर्फ पिघलती है या हिमालय के पहाड़ों के जंगल कटते हैं तो बलशाली अमेरिका भी चिंतित होता है। बूंद जब बादल से धरती की ओर गिरती है, जब नदी सागर से मिलने दौड़ पड़ती है, उसमें वासुदेव कुटुंबकम की गूंज सुनाई देती है। वृक्ष पर जब फूल खिलता है या फल पकता है तो उसमें भी वासुदेव कुटुंबकम की सुगंध और मिठास फैल जाती है। संसार के समस्त मनीषियों ने, युग प्रवर्तकों ने, धर्मों ने, मजहबों ने इसी भावना का प्रतिपादन किया है। सारी मानव जाति एक कुटुंब के समान है। सभी प्राणियों में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ताकि इस पृथ्वी पर मानव जाति बनी रहे और अपने सर्वोच्च को प्राप्त कर सके। मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने अब तक जितना विकास किया है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना ही मूल तत्व के रूप में विद्यमान रही है। किंतु ये भी सत्य है, मनुष्य में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां साथ साथ रहती हैं और इन आसुरी प्रवृत्तियों ने मानव जाति का कोई कल्याण नहीं किया है। युद्ध और नरसंहारक शस्त्रों की होड़ ने समस्त मानव जाति को भयग्रस्त कर रखा है। इसी भय से मुक्त होने और शांति के साथ मानव कल्याण को दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सृजन किया गया। हम भारतीयों ने

0: वासुदेव के विराट स्वरूप की कल्पना करके जिस तरह सारी मानव जाति सहित समस्त सृष्टि को एक कुटुंब माना है, उसी को वेदों की ऋचाओं में इस तरह प्रतिष्ठित किया गया है। हम सबकी कल्पना एक हो, हृदय एक हो, मन समान हो, जिससे उपजे सुंदर सम्मति, सह अस्तित्व भावना सब में गतिमान हो। यही वो भावना है जो सुनामी की लहरों के आतंक को दूर करने के लिए सारी दुनिया एक कुटुंब की तरह बन गई और एक दूसरे की सहायता की। सारी मानव जाति का कल्याण हो। ओम शांति।
1: अभी आप सुन रही थी आज का चिंतन, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वाचन स्वर प्रेम कुमार सडाना का था। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मातृ वंदना से।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब करते हैं सुमिरन विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन। भक्ति एक ऐसा दीपक है श्रोताओं, जो मन के सारे अंधकार को मिटाकर जीवन में सच्ची शांति और प्रकाश लाता है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। जहां महादेव का नाम है, वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

संवेद स्वर में इस भजन के बाद आइए आनंद लेते हैं महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में आरती कुंज बिहारी की।

इसी के साथ श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज दिनांक 28 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण समय संबंधी जानकारी।

0: प्रातःकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र रागिणी। समय रहेगा सुबह के 7:10। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:20 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर और शाम 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा शाम 6:50 पर और कुमावनी में आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत में सुबह 7:30 पर सुनिएगा लीला देवी के स्वर में कुमावनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीत सुनिएगा सुबह के 9:00। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल पर विशेष सीरीज आप सुनेंगे सुबह के 9:10 पर। ये NSD की प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम को हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:45 पर आज आप सुनेंगे अल्जाइमर रोग लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर कृति गुप्ता से रमेश चंद्रा की बातचीत। AIR न्यूज हेडलाइंस का समय रहेगा सुबह 10:00, दोपहर 12:10, अपराह्न 3:00 और शाम 4:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह के 10:02, दोपहर 1:15, रात 8:30 और रात 9:30। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर सुनिएगा समूह स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रस्तुत किया जाएगा सुबह के 11:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:12 पर आप सुनेंगे अनन्या भटनागर के स्वर में भजन। हमारी बहनों का कार्यक्रम घर गृहस्थी सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। आज के अंक में होगा श्रीमती नीलम द्वारा काव्य पाठ। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा दोपहर 1:30। कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनिएगा दोपहर के 2:30। आज कार्यक्रम में बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के बारे में। अपराह्न 3:02 पर प्रस्तुत करेंगे नाटक सरफरोशी की तमन्ना। आलेख VK डोभाल का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे रमेश चंद्रा। कार्यक्रम गाने नए तराने सुनिएगा अपराह्न 3:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाम 4:02 पर आज आप आनंद ले सकेंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान द्वारा ख्याल गायन का। ये प्रस्तुत करेंगे राग सावनी नट और जैत कल्याण। शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम में आज होंगे पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के कुछ चुनिंदा गीत। श्रोताओं, ये जानकारी थी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षम् नरेंद्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बरमासस्य अष्टाविंशति नवविंशति दिनाङ्कयोः भारतीयसैन्यबलम् उरिप्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलङ्घ्य आतङ्कवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिकप्रहारस्य सङ्कल्पः एव बालाकोट् वायुप्रहारस्य अथ सिन्दूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
2: दस वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 सितंबर सितंबरमासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुम्बय्याः 21-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमन्त्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिलभारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगिततां अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मन्त्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय सम्बन्धान् उच्चस्तरं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया

0: मन्ना डे और आशा भोसले के युगल स्वर में आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था लाल पत्थर। गीतकार नीरज थे और संगीत था जय किशन का। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र रागिनी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: फिल्म दस्तक से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे मजरूह और संगीत था मदन मोहन का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्ररागिनी संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:20 होने को हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोही और पोर्टर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। हरिद्वार जिले में तिलोत के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 10 घायल। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी और देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब समाचार विस्तार से। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तरकाशी व बागेश्वर जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में 179 पर्वतारोही ट्रैकर्स फंसे हुए हैं। रविवार देर रात तक खोज एवं बचाव अभियान जारी रहा। आज सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कल देर रात उच्च हिमालय क्षेत्र में फंसे ट्रैकर्स के रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही हेलीकॉप्टरों के माध्यम से रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू अभियान के दौरान सभी ट्रैकर से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए और उनकी लोकेशन, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यकताओं की नियमित जानकारी ली जाए। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तरकाशी जिले में 10 ट्रैकिंग दलों के 136 ट्रैकर्स और बागेश्वर जनपद में 3 दलों के 43 ट्रैकर्स, कुल 13 ट्रैकिंग दलों के 179 ट्रैकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। सभी ट्रैकर्स की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित जनपदों में रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया है। उधर पिथौरागढ़ के मुन्ना बैंड के पास भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बाधित होने पर SDRF ने करीब 500 यात्रियों को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचाया। यात्रियों की आवाजाही के लिए जवानों ने रस्सी के माध्यम से सुरक्षित रास्ता तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन के में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने ये बात कल नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में उत्तराखंड के प्रवासी बुद्धिजीवियों से संवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विकास यात्रा में प्रवासी उत्तराखंड वासियों एवं प्रबुद्ध जनों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को राज्य के विकास में उपयोगी बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन, स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य की मजबूत कनेक्टिविटी को निवेश के लिए महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली के बीच यात्रा का समय काफी कम हुआ है। देहरादून से देश के प्रमुख शहरों के लिए 50 से अधिक हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान प्रवासी उत्तराखंड के लोगों ने राज्य के विकास के लिए सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुझावों का विकास योजनाओं में समावेश किया जाएगा। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र के माणा पास में पहली बार भारतीय खेल प्राधिकरण ने फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत MTV चैलेंज 2026 के दौरान संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत श्री बद्रीनाथ धाम से हुई। बद्री विशाल के रावल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

0: साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिमालय की ऊंचाइयों से फिटनेस के सीमांत गांव तक फिट इंडिया की पहल एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना था। माणा पास एमटीवी चैलेंज के फाउंडर अजय भट्ट के अनुसार यह न केवल एक साइकिल कार्यक्रम है बल्कि सीमांत क्षेत्र के गांव में नई ऊर्जा, नई पहचान और नई पहल का संचार करना है जो भविष्य में रोजगार का भी जरिया बनेगा। प्रदेश में बारिश और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बारिश से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजीवन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग पूर्ण समन्वय के साथ 24 घंटे अलर्ट मोड पर कार्य करें। उन्होंने राज्यभर में वर्षा की स्थिति, नदियों के जलस्तर, बंद सड़कों, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों, राहत एवं बचाव कार्यों, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, संचार व्यवस्था व अन्य आवश्यक सेवाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने वर्षा व अतिवृष्टि से हुई क्षति का आकलन कर सूचना शीघ्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी और देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येल्लो अलर्ट जारी किया है। मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
1: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार जिले में तिथोला गांव पेट्रोल पंप के पास कार और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया जहां से 6 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है जबकि चालक फरार बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के राट क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने चाकड़ीसैंण तहसील के डुंगरी तल्ली गांव में 23 प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके बावजूद डॉ रावत पैदल प्रभावित गांव पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। डॉ रावत ने कहा कि क्षतिग्रस्त रास्तों और संपर्क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराया जाए। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और राहत और पुनर्वास तथा मूलभूत सुविधाओं की बहाली के कार्यों में कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद डॉ रावत ने पैठाणी में युवा संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने तथा नशे से दूर रहने की अपील की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित हो रहा है। विश्व पर्यटन दिवस पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पर्यटन को नया स्वरूप देने की दिशा में प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना स्थानीय स्तर पर रोजगार का माध्यम बन रही है। वर्तमान में प्रदेश में 6,000 से अधिक पंजीकृत होम स्टे संचालित हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 ट्रैकिंग मार्गों की जीपीएस और जीआईएस मैपिंग के लिए हाल ही में दल रवाना किए गए हैं। इनमें 50 मार्ग गढ़वाल और 50 कुमाऊं में शामिल हैं। मैपिंग के आधार पर मोबाइल ट्रैकिंग नेविगेशन ऐप और द ट्रैक्स ऑफ उत्तराखंड कॉफी टेबल बुक तैयार की जाएगी। इसे ट्रैकिंग मार्गों की सटीक जानकारी उपलब्ध होने के साथ ही सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मंगलवार 29 सितंबर को देहरादून में सेवानिवृत्ति केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों के साथ त्रैमासिक वॉर्ब बैठक आयोजित करेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि बैठक में विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की समस्याओं व कल्याण से जुड़े विषयों को सुना जाएगा। अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मन की बात कार्यक्रम को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, मोदी के मन की बात में

0: आए माणा और बगोरी, प्रधानमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में हो रहे बदलाव और डिजिटल जागरूकता का उदाहरण दिया। एसआईआर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, एसआईआर पर भ्रम नहीं, चुनाव आयोग के एक मत फैसले पर बात करे कांग्रेस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। हरिद्वार जिले में तिथोला के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 10 घायल। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी और देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाचार हुआ समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पर्वतीय लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शैल संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे लीला देवी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: निकलकर सामने आई है आपदा के बाद।
1: पापा, आज स्कूल बंद है, रास्ते में भूस्खलन हो गया है।
2: बेटा, अच्छा हुआ जो तुम समय पर घर आ गई।
1: अच्छा, अगर कभी हम भूस्खलन में फंस जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले घबराना नहीं, भूस्खलन से दूर सुरक्षित जगह पर जाओ। ढलान, टूटे पेड़ और चट्टानों के पास बिल्कुल मत रुकना। और हाँ, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वाहन धीरे और सावधानी से चलाना चाहिए।
1: लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए और निकलना मुश्किल हो तो?
2: ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहो और तुरंत मदद के लिए 112-1070 या 1077 पर कॉल करो। और हाँ, मोबाइल में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड रखो ताकि मौसम और आपदा से जुड़ी चेतावनियाँ समय पर मिल सकें।
1: समझ गई, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: बिल्कुल बेटा, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: बता दें, मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
3: LIC की अमृत बाल ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में जोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC, हर पल आपके साथ।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत। और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं लीला देवी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: LIC की अमृत बात ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में चोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC हर पल आपके साथ।

0: श्रोताओं, पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लीला देवी के स्वर में कुमावनी लोकगीत। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
3: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
3: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा

0: एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
1: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
4: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके

0: खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 30 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
6: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
5: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to activist Ashok Singhal. In an article for an English daily, Mr. Modi said Ashok Singhal's life reflected a cherished ethos. The pursuit of others' welfare acquires far greater meaning than individual achievement. Mr. Modi said that starting from yesterday, the nation marks to celebrate the birth centenary of the outstanding personality of Ashok Singhal. The Prime Minister added that Ashok Singhal worked towards strengthening social unity and equality. He said that Ashok Singhal was blessed with the clarity of thought that there could be no distinction of any kind in society and every individual deserved equal dignity and respect. The Prime Minister said it was his privilege to get innumerable opportunities to interact with Ashok Singhal. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association. In a social media post, the All India Banks Employees Association said that this decision was taken after a meeting held between the Indian Banks Association and the United Forum of Banks Unions last night on the issues related to the strike. The centre has launched a project to build a national digital public infrastructure for the tourism sector, which will enable users to access a wide range of products and services on a shared digital space. The Ministry of Tourism has joined hands with the Open Network for Digital Commerce to build the National Digital Tourism Stack with a target to bring and onboard 23,000 tourism experiences and homestays and make them discoverable, trustable and bookable by the end of 2028. More from our correspondent.
7: Union Tourism Minister Gajendra Shekhawat launched the project at a function held at the Bharat Mandapam to mark World Tourism Day yesterday. The National Digital Tourism Stack, being developed in collaboration with the ONDC and with the support of the International Centre for DPI Innovation and Advancement, aims to make India's tourism offerings more discoverable, accessible and trustworthy. Envisaged as a collaborative effort involving the ministry, states, union territories and the industry, the programme will be implemented in phases. Tourism Secretary Bhuvnesh Kumar said artificial intelligence will be on the front end of the project. He said the vision behind the National Digital Tourism Stack is one ticket, one pass to bring all of India together in a single journey. Esika Shaw, Akashwani News, Delhi.
5: The nation celebrates 119th birth anniversary of the great revolutionary Shahide Azam Bhagat Singh today. It was on this day in 1907. Bhagat was born in village Banga in the Lialpur district of Punjab, now in Pakistan. More from our correspondent.
0: Bhagat Singh was born in a family of revolutionaries and was the second among seven siblings. He was lovingly called as Bhagamwala, meaning the lucky one. He proved his name for the freedom of the country by sacrificing himself along with Rajguruji and Sukhdevji. A state-level program titled Jashn-e-Inqilab has been scheduled at Ludhiana Agriculture University to celebrate his birth anniversary by organizing cultural events. People are also visiting his native village Khatkat Kalan at Shahid Bhagat Singh Nagar to pay their respects to the great son of the soil. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
5: This is Akashwani giving you the news.
8: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
5: Welcome back to Morning News on Akashwani. The Election Commission of India has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision 2026 in Delhi. A report.
9: The Special Intensive Revision SIR 2026 is currently underway in Delhi, and with the scheduled revision announced by the Election Commission, the last date to file claims and objection will be the 30th of next month. According to the Chief Electoral Officer of Delhi, the notice phase or disposal of claims and objections will be till 30th of November, and the final electoral roll will now be published on 4th of December. Earlier, special camps were organized at all polling station locations of NCT of Delhi for enrollment of new voters through Form 6. Samar Singh for Akashwani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through visionary initiatives such as the National Maritime Heritage Complex at Lothal.
10: Rising beside the ancient Harappan dockyard at Lothal in Gujarat, the National Maritime Heritage Complex is being developed as India's first national institution dedicated to showcasing over 4,500 years of country's rich maritime history. Designed as world-class cultural landmark, the complex will feature the world's tallest lighthouse museum and a dedicated naval gallery showcasing iconic defense assets like INS Nishchank, a Sea-Hider craft and UH-3 helicopter. Highlighting this transformation vision and modern technology behind the heritage complex, Prime Minister Narendra Modi said,
11: "Lothal mein ye jo heritage complex ban raha hai." उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके. इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है.
10: emphasizing the 5,000-year-old maritime legacy of Gujarat and how this mega project will preserve it to the future generations. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel said,
12: "Jahan tak Gujarat mein maritime heritage ki baat hai, to hamare paas is sector ka 5,000 varsh ka

नमस्कार, देहरादून के सभी श्रोताओं को संगीता सेमवाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बड़ा ही संगीतमय है, क्योंकि आज हम उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनकी आवाज़ से हमारी सुबह की शुरुआत होती है और दिन खुशगवार हो जाता है, जिनका स्वर फूलों की खुशबू सा महकता है, जिनके गानों से हम अपने गम भूल जाते हैं और जिनके गीतों को सुनकर हम खुशियों से सराबोर हो जाते हैं। वो आवाज़ का महासमंदर है। जी हाँ श्रोताओ, वो है सुर कोकिला, सुर सरस्वती, भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का जन्म आज ही के दिन यानी 28 सितंबर सन 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिला था और अपनी साधना, अनुशासन और अद्भुत प्रतिभा से उन्होंने भारतीय पार्श्व गायन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। लता जी ने हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज दी। उनकी इसी अद्वितीय स्वर साधना और भारतीय संगीत में अप्रतिम योगदान को देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 2001 में उन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। आज उनकी जयंती पर नमस्कार देहरादून की पूरी टीम की ओर से भारत रत्न लता मंगेशकर को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। और अब श्रोताओं, लीजिए सुनिए चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों की सुर्खियां। दून जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 69 रिक्त पदों पर उपचुनाव होगा, नामांकन 30 सितंबर से। देहरादून में स्वाइन फ्लू के 58 सैंपल लिए गए, 7 संक्रमित मिले। डेंगू के 2 नए मरीज मिले, सक्रिय मामले 19। और 2 दिन की बारिश और चोटियों पर हिमपात का असर, 36 घंटे से वर्षा जारी, टिहरी में न्यूनतम पारे का नया रिकॉर्ड। 14 वर्ष में सितंबर की सबसे सर्द रात, 18.4 डिग्री पहुंचा पारा। आमतौर पर आज का आसमान साफ रहेगा, हल्के बादल छाने का अनुमान है। देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये थी अखबारों की सुर्खियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

0: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला है। ऐसे समय में जब दुनिया ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है, भारत भी इस वैश्विक संवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में इंडिया एनर्जी वीक 2027 के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन 28 सितंबर यानी आज देहरादून स्थित ONGC के GOP ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन और उनके उद्देश्य को समझने के लिए बड़े ही गर्व और खुशी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, आज के नमस्कार देहरादून कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं ONGC के प्रधान मानव संसाधन सेवाएं श्री नीरज कुमार शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं ONGC देहरादून का जो ऑफिस है यहाँ का मैं हेड हूँ, और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इंडिया एनर्जी वीक एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हमारे भारत देश के लिए हुआ है ऊर्जा के क्षेत्र में। पिछले 5-6 सालों से ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनीज जो है बेसिकली इनका एक ज्वाइंट फोरम है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है इनके एजिस में हम लोग ये करते हैं।
0: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया एनर्जी वीक 2027 का व्यापक उद्देश्य क्या है और वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य में इस तरह के वैश्विक मंच की आवश्यकता क्यों महसूस होती है।
1: और इंडिया एनर्जी वीक जनरली ये इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो है एंगेजमेंट करने के लिए अक्रॉस जो इकोसिस्टम एनर्जी। ये सभी आपके श्रोतागण को मालूम होगा कि ये जो भारत वर्ष है इसमें चूंकि हमारी पॉपुलेशन काफी है तो इसमें एनर्जी की डिमांड भी उतनी है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे जो पेट्रोलियम खासकर पदार्थ है जो है तो इसमें हमारा करीब 90% से ज्यादा हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कम से कम जो प्राकृतिक संपदा है काफी चीजों में हम लोग रिच हैं, लेकिन पेट्रोलियम जो पदार्थ है इसमें हमारे यहाँ काफी कमी है। तो इसी के संदर्भ में नॉट ओनली पेट्रोलियम, तो इसको ये पहले केवल पेट्रोलियम का होता था जिसे पेट्रोटेक बोलते थे, और ये अब पिछले 5 और 6 सालों में इसको इंडिया एनर्जी वीक का नाम दिया है, और जिसे पूरी इंटीग्रेटेड एनर्जी बास्केट को हम इसको लेके आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सभी चीज जो क्या है एनर्जी है, चाहे पेट्रोलियम हो, कोल हो, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हो, न्यूक्लियर पावर है, इसमें विंड है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, हाइड्रो पावर है, तो इस सबको एक इंटीग्रेट करने का माध्यम है। और ये जो इंडिया एनर्जी वीक जो है इसमें हम लोग सभी गवर्नमेंट इंडस्ट्री एकेडमिया है, इन्नोवेटर्स है, स्टार्टअप्स है, एक्सपर्ट्स है और अदर की पार्टिसिपेंट को भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और जो कोलकाता में अगले साल ये होने जा रहा है इसमें जहां तक एक्सपेक्टेड है करीब 75,000 फुटफॉल होने की संभावना है इसमें एक्सपेक्टेड, और करीब 700 से ज्यादा एग्जिबिटिंग कंपनीज जो एनर्जी सेक्टर में है, मेनली जो है इसमें ज्यादातर पेट्रोलियम सेक्टर की होती हैं और बाकी भी और भी एनर्जी सेक्टर के कंपनियां जाती हैं, अपने पवेलियन लगाती हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करती हैं, कैसे हम मोर एनर्जी एक तो हमको उपलब्ध हो कम से कम दाम में जिससे कि हमारी जो जनता को उसका उपभोग कर सके। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि करीब 120 से ज्यादा कंट्रीज के वेंडर्स, वहां के बहुत सारे अलग अलग देशों के ऑफिशियल्स हैं, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज के जो CEOs हैं, वहाँ के चीफ्स हैं, ऊर्जा मिनिस्टर्स हैं, ये अटेंड करते हैं। और पिछले 1-2 सालों में एक जो पेट्रोलियम सेक्टर में एक अबूधाबी में ये ADIPEC करके इस तरह का एग्जीबिशन होता है, उसके बाद उसके टक्कर का हमारे पिछले साल लोगों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हम उसके लेवल में पहुंच गए हैं, एक वर्ल्ड लेवल की हम ये ऊर्जा क्षेत्र में इस तरह का एग्जीबिशन करते हैं जिसमें कि अक्रॉस वर्ल्ड के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और नई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी, भविष्य की जो संभावना है, ग्रीन हाइड्रोजन है, अगले 10-20-30 साल में क्या आने वाले हैं, तो पास से लेके फ्यूचर तक सभी ये डिस्कशन होता है। इसमें करीब 6,500 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स आने की एक्सपेक्टेड है और करीब 500 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स, 120 सेशन करीब इसमें होने वाले हैं कोलकाता में, जो कि जनवरी 2027 में होना है। इसी संदर्भ में जो हम लोगों को मैंडेट मिला है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से कि इसको एक वाइड इसका बाकी लोगों को एक सेंसिटाइज किया जाए इसके बारे में, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समुद्र मंथन के नाम से एक बहुत बड़ा डीप एक्सप्लोरेशन, डीप वाटर में एक्सप्लोरेशन का मिशन चालू किया है, जिसमें करीब 85,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और करीब 1,70,000 करोड़ का डीप वाटर जो अंडमान, जो खासकर अंडमान निकोबार का जो अभी हमारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया रह गया है, तो इसमें हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और सभी कुछ सही रहा तो हो सकता है कि हम एक अच्छी खासी कोई आगे कई ऑयल एंड गैस कोई फील्ड हमको मिल जाए, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो ये सब के बारे में डिस्कशन IEW में होगा और उसके लिए इसीलिए सितंबर में हम एक कर्टेनेजर प्रोग्राम 28 तारीख को करने जा रहे हैं देहरादून में। इसके बारे में थोड़ा, जिससे जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के लोग हैं, ओपिनियन बिल्डर्स हैं, एकेडमिया है, प्रेस है, इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो इन लोगों को एक सेंसिटाइज किया जाए, इनके बारे में बताया जाए, तो जिससे कि ये एक पूरी जनता को मालूम हो कि इस तरह की चीजें हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि पूरा देश का जो है, देश के बारे में जो एनर्जी सेक्टर, जो हमारी एनर्जी जो एक प्राइम ये हमारा जरूरत बन गई है और आगे बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो एक अफोर्डेबल प्राइस में एनर्जी उपलब्ध हो।
0: सर, हमारे तमाम श्रोतागण इस समय आपको सुन रहे हैं, आज के इस विशेष दिन आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, एनर्जी जो है, जितना एनर्जी का ऑप्टिमम यूज किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। हम लोग एनर्जी वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एनर्जी बहुत सारा एनर्जी होती है, सोलर और विंड तो ठीक है, उसमें कैपिटल कॉस्ट लगती है, लेकिन जहां तक कोल है या ऑयल और गैस है, तो इसको जो एक्सट्रैक्शन करने में, इसको फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेराइन रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस रहते हैं, तो इसमें काफी ऑयल को निकालने में काफी डिफिकल्ट ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब जो जनता इसको समझे और एनर्जी का जो है प्रॉपरली यूज करे, उसको मिसयूज ना करे, मैं ये चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि श्रोतागण, जैसे बहुत सारा राज्यों में एक सब्सिडी मिलती है सोलर की, खासकर मैं बात करना, तो सोलर प्लांट लगा के घर में, तो आपकी जो काफी कुछ जो है बिजली की जरूरत है, उसको हम लोग खुद ही फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह के चीजों में श्रोतागण आए, और मैं चाहूंगा कि जो IEW जब होगा तो इसका टेलीकास्ट भी होगा, टेलीविजन में, पेपर में काफी होगा, तो इसके बारे में पढ़े हैं और जानकारी रखें कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया के लिए, आज के जीवन के लिए। सुबह से रात तक पूरे 2400 घंटे हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इस एनर्जी का इंपॉर्टेंस को पहचाने और इसका प्रॉपरली यूज करें।
0: सर, इंडिया एनर्जी वीक 2027 की विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोतागण इससे जरूर लाभान्वित होंगे। और सर, आपने अपना पेश कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सभी श्रोताओं को, धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओ, हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रेबीज जैसी घातक लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इनके बचाव के उपायों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर। इसी दिवस पर हमें और जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक ह्यूमन वर्ल्ड्स फॉर एनिमल्स डॉक्टर नीरज कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
1: धन्यवाद मैम, आपका भी।
0: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेबीज क्या है और ये मनुष्य और पशुओं के लिए कितना गंभीर रोग है।
1: तो रेबीज एक बीमारी है जो कि जानवर के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है और ये एक लाइलाज बीमारी है। अगर एक बार रेबीज किसी को हो जाता है, सिम्टम अगर डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद इसकी कोई रोकथाम नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसीलिए हम लोग रेबीज को रोकने के लिए प्रिवेंटिव तरीका यही अपनाते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं या एनिमल्स में भी जो होता है वैक्सीन करते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमन में भी करते हैं कि अगर कोई डॉग बाइट होता हो या फिर कोई एनिमल्स में अगर कुछ बाइटिंग होता हो तो बीमारी वो डेवलप ना हो।
0: सर, रेबीज मुख्य रूप से किन किन पशुओं से होता है? जैसे कि क्या बंदरों से भी होता है या फिर कोई और पशु है जिनसे रेबीज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है स्ट्रीट डॉग्स के अलावा?
1: मैं जो जो मुख्य स्रोत है रेबीज का वो डॉग ही है और ये बंदर के थ्रू भी हो सकता है, बिल्ली के थ्रू भी हो सकता है, बट जो इंडिया में माना जाता है कि डॉग के थ्रू ज़्यादा ये ट्रांसमिट होता है।
0: यदि किसी को मान लीजिए किसी स्ट्रीट डॉग्स ने या कोई भी अन्य संदिग्ध पशु काट ले तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए और कौन सी गलती जो है वो जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए?
1: अगर किसी को डॉग बाइट होता है तो सबसे पहला जो काम करना चाहिए, आपके पास जो रनिंग टैप वाटर है जिसको बहता हुआ पानी बोलते हैं, उसमें 10 से 15 मिनट तक जो भी आपके पास साबुन हो या लिक्विड सॉप हो उससे धोएं और उसके 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू धोते रहें। अगर बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड आ रहा है तो आप किसी साफ तौलिए से या रुमाल से उसको थोड़ा सा प्रेशर बना के रोक सकते हैं। अगर वो आपके पास घर में कोई एंटीसेप्टिक है तो वो भी आप उस पर लगा सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो घरेलू उपचार है उससे तो बिल्कुल बचे। जैसे कई बार होता है कि लोग उस पर कुछ मसाला डाल देते हैं, हल्दी डाल दिया, मिर्च डाल दिया या फिर चूना कुछ भी डाल देते हैं, तो इन सब से बचें। और जब भी आप डॉग बाइट होता है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएं और वैक्सीन जरूर लें।
0: कई बार क्या होता है कि किसी पशु के काटने के बाद ये सोचकर लोग इंतजार करते हैं कि छोटा सा तो घाव है, ठीक हो जाएगा और पशु भी स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या सलाह है?
1: मैम, जो रेबीज का जो रेबीज जो फैलता है वो डॉग बाइट से तो होता ही है, बट जो रेबीज का वायरस होता है वो एनिमल्स या डॉग जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होता है उसके सलाइवा में होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉग बाइट से ही रेबीज हो सकता है। अगर आपकी कहीं भी स्किन कटी हुई है और आपका जो रेबीज सस्पेक्टेड एनिमल्स का सलाइवा है उससे अगर टच में आ जाता है, रेबीज होने की खतरा हो सकता है। अगर कोई डॉग स्क्रैच करता है, अगर वो रेबीज है उसका, बेसिकली ये है कि जो रेबीज का सलाइवा अगर आपके बॉडी में कहीं भी ओपन वुंड में टच होता है तो रेबीज के होने की बीमारी हो सकता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचे कि थोड़ा सा स्क्रैच है या थोड़ा सा बाइट किया है। जब भी आपको कुछ ऐसा डॉग बाइट करता हो, स्क्रैच करता हो, तो आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। भले आप उस एनिमल्स को कब से जानते हैं या आपके घर के बाहर ही रहता हो, उसको जरूर आप ऑब्जर्व करें बाइटिंग के बाद, पर प्रिकॉशन के लिए आप वैक्सीन जरूर लें।
0: जैसे सर आपने वैक्सीन की अभी बात कही, तो पशुओं के टीकाकरण की अगर हम बात करें तो जो पेट एनिमल्स होते हैं उनका रेबीज टीकाकरण कब से शुरू किया जाना चाहिए और कितनी नियमितता के साथ कराना चाहिए?
1: जो रेबीज का वैक्सीन है वो जो डॉग पप होता है या 30 से 45 डेज में होता है, उसका फर्स्ट डोज लगता है, उसके बाद रिपीट डोज भी उसके लगते हैं। और फिर जो रेबीज के वैक्सीन है वो उसे एवरी ईयर रिपीट पे जरूर लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में पालतू जानवर हो या घर के बाहर भी रहता है या कोई भी स्ट्रीट डॉग हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा बूस्टर डोज के लिए रिपीट वैक्सीन एवरी ईयर जरूर लगाना चाहिए।
0: कई बार कई ऐसे दुर्गम इलाके होते हैं जहां पर रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में कोई क्या करे।
1: मैम, अल्टीमेटली जो रेबीज है उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसको हम रोकथाम ही कर सकते हैं, तो वैक्सीन तो चाहिए ही। तो कोशिश यही करें कि अगर कहीं भी हो तो डॉग बाइट करता है उसको 24 घंटे के अंदर फर्स्ट डोज तो ले ही लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कहीं प्राइवेट से भी मिलता हो, तो वैक्सीन तो लेना ही चाहिए। उसके अलावा रेबीज का कोई इलाज नहीं है।
0: वर्ल्ड रेबीज डे पर डॉक्टर नीरज कुमार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला और लोगों को थोड़ा हम जानकारी दे सके कि रेबीज क्या होता है और उसे कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू।

श्रोताओ, आज की मुलाकात बस इतनी ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और साथी के साथ कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। श्रोताओ, आपको हमारा आज का नमस्कार देहरादून कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर जरूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। पत्रों के माध्यम से भी हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा पता है नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, द्वारा निदेशक आकाशवाणी हरिद्वार, बाईपास रोड देहरादून, पिन कोड है 248001। और अब संगीता सेमवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत।

0: मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ीकी, गीतकार गुलशन बावरा थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म सावन भादों से गीत, जिसे लिखा है फरमा मलिक ने और संगीतबद्ध किया है सोनिक ओनी ने।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा S. वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों की भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी तो तैयारी है, उसमें काफी कुछ ना नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
3: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
1: नॉर्मल
3: लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेस आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे तीन चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको तीन सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उसे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो एक्सपेंसेस
3: एक्सपेंसेस को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़ बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था GSDMA गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो GSDMA की स्थापना हुई, GSDMA की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर GSDMA का एक किट, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था।

0: तब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और ईडीबी की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का प्रोग्राम था, तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर जीएसडीए में फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। जीएसडीए में के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लांट तरीका होता है, सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में है, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सके और उसको फिर कोड्स एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सके ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं, उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जियो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज में एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, और वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
0: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था, तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था। और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो वहाँ पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था। तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना। तब तक मैं वहाँ था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया। फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा, और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
2: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाए हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की जरूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है, जो इस की जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है, और NDMA के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा हम अभी पानी की बात कर रहे हैं और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
0: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, इसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफी कम हुआ, बारिश काफी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूंगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूं कि उस पर असर पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना, वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने इंडिया में की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं। जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सके, तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और दूसरा मैं कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था, उस पर भी काफी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं CDRI का मॉडल समझू, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझू, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
2: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
1: हीट वेव
2: लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है, 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी AC की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत, तो ये सब चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी के भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है उसकी, जब भूकंप आता है वो कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी
2: बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है, एक और चीज शुरू हो गई है वाइल्ड फायर, अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा काफी शहर में भी, तो ये सब चीजों में जनरली ज्यादा अटेंशन हो रहा है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1-2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली में, पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल उस सबसे गर्म साल था, तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, सो ये सब चीजें हो रही हैं बट इस पे काम भी होने लग गया है काफी।
1: मिस्टर प्रोथी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे, जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई, हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
2: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्ण जी भी इस पर आपकी तरह बात करें। हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है। G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राजील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को गर्व से मैं बोलूंगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें एस्टैब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है। और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पे किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पे हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
0: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है। अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी नियंत्रण हमने किया है। जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है। अच्छा। जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन फोर्स की, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूँगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज, हमारे पास 300 से ज़्यादा हीट एक्शन प्लान्स है पूरे देश में। कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं, करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज़्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है। और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीज़ों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है। और उसी अप्रोच के तहत सीडीआरआई की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं, उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी, तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी हम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें ताकि हम आपदाओं पर हमारा एक बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पे भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मदद से साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था, और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें ताकि ये सब चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए अभी हम प्रयत्न कर सकें।
1: डॉक्टर,
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं करे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। सो उस पे अटेंशन हमने फोकस ज्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज उसको कर रहा है उसको भी इन चीजों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसा आप ध्यान दें, कैसे इसमें आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
2: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा। संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR

0: gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अल्जाइमर रोग लक्षण कारण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर कृति गुप्ता से रमेश चंद्रा की बातचीत।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कृति गुप्ता को और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे अल्जाइमर लक्षण कारण और उपचार के बारे में। डॉक्टर कृति गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, अल्जाइमर क्या है?
3: अल्जाइमर्स मस्तिष्क से संबंधी एक बीमारी है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और दैनिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों तंत्रिक कोशिकाएं होती है, यानी कि नर्व सेल्स होते हैं, जो एक दूसरे को संदेश आदान प्रदान करते हैं। अल्जाइमर्स रोग में मस्तिष्क के अंदर कुछ असामान्य प्रोटीन्स इकट्ठा होने लगते हैं जिन्हें हम प्लाक्स कहते हैं
2: जी।
3: सबसे मुख्य रूप में बीटा अमाइलॉइड प्लाक और टाउ प्रोटीन टैंगल्स इन्हें कहा जाता है। इनकी वजह से जो ये नर्व सेल्स हैं उसमें जो संदेश देने की जो उनकी एबिलिटी है वो बाधित होने लगती है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और नष्ट होने लगती हैं। शुरुआत में मस्तिष्क का वह भाग प्रभावित होता है जो नई बातें याद रखने का काम करता है, इसलिए सबसे पहले भूलने की समस्या दिखाई देती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता और दैनिक कार्य करने की क्षमता में भी प्रभाव आ सकता है।
2: डॉक्टर कृति, अल्जाइमर सामान्य भूलने की आदत से कैसे अलग है?
3: बढ़ती उम्र में छोटी बातें भूलना यह सामान्य हो सकता है। कभी कभी हम खुद भी सामान रख के भूल जाते हैं हमने कहाँ रखा है, बट हमें कुछ समय बाद ये चीजें याद आ जाती हैं। हम अपने कदम ट्रेस बैक कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर बार बार महत्वपूर्ण बातें भूलने लगता है, एक ही सवाल कई बार पूछने लगता है, परिचित रास्तों और अपने परिजनों को भूलने लगता है, या अपने परिचित रास्तों पे भटक जाए, या रोजमर्रा के काम करने में उनको कठिनाई आने लगे, तो ये अल्जाइमर्स के संकेत हो सकते हैं। ये बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा नहीं है।
2: डॉक्टर कृति, क्या अल्जाइमर केवल बुजुर्गों को ही होता है या किसी को भी हो सकता है?
3: देखिए, अल्जाइमर्स का जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, यानी कि जो सबसे जोखिम वाला फैक्टर है, वो बढ़ती उम्र ही है। हालांकि पहले जिस उम्र में अल्जाइमर्स देखा जाता था, अब क्योंकि लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट जैसे जैसे बदल रहा है, तो वो एज भी कम हो रही है, बट ये जनरली एक बीमारी बूढ़े लोगों में ही देखी जाती है।
2: डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ लक्षण बताए कि वो भूल जाएगा
3: जी,
2: लोगों को पहचानने में दिक्कत होगी, सामान्य बातें जो उनको अच्छे से पता है उनमें भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा भी क्या और लक्षण हैं जो व्यक्ति में दिखाई देंगे जो अल्जाइमर से ग्रसित है?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमें याद रखनी है इसमें, भूलने की बीमारी, यानी कि हाल ही में हुई जो चीजें हैं इंसान वह भूलने लगता है, सामान रखकर भूल जाता है, और अगर कोशिश भी करे तो वो याद नहीं कर पाता है। तारीख या समय को लेकर भ्रमित हो सकता है, अपने जिन लोगों को वो जानते हैं उनको याद रखने में दिक्कत हो सकती है, परिचित जगहों पर रास्ता भटकना और सही शब्द ढूंढने में कठिनाई होना, निर्णय लेने या योजना बनाने में दिक्कतें, ये सब भी अल्जाइमर्स का ही एक हिस्सा है।
2: कारण क्या है डॉक्टर कृति अल्जाइमर के?
3: जैसा हमने देखा कि एक असामान्य प्रोटीन हमारे मस्तिष्क में बिल्डअप होने लगता है, यह इसका कारण है, और इससे संबंधित जो फैक्टर्स इस अल्जाइमर्स डिजीज को बढ़ाते हैं वे हो सकते हैं जैसे कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक निष्क्रियता, सिर में चोट आना, सुनने की समस्या या फिर सामाजिक अलगाव, ये इस बीमारी का जोखिम बढ़ा सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, क्या कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है
3: जी,
2: कुछ तनाव में भी रहता है, इसकी वजह से भी अल्जाइमर उसे हो सकता है?
3: स्ट्रेस या कुछ भी ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, कह सकते हैं।
2: जांचें क्या हैं डॉक्टर कृति अल्जाइमर की?
3: देखिए, जांचें जो हम सबसे पहले करते हैं वो सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, लेकिन इसमें हमें दिखाई देता है कि जो हमारे मस्तिष्क का नॉर्मल साइज है वो धीरे धीरे घटने लगता है उम्र के साथ साथ। लेकिन अगर हम MRI करेंगे या फिर जो हमारे मैंने आपको जो नर्व सेल्स के आदान प्रदान जो संदेशों के बारे में बताया, अगर हम उनके टेस्ट करेंगे तो उसमें कमी आ सकती है। लेकिन ये जनरली बीमारी क्लिनिकली ही डायग्नोज करी जाती है सिम्टम्स के बेसिस पे और एज के बेसिस पे।
2: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत सी बीमारियों को बीमारी माना ही नहीं जाता, अगर कोई व्यक्ति भूल रहा है तो कह देते हैं उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसा होता ही है
3: जी,
2: इसके बारे में क्या कहेंगे?
3: मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हर भूलने की आदत अल्जाइमर्स नहीं होती है। हम सब कभी ना कभी चाबी, चश्मे, अपना फोन रखकर कहीं भी भूल जाते हैं। सामान्य भूलने की स्थिति में

0: व्यक्ति कुछ समय बाद ये चीजें याद कर लेता है, अपने कदमों को दोबारा याद कर सकता है या खोजने पर सामान मिल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपना चश्मा कहीं रखकर भूल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आ जाएगा कि उसने वो एक जगह पे रखा हुआ था। लेकिन अल्जाइमर्स में व्यक्ति बार बार सामान गलत जगह पर रख रहा है, याद करने पे भी उन्हें बातें याद नहीं आ रही हैं, चिड़चिड़ापन या चिंता के जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये अल्जाइमर्स से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, उपचार क्या है अल्जाइमर का?
0: इसका कोई पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इंसान पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बीमारी की गतिविधि को, यानी कि इसका जो प्रोग्रेशन है इस डिजीज का, उसको कम कर सकती है, ताकि हम इंसान जो वो हमारा रोगी है, हमारा मरीज है, उनकी लाइफ, उनकी गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं जिससे हम। तो कुछ दवाइयां हैं जो इस चीज में हमारी मदद कर सकती हैं। ये दवाइयां रोग की गति को पूरी तरह से तो नहीं रोकती, लेकिन कुछ रोगियों में लाभ देती हैं। दूसरी चीज ये है कि मानसिक एवं बौद्धिक गतिविधियां, यानी कि मेंटल एक्सरसाइज जिन्हें हम कहते हैं, तो रोगी को पढ़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, पुरानी फोटो देखने के लिए या सरल खेल खेलने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर याददाश्त बढ़ाने वाले अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा जो मैं कहना चाहूंगी, शारीरिक गतिविधि, नियमित टहलना, हल्का व्यायाम और एक सक्रिय जीवन शैली रोगी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होती है।
1: डॉक्टर कृति, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति भूलने लगता है तो परिवार वाले कुछ न कुछ बोलते हैं?
0: देखिए, दवाइयाँ और जो ये हमने मेंटल एक्सरसाइजेस की बात करी, ये सब एक तरफ है, लेकिन जो पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस बीमारी में, वो है कि पेशेंट्स के परिवार का जो सहयोग है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंटली धैर्य रखना, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार डांटने फटकारने से, उनसे बहस करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो जान पूछ कर ये सब नहीं कर रहे हैं, ये बीमारी की वजह से हो रहा है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दवाइयाँ नियमित रूप पर ले रहे हैं, समय पर ले रहे हैं, घर का वातावरण सुरक्षित रखें, रोगी को अकेला महसूस ना होने दें और उन्हें अकेला ना छोड़ें जितना हो सके।
1: क्या डॉक्टर कृति, अल्जाइमर को लेकर हमारे समाज में कुछ गलत फहमियां भी हैं?
0: जी, कह सकते हैं, क्योंकि अल्जाइमर्स कोई शर्म की चीज है, कोई छिपाने की चीज नहीं है। जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, पहचानेंगे, यानी कि जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, उतना ही बेहतर हम मरीज का ख्याल रख सकते हैं और उतना ही इजी रहेगा उनके परिवार वालों के लिए, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन समझने के लिए और उनका ज्यादा बेहतर ध्यान रखने के लिए। अपने बुजुर्गों की बात सुनना, उनका सम्मान करना और याददाश्त से जुड़ी कोई भी समस्या अगर दिखे तो डॉक्टर को टाइम पे संपर्क करना, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ दिमाग में इस तरह की आदतों को बीमारी मानते ही नहीं है लोग।
0: मेंटल हेल्थ, आई वुड से, ये ना हमारे सोसाइटी का एक टैबू वाला पार्ट है जो कोई मानता ही नहीं है। ये बात मैं आपकी बिल्कुल सही कहना चाहूंगी, बट हम जितना अवेयरनेस लेकर आएंगे अपने समाज में, जितना लोगों को पढ़ाएंगे इन चीजों के बारे में, समझाएंगे उनको, जितना जागरूक कर सकेंगे, उतना वे ये सब चीजों को नॉर्मली ट्रीट कर पाएंगे और इससे हम एक मरीज को, उनका जो लाइफ है, उसको भी काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं।
1: अल्जाइमर के रोगी का जो खान पान है वो किस तरह का होना चाहिए?
0: वो तो नॉर्मल, उसमें कुछ ऐसा असामान्य कुछ उसमें ऐसा नहीं है जो हम सामान्य रूप से खाते हैं, कोई भी लाइक हाई प्रोटीन डाइट हो गई, नॉर्मल फैट या कोलेस्ट्रॉल वाला चीजें कम करना, तीखा भुना कम खाना, वो नॉर्मल चीजें ही हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है अल्जाइमर्स के लिए।
1: जो लोग धूम्रपान करते हैं, एल्कोहल लेते हैं,
0: हाँ जी,
1: इसका भी कुछ फर्क पड़ सकता है अल्जाइमर वाले व्यक्ति पर?
0: जी जी, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें इस बीमारी की गतिविधि को बढ़ाते हैं। तो हम जितना इन चीजों से बचेंगे, धूम्रपान से, अल्कोहल के कंजम्पशन से, और जितना हम खुद को एक्टिव बनाएंगे, यानी कि हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, प्राणायाम करें, उतना हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क उतने ही बेटर कंडीशन में रहेगा।
1: डॉक्टर कृति, क्या ये अल्जाइमर है ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है?
0: जी नहीं, अभी तक इस पे कई रिसर्च चल रही है, कई शोध ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इसका पूर्ण रूप से उपचार नहीं मिला है। बस इसकी गतिविधि कम करने की ही कुछ दवाइयां हैं जो हमारे पास हैं अभी तक।
1: डॉक्टर साहब, कुछ लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं,
0: हाँ जी,
1: किसी भी बीमारी में,
0: जी,
1: अगर वो अल्जाइमर में ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं?
0: देखिए, जनरली जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं अल्जाइमर्स के लिए मिलेंगी नहीं, क्योंकि जो भी ऐसी साइकियाट्रिक ड्रग्स होती हैं ये विद प्रिस्क्रिप्शन ही मिलती हैं। तो देर इज अ वेरी लेस चांस, बहुत ऐसा कम चांस है कि पेशेंट्स खुद से जाके ड्रग ले सके ऐसे।
1: शुरू शुरू में होता क्या है कि पेशेंट जो एक्सपर्ट डॉक्टर है
0: जी,
1: उसके पास जाने की बजाय दूर दराज का एरिया, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो कहीं पर भी जो डॉक्टर अवेलेबल हो, झोला छाप हो, कुछ भी हो, झाड़ फूंक वाला हो, उसके पास ले जाना पहले ज्यादा पसंद करते हैं। कोई इस तरह का साया हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो गया है,
0: ये मैंने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। बट ये चीज सही नहीं है, बिकॉज वही है ना कि इससे हम जो ये डायग्नोसिस है इस डिजीज का, हम उसको डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है. बिकॉज ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये ऐसी नहीं है कि ये जैसी है उतनी ही पे ही रुक जाएगी, ये बढ़ने वाली बीमारी है. क्योंकि जितने ज्यादा ये हमारे असामान्य प्रोटीन ब्रेन में, हमारे ब्रेन में अक्यूमुलेट करते रहेंगे, यानी कि बढ़ते रहेंगे, उतने ही हमारा नर्व कंडक्शन कम होता रहेगा. यानी कि जितनी भी हमारे मस्तिष्क में जो गतिविधि हो रही है नर्व सेल्स में, वो सब कम होती रहेगी. तो अर्ली डायग्नोसिस यानी कि इस बीमारी का जल्दी पहचानना सबसे महत्वपूर्ण चीज है. इसलिए अगर हमें किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिख रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी, तो डॉक्टर के पास जाना सबसे उचित चीज रहेगी. क्योंकि भूलने की समस्या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट की जो सेफ्टी है, सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, उसको भी अफेक्ट कर सकता है.
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारी स्मृति शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं मार्केट में, मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल हैं.
0: जी,
1: लोग कह भी देते हैं चीजें याद नहीं रह रही तो फला वाली मेडिसिन है या फला वाला सीरप है वो ले लीजिए,
0: जी
1: याददाश्त बढ़ा देगा.
0: जी, ये पूर्ण रूप से उचित नहीं है मैं कहूंगी, क्योंकि अल्जाइमर्स का जो कॉज है, जो बीमारी का कारण है, वो बिल्कुल अलग है बाकी बीमारी, भूलने वाली बीमारियों से. क्योंकि भूलने की बीमारियां कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें से कुछ ऐसी ट्रीटेबल कॉजेज भी होते हैं, पर अल्जाइमर्स ट्रीटेबल नहीं है. तो ये चीजें खुद से प्रिस्क्राइब करना, मेडिसिन खुद से लेना, या फिर खुद बीमारी को समझने की कोशिश करना विद द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी.
1: डॉक्टर कृति, कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो हम अपने जब हम बच्चे हों या यंग हों, जब युवा हैं, उस समय करें ताकि हम अल्जाइमर से ग्रसित ही ना हों?
0: देखिए, आप पूरी तरीके से अल्जाइमर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज, सब किसी की एज बढ़ेगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर. सबसे बड़ा फैक्टर जो बीमारी का है वो एज ही है. तो बाकी जो फैक्टर्स हैं, खुद को फिट रखना, हेल्दी रहना, ये एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं. तो अगर आप अपना वैसे ध्यान रख रहे हैं तो हो सकता है कि आप इसका प्रोग्रेशन ही कम कर दें, या आपको बहुत लेट हो. बट ये है कि 100% प्रिवेंटेबल नहीं है ये बीमारी.
1: कार्यक्रम के समापन में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप अल्जाइमर को लेकर? अगर उनका कोई करीबी परिवारीजन अल्जाइमर से ग्रसित है तो क्या करें?
0: जी, मैं बस यही कहूंगी कि अपना सहयोग दें, मरीज को अकेले ना फील होने दें, और मरीज का ध्यान रखें, स्पेशली दवाई के रूप में, उनकी एक्सरसाइजेस के रूप में. और ये कोई शर्म की, कोई छिपाने वाली बात नहीं है. तो इसको एक एक्सेप्टेबल, एक डिजीज की तरह ही, एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करा जाए, जिससे पेशेंट को भी उतना बुरा महसूस नहीं होगा, बिकॉज वह नहीं जानते हैं कि वो बीमार हैं इस चीज से. और उतना ही इजी रहेगा फैमिली वालों के लिए भी ये बीमारी समझने में, उनके मरीज को समझने के लिए, और उनका बेटर ध्यान रखने के लिए.
1: डॉक्टर कृति गुप्ता, कार्यक्रम में आप शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को अल्जाइमर लक्षण, कारण और उपचार के बारे में जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद रमेश जी.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अल्जाइमर रोग लक्षण, कारण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर कृति गुप्ता से रमेश चंद्रा की बातचीत.
3: सुनो ना.
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ.
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू.
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर.
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है.
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ.
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ. नंबर नोट करो, 870-001-4242.
3: ओ, 870-001-4242. लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242 पर.
5: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ. आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं. देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे. 100.5 AIR FM देहरादून पर. गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव, और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून.
2: यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर. सुबह के 10 बजने को हैं. अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस.
6: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को आपदा की दृष्टि से 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के राष्ट्र क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बैंक यूनियनों की बैठक के बाद बैंकों ने 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल टाल दी है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए अंतर्ज्ञान व आनंद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने BA प्रथम सेमेस्टर की 3री मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश में मतदाता सूची के SIR डाटा पर आज अंतिम सुनवाई होगी और 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 29 सितंबर को देहरादून में सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ त्रैमासिक वॉर्ब बैठक आयोजित करेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित बोरिंग टेक्नीशियन व कंप्यूटर प्रोग्राम परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस ने जीत हासिल की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित हो रहा है। हरिद्वार जिले में तिथौला के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 10 घायल। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी और देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

फिल्म वेलकम बैक से ये टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे मिका सिंह योयो हनी सिंह की आवाज़ में। अब सुनते हैं तुलसी कुमार की आवाज़ में फिल्म भूल भुलैया से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

शान और स्नेहा पंत के युगल स्वर में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म मस्ती से। गीतकार समीर थे और संगीत था आनंद राज आनंद का। अब सुनते हैं केके और अलीशा चिनॉय को फिल्म धूम 2 से, जिस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

फिल्म संगीत में आइए, अब सुनते हैं के एस चित्र और के युगल स्वर में फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ से ये गीत। गीतकार देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बारिश व बर्फबारी के बीच उत्तरकाशी व बागेश्वर जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में फंसे 179 पर्वतारोही ट्रैकर और को सुरक्षित निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है। आज खोज एवं बचाव के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बचाव अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू अभियान के दौरान सभी ट्रैकर से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए और उनकी लोकेशन, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यकताओं की नियमित जानकारी ली जाए। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तरकाशी जिले में 10 ट्रैकिंग दलों के 136 ट्रैकर्स और बागेश्वर जनपद में 3 दलों के 43 ट्रैकर्स, कुल 13 ट्रैकिंग दलों के 179 ट्रैकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। सभी ट्रैकर्स की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित जिलों में रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया है। बैंकों की 3 दिनों की प्रस्तावित हड़ताल टल गई है। भारतीय बैंक संघ IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच बैठक के बाद सोमवार को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बनी। बैंकों में आज सामान्य तरीके से कामकाज होगा। हड़ताल का आह्वान UFBU ने किया था। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने मौसम की स्थिति में सुधार के बाद चारधाम यात्रा पुनः सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 26 से 27 सितंबर तक चारधाम यात्रा स्थगित की गई थी। अब मौसम में सुधार के बाद यात्रा पुनः संचालित किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यात्रा संचालन के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। मार्ग अवरुद्ध होने अथवा अत्यधिक वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति में जिलाधिकारी अपने स्तर से यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की बढ़ाई गई समय सीमा आज समाप्त हो रही है। इसके साथ ही दावा, आपत्ति या यह डेटा ऑनलाइन सिस्टम में फ्रीज लॉक कर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा बढ़ाए गए समय के अनुसार जिन मतदाताओं को अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में सुधार करना था या दावा आपत्ति दर्ज करनी थी, उनके लिए आज यानी 28 सितंबर अंतिम दिन है। इसके बाद इस पूरे डेटा के आधार पर 3 अक्टूबर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार SIR के विशेष सत्यापन अभियान के बाद राज्य में बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आई हैं, जिसके तहत अब तक करीब 95,000 से अधिक मतदाताओं को सत्यापन दस्तावेज न सौंपने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने के कारण अपात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची में छूट जाता है तो अंतिम प्रकाशन के बाद वे पुनः फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने डेंगू की रोकथाम के लिए सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल भराव वाले सभी स्थानों की तत्काल पहचान कर वहां पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए व नियमित फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू जांच किट, पर्याप्त दवाइयां, रक्त की उपलब्धता, बेड व चिकित्सा कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए BA प्रथम सेमेस्टर की मेरिट और प्रवेश सूची जारी कर दी है और प्रवेश के लिए आज से बिरला परिसर श्रीनगर, BGR परिसर पौड़ी और SRT परिसर बादशाही स्थल में काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:35 होने को हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत के अंतर्गत समूह स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत।

0: बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: सर, मच्छरदानी लगानी चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब बाहर जाएं तो पूरी बाजू के कपड़े और शरीर को ढकने वाली ड्रेस पहनें। इससे मच्छरों के काटने से बचने में मदद मिलती है।
1: सर, यानी शॉर्ट्स या छोटी बाजू के कपड़ों की जगह पूरी बाजू की ड्रेस पहननी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, खासकर बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखें।
1: और घर में मच्छर ना पनपे, इसके लिए
0: गमले, कूलर, पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में पानी जमा न होने दें।
1: सर समझ गए, पूरी बाजू पहनेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे।
0: शाबाश, मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। और आपातकालीन स्थिति के लिए डायल करें 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC, हर पल आपके साथ।

0: LIC की जीवन लाभ एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: LIC की जीवन लाभ एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
4: FM 100.5

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओ 11 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओ, आज स्वर सम्राट की भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती है, जिन्होंने अपनी आवाज़ में बेहतरीन गीत गाए हैं, और आज हम नमन करते हैं संगीत के प्रति उनके योगदान को। और हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा उनकी आवाज़ में कार्यक्रम में ये पहला गीत। मैसेज श्रोता लिखते हैं, नरन स्टेट समस्तीपुर बिहार से ललन मिश्रा, अमन पारा शरद, गुंजन छोटू और साथ

लल्लू पंडित, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुजायुषी, रमेश चंद्र वर्मा, सातमीन के परिवारजन, ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक, सुरेश चौरसिया, सातमीन के बहुत सारे मित्र, और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से महर अरोड़ा, ममता कीर्ति और साथ में भूमिका अरोड़ा। फरमाइश लिखते वाले श्रोता आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की फिल्म का नाम किनारा।

कार्यक्रम का ये गीत है आप सभी की पसंद पर। सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप अशोक येले शेरी पढ़नी रकोला से अरुणा बलदीव दामोदर आदित्य दामोदर। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने इस गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन ऋषभ मोहन टिल्लू नायक और साथ में मधु नायक। फरमाइश श्रोता लिखते हैं, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से सुनीता शिंदे यशिराज प्रशांत ऋषि और साथ में कृष्णा खोड़के। मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने ये मैसेज हमें लिख भेजा है।

हमारी मीनाकारी पुंजरा जा करती, आकर्षण जयश्री और साथ में उनके बहुत सारे मित्र। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है आँखें।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्स अप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप हैं श्रोता भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम

कुंवर प्रमिला चिन्वासमा दीपक श्याम कुंवर अनुश्री और साथ में इनके परिवारजन अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज सलमा असद अरहम मोहम्मद आलम हाशमी। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने मैसेज हमें लिख भेजा है। आप है तेलंगाना करीमनगर से लक्ष्मी नारायण विजय विनय और साथ में साई किरण। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाह नवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। गांव हिप्परसोगा तहसील औसा लातूर से उस्मान शेख फौजी सायरा बानू बाबा शेख सिमर और करिश्मा शेख। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता और इनके परिवारजन। साथ ही फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनवीत और मनविंदर सिंह पांधा। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम है ममता।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार मोहम्मद जावेद राहत अली जाकिर हुसैन और वकील अहमद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, बाला देहरादून से फरमाइश में लिखते हैं गणेश भारद्वाज, भी जलवान कैप्टन दरवान सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडे पी राजेंद्र सिंह नेगी, राजू भाई, कुलदीप रावत और साथ में लिया कतर जय वाले। फरमाइश लिखते वाले श्रोता आप है सब्जी मंडी बुलढाणा से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, बुच्चू बाबा आयजनम और साथ में मुद्दे से हुसैन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर बीनाक्षी कहना मनोहर भाई बागरी और साथ में प्रभुलाल बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, मन भाव नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुंदीबाई बागरी और साथ में इनके परिवारजन। और साथ ही मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिय शेख, शेख रही मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप है कुंभार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुंभार। सुनते आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है सेहरा।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर वाइल्ड फील्ड बंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कांवल, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशु, ताशु अर्णव और सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने देवरी भाटापारा से कियार साहू, आकाश कमलेश, गनुला डजक, मुरली क्षत्रिय। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चैतन्य मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और साथ में रेदान खुराना। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं राजधानी रायपुर से ही नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और साथ में इनके बहुत सारे मित्रगण। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप ही श्रोता मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती और साथ में इनके परिवारजन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है हकीकत।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय बहुबिया, कविता विशाल, विवेक सूरमोनू रानू, सपना शिवी सलूनी और साथ में पेंटर बाबू, ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं गांव बग बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोडी, साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से इमकेश्वर साहू, करण राहू साहू, चंपा साहू, साथ में इनके परिवारजन, ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। फरुखाबाद सामगढ़ चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज और साथ में इनका पूरा चौरसिया परिवार। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है गुमला झारखंड से SM जावेश गुप्ता अंजुम और साथ में नजबुल हुदा, फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडी रेशा और साथ में इनके बहुत सारे मित्र, जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में नरकेश खातून। और इसी गीत को सुनना चाहे गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं बेजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष यादव, मनीष अंशिका यादव और साथ में इनके हैं यूनुस खान और सोफिया खान। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं श्रोता निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वैद्रमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नोमान और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और साथ में इनके परिवारजन, फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं श्रोता मैसेज लिखते हैं न्यू केशव नगर उदयपुर राजस्थान से कोमल भारद्वाज, शांतनु भारद्वाज और साथ में अनुसुईया, साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। मैसेज हमें लिख भेजा है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवान, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। सुनते आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: समय 11:33 और 18 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, बाजार रोड मुंगी सपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा शबस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना, अयान मंसूरी, यश मंसूरी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं श्रोता, फरमाइश हमें लिखते हैं। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभ, पवन जरिए के संजीव डावे राव। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं कस्बा गुनरूपे से फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं श्रोता, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विनोद कुमार जांगड़ा, शिवपत खींचड़, रामनिवास छिपा और साथ में योगेश शर्मा। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कांचन सृष्टि और समरजीत। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं मोहल्ला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगा, नसरीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदा रानी और साथ में हीना कौसर। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं डुमराव बिहार से राजेश डी अंसारी, नसरीन अंसारी और साथ में दिल्ली से हैं अजीम वक्कार और माहिरा अजीम। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र। फरमाइश लिखते वाले श्रोता आप हैं दंतरेंगी से भागत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और साथ में रुद्र वर्मा। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

कार्यक्रम वर्षा फरमाइश का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। शेरवानी स्कूल गंज डिंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना और साथ में आलिया अंसारी। फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं रुड़की उत्तराखंड से रीना शर्मा और इनकी परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफा साहिब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोज अबुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। फरमाइश होता हमें लिखते हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और साथ में इनके परिवारजन। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत गुर, कीरत गुरु, शबल सिंह, राहुल। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं आजमपुर परमा उर्फ अब्दीपुर जिला बिजनौर से मनोज कुमार, बबीता राज, आदित्य राज, जयराज, अमरराज, दिशांत राज, मीनाक्षी, नीलाक्षी और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता हमें लिखते हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भक्त, अरुणा चेतन और साथ में सुलोचना भगत। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया बेगा राशि और साथ में देवाश्री। खरसावा झारखंड से शुक्र नायक, मंजू जलेश्वर साथ में गौरव नायक। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं गांव भोपाल जिला मुजफ्फरनगर यूपी से जनेश्वर कुमार, अहलुवालिया, बालेश्वर कुमार, राकेश कुमार, डुग्गू नंदू, किट्टू, कुलश्रेष्ठ, सारांश और साथ में वेदांश। और साथ में इनके हैं मिस्टर चिक्कू, अहलुवालिया। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप है तेलंगाना स्टेट पुटपक्का से भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन, महादेव और साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, साथ में स्वीटी छाबड़ा। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है आप है मैसेज लिखने वाले श्रोता गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सादिब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है तेलंगाना से ही आप हैं कामारेड्डी जिला भवानीपेट गांव से मोहम्मद इनायतुल्ला, मोहम्मद इशरतुल्ला, मोहम्मद इबादतुल्ला और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू मैक, सुनीता अरजू, हंसमुख लाल जिंदल, साथ में इनके परिवारजन। सुनते आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर को फिल्म का नाम है सौतन।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम वर्ड से फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने बुच्चो कैचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह चोड़ा, मनजीत कौर, करणबीर करण, दपिंद्र वरिंदर, कुलदीप सिंह, विवेकम दमन और साथ में अभिजोत। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल से PS डरमारकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मोरेकर, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं श्रोता फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद बुझावर, सभी अमी खाइल और साथ में जैन मुझावर। फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं उत्तराखंड।

आयशो तो बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, गोकुल चौक अंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राधे, राकेश, रंजन, राजीव, रंजन, संजीव कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, या रानी, कुमकुम और साथ में इनकी परिवारजन। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं श्रोता अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक समर और साथ में वेदिका, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं कांट से ही, मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जान सिद्दीकी और साथ में इनके परिवारजन, सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और साथ में सुरेश नारंग, और इसी गीत को सुनना चाहे धामण गांव, जिला बुलढाणा से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी समर्थ, दादा कुमारी सानी का देठे पाटिल। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, मैसेज हमें लिख भेजा है ओल्ड लिसनर्स बिहार जोन से ही, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मंजीत गुप्ता, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि, कोमल माधवी साध्वी और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनना चाहे लखनऊ ऐशबाग से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि नीलम और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और साथ में चौधरी अयाना कंचव। साथ ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं मोगा पंजाब से जगदीश मठाड़ू, वीरपाल, गुरबख्श और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं श्रोता छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और साथ में यशस्वी वर्मा। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है बीड शहर से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी अंजलि करवा, बाला साहब करवा और साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज ये लिख भेजा है, ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं शांति निवास लहेगांव रेलवे जिला अमरावती से दीपक कुराड़ी, आशीष कल्पना और साथ में वंदना कुराड़ी, और साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव ककराली पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य लवलीन, अंजलि शुभम और साथ में इनके परिवारजन, झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और साथ में मयंक भाटिया, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं श्रोता हाँसी से सुभाष योगी, सुशील बब्बू डब्बू, राजू और बबीता मिगलानी। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह और साथ में प्यारी प्यारी कोकोदानी। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: इसी गीत को सुनना चाहा था। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर चावला, लोकेश पायल जोशी, अंकिता लक्ष्मी ध्रुव, बेबी बेदेही और साथ में हंसिका जोशी ने फरमाइश हमारी श्रोताओं ने हमें लिख भेजी। आप रोहतक से ही सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निकी तनवी और साथ में अंकित कांगड़ा, फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप ही मरहरा दरवाज़ा इटासी, नबी हसन अब्बासी, शहनवाज नवीद, सुहेल अनम यशप और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही फरमाइश होता हमें लिखते हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और साथ में शबनम बानू। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और साथ में मुन्ना नजीम। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से मोनी कबालू, विनय कुमार और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा था आप श्रोता रोहतक से ही सीताराम कांगड़ा, बबीत बोत और निखिल तनवी और अंकित कांगड़ा। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बापुर काजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोहेब कहकश और साथ में इनका पूरा परिवार। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने मैसेज हमें लिख भेजा है करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी प्रभालिका, विष्णु वर्धन और साथ में विघ्नेश। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। और ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने फरमाइश हमें लिखी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं श्रोता आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना, योगेश मंडी, सौरव साइना और साथ में निवान शर्मा। और साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है गणेशपुर गज डिडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साहमा फारूक सर, फराज गुल फराज और बेबी मुस्कान ने। श्रोताओं इसी के साथ आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर सम्पन्न हुआ। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में आपने लता मंगेशकर के गाए सुपर हिट सुमधुर गीतों को सुना, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे शाम 4:30 पर केंद्रित रहेगा कार्यक्रम एक कलाकार और आज की कलाकार होंगी लता मंगेशकर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। इस समय 12 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Man Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that the participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh met with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, Chairman of the House Foreign Affairs Committee.

0: bank unions last night on the issues related to the strike. Earlier, a three-day nationwide strike was called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in the public sector banks from the 28th to the 30th of September. They had called a strike in support of true principal demands, implementation of five-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive scheme. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said, "With indomitable courage and valour, Bhagat Singh infused new energy into the freedom movement." The Prime Minister added that Bhagat Singh's spirit of sacrificing everything for the honour of the nation is a symbol of the courage and resolve of India's youth. In Uttarakhand, the Chardham Yatra has resumed after improvement in weather conditions today. Garhwal Commissioner Anand Swaroop said necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Chardham Yatra had been suspended from the afternoon of September the 26th until September 27th in view of the weather forecast and safety of pilgrims. Meanwhile, repair and strengthening work is underway on the Kedarnath Dham trekking route near Chirbasa. The route was damaged by debris and boulders following heavy rainfall near Chirbasa, about 2.5 kilometres above Gaurikund. Movement through this section is currently completely closed. At the Asian Games 2026 in Japan, India's Isha Singh won the silver medal in women's 25-metre pistol individual competition at Aichi Nagoya today. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under-78-kilogram Kurash event, defeating South Korea's Lim Garam 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. In women's boxing event, Indian Olympic medalist Lovlina Borgohain secured a medal in the 75-kilogram category with a 5-0 quarterfinal win over South Korea's Seong Soo-yeon. The Indian stock market witnessed a sharp decline during forenoon trade today. The Sensex plunged 963 points to 72,932, while the Nifty tanked 306 points to 22,834 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM News Headlines।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा सुचारू करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोहियों और पोटर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। कालिंदी ट्रैक स्थित ओडन कॉल क्षेत्र में फंसे 29 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकालकर हर्षिल पहुंचाया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को आपदा की दृष्टि से 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बैंक यूनियनों की बैठक के बाद बैंकों ने 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल टाल दी है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए अंतर ज्ञान व आनंद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम सेमेस्टर की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर डाटा पर आज अंतिम सुनवाई होगी और 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 29 सितंबर को देहरादून में सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ त्रैमासिक वार्प बैठक आयोजित करेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित बोरिंग टेक्नीशियन व कंप्यूटर प्रोग्राम परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस ने जीत हासिल की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित हो रहा है।

0: हरिद्वार जिले में तिथौला के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 10 घायल। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी और देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। डीजे सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए अनन्या भटनागर के गाए भजन।

0: एलआईसी जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
1: एलआईसी, हर पल आपके साथ।
2: अरे अरे रुको, आगे सड़क पर बरसाती नाला बह रहा है।
3: पानी तो ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, कार निकाल लें क्या?
2: बिल्कुल नहीं, तेज बहते पानी को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पानी जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरा और तेज हो सकता है।
3: तो अब क्या करें?
2: यहीं सुरक्षित जगह पर रुकते हैं और पानी कम होने का इंतजार करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से रास्ता बदलने या सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी मिले तो उसका पालन करेंगे।
3: सही कहा। और आपात स्थिति के लिए मोबाइल चार्ज है?
2: हाँ, टॉर्च, पानी और जरूरी सामान भी साथ है। जरूरत पड़े तो 112-1070 या 1077 पर मदद के लिए कॉल करेंगे। सचेत ऐप से भी मौसम की जानकारी लेते रहेंगे।
3: एक गलत फैसला और मुसीबत बड़ी हो सकती है,
2: इसीलिए याद रखो, सड़क पर पानी दिखे तो रुकना है, जोखिम नहीं लेना है।
4: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
5: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
6: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
5: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
7: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
1: LIC, हर पल आपके साथ।
8: आइए आपको सुनवाते हैं अनन्या भटनागर का गाया कार्यक्रम में ये अगला भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनन्या भटनागर के गाए भजन। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं, अब यानी सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

घर गृहस्थी सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी और आपकी बहन मीरा नेगी। आशा करती हूं बहनों आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगी और साथ ही आप अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रख रही होंगी। बहनों आज की व्यस्त दिनचर्या में महिलाएं घर परिवार नौकरी बच्चों या और भी कई जरूरी दूसरी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताना भूल जाती हैं और ये तो आप जानती ही हैं कि परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए बहनों उनके साथ कुछ समय बिताना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनात्मक जरूरत भी है। अपने परिवार के साथ समय बिताने से आपसी समझ और अपनापन बढ़ता है। साथ बैठकर बातचीत करना भोजन करना बच्चों की बातें सुनना या परिवार के साथ खुलकर बात करने से हमारे रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। बहनों रोज़मर्रा की व्यस्तता के बीच हमें एक दूसरे से बात करने का समय निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें छोटी छोटी बातों को साझा करने का मौका मिलता है और हमें एक दूसरे की परेशानियों और समस्याओं के बारे में भी पता चलता है जिससे हमारे आपसी रिश्तों में सहयोग और विश्वास की भावना बढ़ती है। बहनों आज के समय में अपने बच्चों के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों से रोज़ थोड़ी बात करने से हमें यह पता चलता है कि उनके मन

0: क्या चल रहा है, उनके स्कूल में क्या हुआ, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है और वे किस बात से खुश हैं। यह सब हम आसानी से जान सकते हैं। बच्चे जब खुलकर बात करते हैं तो आपस में प्यार और भरोसा बढ़ता है। तो बहनों, बच्चों को और अपने परिवार को केवल खाना, कपड़ा या दूसरी ज़रूरत की चीज़ें देना ही काफ़ी नहीं है। उन्हें आप अपना समय और अपना प्यार दीजिए, ताकि आने वाले कल में आपके अपने परिवार के साथ रिश्ते और भी मजबूत बन सकें। इसी संदेश के साथ बहनों, समय हो गया है संगीत में विराम का, तो सुनते हैं ये गीत, लेकिन पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
2: LIC हर पल आपके साथ।
3: सारी निकलकर सामने आई है आपदा के बाद।
4: पापा, आज स्कूल बंद है, रास्ते में भूस्खलन हो गया है।
5: बेटा, अच्छा हुआ जो तुम समय पर घर आ गई।
4: अच्छा, अगर कभी हम भूस्खलन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
5: सबसे पहले घबराना नहीं, भूस्खलन से दूर सुरक्षित जगह पर जाओ। ढलान, टूटे पेड़ और चट्टानों के पास बिल्कुल मत रुकना। और हाँ, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वाहन धीरे और सावधानी से चलाना चाहिए।
4: लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए और निकलना मुश्किल हो तो?
5: ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहो और तुरंत मदद के लिए 112, 1070 या 1077 पर कॉल करो। और हाँ, मोबाइल में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड रखो, ताकि मौसम और आपदा से जुड़ी चेतावनियां समय पर मिल सकें।
4: समझ गई, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
5: बिल्कुल बेटा, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: बता दें, मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
2: LIC हर पल आपके साथ।

0: एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और एलआईसी की गारंटी।
1: एलआईसी हर पल आपके साथ।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम घर गृहस्थी में। बहनों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है काव्य पाठ का, तो आइए सुनते हैं काव्य पाठ नीलम जी से।
3: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां लेके आई हूँ। तो मेरी पहली कविता, ज्ञान की धार बहेगी जग में, ज्ञान की धार बहेगी जग में, सब जगमग हो जाएंगे। ज्ञान की धार बहेगी जग में, सब जगमग हो जाएंगे। इस धरा के हर एक प्राणी ज्ञान की ज्योत जगाएंगे। शिक्षित होकर ही समाज के दूर वो कष्ट कराएंगे। भेदभाव की पड़ी दरारें मिलकर साथ मिटाएंगे। जीव जंतु भी खुशी मनाए, ऐसा दिन दिखलाएंगे। मिलकर साथ रहेंगे सब खुशियां साथ मनाएंगे। ज्ञान की धार बहेगी जग में सब जगमग हो जाएंगे। इस धरा के हर एक प्राणी ज्ञान की ज्योत जगाएंगे। मेरी अगली कविता, मन तू क्यों उदास है, क्यों भटकता विचलित है। जीवन में है कष्ट हजारों, कष्टों से क्यों चिंतित है। रात हुई है भोर होगी अब, जगमग धरा हो जाएगी। जीवन में फिर से तेरे खुशियां अब आ जाएंगी। कर प्रेम इस जीवन से, ये देह कहाँ मिल पाएगी। मानव जीवन मिला है तुमको, जीवन का बोध करेगा कब। माटी में मिल जाएगा फिर प्रेम भला तू करेगा कब। कितना सुंदर कितना प्यारा संसार बनाया है प्रभु ने। जीवन भर रोएगा जो तू, हंस कर फिर दिखलाएगा कब। अगली कविता में, दर्द अपनों के खोने का मुझे मिला है, कोई न जाने दुनिया में बस यही गिला है।

0: है कोई न जाने दुनिया में, बस यही गिला है छोड़ जाते हैं कुछ यूं सफर में, कहाँ चलते हैं सब साथ डगर में। छोड़ जाते हैं कुछ यूं सफर में, कहाँ चलते हैं साथ सब डगर में। कुछ रास्तों को भार लाद अकेले चलना है, कुछ रास्तों को भार लादे अकेले चलना है। ये दुनिया है जिससे तुझे अब खुद लड़ना है, ये दुनिया है जिससे तुझे अब खुद लड़ना है। अपने लिए पहचान बना, अपने लिए पहचान बना, बना रास्ता बिन मतलब यहाँ कौन रखता है वास्ता, बिन मतलब यहाँ कौन रखता है वास्ता। तू जानता है सब, तू जानता है सब, कोई नादान नहीं, करना वही जो तुझे लगे सही। दूसरों की तू बात मानना अब छोड़ दे, दूसरों की तू बात मानना अब छोड़ दे, दुश्मनों से तू भी अब मुंह मोड़ दे। दर्द अपनों के खोने का मुझे मिला है, कोई न जाने दुनिया में बस यही गिला है। दर्द अपनों के खोने का मुझे मिला है, कोई न जाने दुनिया में बस यही गिला है। अगली कविता है मेरी पलायन। छोड़ दे जिद अब बात मान ले, छोड़ दे जिद अब बात मान ले, गांव के क्या है ठाट जान ले। खुले पहाड़ हरियाली छाई, खुले पहाड़ हरियाली छाई, चारों ओर खुशहाली लाई। खुले पहाड़ हरियाली छाई, चारों ओर खुशहाली लाई। देश विदेश का शोर सराबा, देश विदेश का शोर सराबा, छोड़ आओ वो झूठा दिखावा। देश विदेश का शोर सराबा, छोड़ आओ वो झूठा दिखावा। बड़ी बोड़ा सब भूली यहाँ है, बड़ी बोड़ा सब भूली यहाँ है, शहरों में ये बात कहाँ है। भूख प्यास भी लगे गांव में, भूख प्यास भी लगे गांव में, भूख प्यास भी लगे गांव में, सरपट चढ़ते पहाड़ पांव हैं। वापस से तुम आ जाओ, वापस से तुम आ जाओ, हरियाली गांव में लहलाओ। बूढ़े बुढ़िया बाट देख रहे, बूढ़े बुढ़िया बाट देख रहे, थक गए सब राह देखते। उन आँखों में रौनक लाओ, उन आँखों में रौनक लाओ, छोड़ दो लालच पहाड़ बसा लो। छोड़ दे जिद अब बात मान ले, गांव के क्या है ठाट जान ले। खुले पहाड़ हरियाली छाई, चारों ओर खुशहाली लाई। देश विदेश का शोर सराबा, देश विदेश का शोर सराबा, छोड़ आओ वो झूठा दिखावा। अगली कविता है कलम। कलम मेरी तू क्या क्या लिखती, कलम मेरी तू क्या क्या लिखती, हंसी भी भरती कभी पीड़ा दिखाती। कलम मेरी तू क्या क्या लिखती, कलम मेरी तू क्या क्या लिखती, हंसी भी भरती कभी पीड़ा दिखाती। कभी तू जीवन चित्र बनाती, कभी तू सोई आत्मा जगाती, कभी तू जीवंत चित्र बनाती, कभी तू सोई आत्मा जगाती। सच्चाई तू है साथी, दिखे सच तो तू चल जाती। सच्चाई की तू है साथी, दिखे सच तो तू चल जाती। सच्चाई की तू है साथी, दिखे सच तो तू चल जाती। चित्रपटल में उठे जो मेरे, चित्रपटल में उठे जो मेरे, उन सवालों के जवाब बनाती। कलम मेरी तू क्या क्या लिखती, कलम मेरी तू क्या क्या लिखती, हंसी भी भरती कभी पीड़ा दिखाती।
1: मेरी अंतिम कविता माँ की याद। उन दिनों की बात पुरानी, उन दिनों की बात पुरानी, जब समय सांझ का होता था। उन दिनों की बात पुरानी, जब समय सांझ का होता था। माजी मेरी लंप जलाकर रोशन घर को करती थी, माजी मेरी लंप जलाकर रोशन घर को करती थी। मध्यम रोशनी घर को जब आगोश में भरती थी, मध्यम रोशनी घर को जब आगोश में भरती थी। चूल्हे की रोटी तब गरम गरम मिल जाती थी, चूल्हे की रोटी तब गरम गरम मिल जाती थी। उन हाथों का स्वाद ऐसा कि भूख मेरी बढ़ जाती थी। गोद में फिर हम सो जाते, वो ऐसी लोरी सुनाती थी। गोद में फिर हम सो जाते, वो ऐसी लोरी सुनाती थी। उस माँ के आंचल का सुकून जन्नत जैसी मिल जाती थी, उस माँ के आंचल का सुकून जन्नत जैसी मिल जाती थी। उन दिनों की बात पुरानी, जब समय सांझ का होता था। उन दिनों की बात पुरानी, जब समय सांझ का होता था।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ नीलम जी से, और उम्मीद करते हैं बहनों आपको ये काव्य पाठ बहुत पसंद भी आया होगा। बहनों, छोटी छोटी बचत हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। घर चलाना सिर्फ खर्च करने का नाम नहीं बल्कि जरूरत के समय के लिए कुछ रकम बचाकर रखने की समझदारी भी है। आप अपनी आमदनी और होने वाले खर्चों का पहले से हिसाब रखें, जैसे महीने की शुरुआत में राशन, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या और भी कई जरूरी खर्चों के लिए रकम तय कर लें। इससे आप अपने पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं और जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं उनको भी आप कम कर सकते हैं। बहनों, आप बचत की शुरुआत छोटी छोटी रकम से कर सकते हैं, फिर चाहे बचत दैनिक हो या मासिक। इसे आप अपनी आदत बनाएं और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी रकम को अलग भी रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही छोटी छोटी रकम एक मुफ्त और उपयोगी रकम में बदल जाएगी, जो आपके आर्थिक संकट के समय में आपके काम आ सकती है। बहनों, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

मैनो कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे छोटी छोटी बचत के बारे में। हमारे द्वारा की गई बचत हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी उपयोगी है। आज बचाई गई रकम कल उनकी किताबों, शिक्षा, तकनीकी और कौशल विकास जैसे ज़रूरी ज़रूरतों के लिए काम आ सकती है। त्योहारों में, परिवार में शादी ब्याह या किसी आयोजनों में होने वाले खर्चों को भी आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अचानक आए खर्च या मुसीबत का भी आप मजबूती से सामना कर सकते हैं। बहनों, आपको आर्थिक सहायता के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने बच्चों को भी बचत की आदत सिखाएं ताकि वे भी भविष्य में अपनी ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझें, और साथ ही वे ये समझें कि पैसे तुरंत खर्च करने के बजाय थोड़ा बहुत बचाकर रखना भी ज़रूरी है। बहनों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और याद रखिए बचत की रकम छोटी हो सकती है लेकिन अगर बचत की आदत नियमित हो तो समय के साथ वही रकम जरूरत के समय बहुत काम आ सकती है। और अब इसी संदेश के साथ सुनते हैं एक और गीत।

बहनों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी अनुभाग कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून 248001। बहनों, आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और अब अपनी बहन मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी मैंने सुन रही थी कार्यक्रम घर गृहस्थी। हम आपको याद दिला दें, दोपहर 3:02 पर सुनिएगा नाटक सरफरोशी की तमन्ना। आलेख है बीके डोभाल का और प्रस्तुति होगी रमेश चंद्रा की। सुनना ना भूले दिन में 3:02 पर नाटक सरफरोशी की तमन्ना। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में इस समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2,000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान पर MDR लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले के ऑर्डेंस कॉल क्षेत्र से सभी 29 ट्रैकर्स का सफलतापूर्वक हेली रेस्क्यू किया गया। अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। मौसम में सुधार के बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा फिर से शुरू। शासन प्रशासन मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति की लगातार कर रहा निगरानी। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। और प्रदेश में ग्राम स्तर तक संस्कृत शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन। संस्कृत को पाठ्य पुस्तकों से निकालकर आम बोलचाल तक पहुंचाना है उद्देश्य। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अलग अलग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण मार्गों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। उत्तरकाशी जिले में मौसम खुलने के बाद आज कालिंदी ट्रैक के ऑर्डेंस कॉल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकालकर हर्षिल पहुंचाया गया। SDRF के नेतृत्व में जिला पुलिस, भारतीय सेना, स्थानीय प्रशासन और युकाडा की संयुक्त टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। हर्षिल हेलीपैड पहुंचने के बाद सभी ट्रैकर्स को प्राथमिक उपचार दिया गया। सभी की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई गई है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी ट्रैकर्स अपने अपने गंतव्य के लिए सुरक्षित रवाना हो गए। रेस्क्यू किए गए ट्रैकर राज चौहान ने चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान चलाने के लिए सरकार और सेना की सराहना की।
4: अभी हम लोग ऑर्डन कॉल बेस कैंप से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू

0: प्रयास किए जा रहे हैं।
1: कुछ ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स उत्तरकाशी जनपद में फंसे हैं और कुछ लोग फंसे हैं बागेश्वर जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में जो लोग फंसे थे, एक अडेन कोल के पास में कुछ लोग थे, 29 लोग थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। कालिंदी ट्रैक पर हेलीकॉप्टर गया लेकिन कहीं उतरने की जगह नहीं मिली तो उसको वापस आना पड़ा। दूसरी टीम भेजी जा रही है वहां पर रेकी करने के लिए। रेकी करके देखेंगे कि कहां पे सेफली लैंड कर सकता है हेलीकॉप्टर, और जहां लैंड करेगा वहां से फिर हम लोग आगे का ऑपरेशन शुरू करेंगे। क्योंकि रास्ते में बर्फ है तो मैनुअल रेस्क्यू करना तो संभव नहीं है। हम लोग पहला प्रयास ये करेंगे कि किसी तरह से हेली रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए कार्रवाई चल रही है।
0: उधर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा के मार्ग के चीरबासा भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 1,500 तीर्थयात्रियों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने सुरक्षित निकालकर गौरीकुंड पहुंचाया। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से कल देर रात इस संबंध में सूचना मिलने पर बचाव दल मौके पर पहुंचे। चीरबासा हेलीपैड के पास मलबा जमा होने और पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के बीच टीमों ने सावधानीपूर्वक यात्रियों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से पार कराया। इसके बाद सभी यात्रियों को गौरीकुंड की ओर रवाना किया गया। मौसम में सुधार के बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा आज फिर से सुचारू कर दी गई है। शासन प्रशासन की ओर से मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं से भी मौसम की जानकारी लेकर और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा है कि संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने जिलों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यात्रा संचालन के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। मार्ग अवरुद्ध होने या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में जिलाधिकारी अपने स्तर से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि खराब मौसम के कारण गत 26 और 27 सितंबर तक चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य संस्कृत को पाठ्य पुस्तकों से निकालकर आम बोलचाल तक पहुंचाना है, ताकि ये प्राचीन भाषा दैनिक जीवन में भी अपनी जगह बना सके। वहीं संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इससे संस्कृत शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरौला ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत आयोग के गठन की प्रक्रिया इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित आयोग के जरिए संस्कृत शिक्षा, शोध, प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा

0: को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। संस्कृत भाषा को ब्लॉक और ग्राम स्तर तक भी पहुंचाने की योजना है।
1: कि हमने ये संस्कृत ग्राम वाली जो परिकल्पना थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दिशा निर्देश है, हमारे मंत्री जी भी इसमें लगे रहते हैं। तो अभी हमने जो प्रारंभ किया है वो एक जिले में एक गांव। धीरे धीरे अगर हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती रहती है तो आने वाले 5 साल के अंतर्गत हम प्रत्येक ब्लॉक में, अभी तो हमारा एक जिले में एक गाँव है, फिर एक ब्लॉक में हमारे 95 ब्लॉक है, हम हर ब्लॉक में एक गाँव को चिन्हित करेंगे कि वहां संस्कृत संभाषण सिखा करके वहां की जनता को संस्कृत संभाषण सिखा करके और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जाए।
0: बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के 63 रिक्त पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 62 और क्षेत्र पंचायत सदस्य का एक पद शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा पांडे ने बताया कि नामांकन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दाखिल किए जाएंगे। 3 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 4 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। 5 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 12 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक और मतगणना 14 अक्टूबर को होगी। बागेश्वर में ग्राम पंचायत सदस्य के 29, गरुड़ में 16 तथा कपकोट में 17 ग्राम पंचायत सदस्य और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद रिक्त है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले के ऑर्डेंस कॉल क्षेत्र से सभी 29 ट्रैकर्स का सफलतापूर्वक हेली रेस्क्यू किया गया। अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। मौसम में सुधार के बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा फिर से शुरू। शासन प्रशासन मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति की लगातार कर रहा निगरानी। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण बताया। और प्रदेश में ग्राम स्तर तक संस्कृत शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन। संस्कृत को पाठ्य पुस्तकों से निकालकर आम बोलचाल तक पहुंचाना है उद्देश्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है राज। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम शर्वण ने।

ये थे अलका याग्निक और उदित नारायण, फिल्म का नाम था कसूर। श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में कार्यक्रम में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है रुस्तम, शब्द है मनोज मंतशिर की और संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

श्रोतों, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी,
1: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
1: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने

0: जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
0: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से। डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
0: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की। और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
0: जी,
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम 2 ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक

0: में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
1: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
2: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
1: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
2: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
1: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
1: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
2: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
1: उसने सोचा,
2: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
1: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
4: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
5: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
1: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने
5: क्या
2: क्या
5: मसला है।
1: ठीक है, चलो भगवान सब ठीक
2: हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
6: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
6: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
6: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
6: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
7: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
8: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
8: थापा जी कैसे हैं?
6: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
8: कैसे समाचार?
6: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
8: अरे वो हमारा गौरव है,
7: हमारा गौरव है।
4: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
6: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
8: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
7: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: जब तक सूरज चांद रहेगा
9: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
4: भारत माता की
9: जय,
4: भारत माता की
9: जय।
10: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
11: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवन

0: उदाहरण है।
1: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
0: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
1: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
0: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
1: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
2: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
3: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
2: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
3: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
2: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
3: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
2: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
3: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
2: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे बढ़ो।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं।

0: बहुत अधिक है।
1: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है कि वो जल्दी से जल्दी सहायता दे। पर इनको रोक के रखो। हेलो हेलो सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड ओवर।
2: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड। संदेश दीजिए मेजर।
1: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए ओवर।
2: मेजर इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
1: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो।
3: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
1: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
3: ए सुनो, रुको रुको रुको यहीं पे।
1: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है। तो संभालो अपनी बंदूक, एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली,
4: जय आया गौर काली।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो,
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे

0: चिट्ठी भेजी है। देखो गांव वालों को कोई चिट्ठी आई है।
1: जिंदा है? अरे बहुत खुशी
2: है बेटा।
0: ओ हाँ।
1: जिंदा है धन सिंह थापा।
3: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परम वीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना,
5: अर्शद,
4: सौम्या,
5: प्रसून
4: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
5: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आपको याद दिला दी, दिन में 3:02 पर सुनिएगा नाटक सरफरोशी की तमन्ना। सुनना न भूलें दिन में 3:02 पर यह नाटक। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: Just a sharp decline, and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली तीन दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
5: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
5: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
5: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
4: आंवले ने

0: प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
1: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
1: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
5: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 2:30 हुई है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। ये कालजी विचार थे शहीद भगत सिंह की। वे एक ऐसी क्रांतिकारी थी जिनकी चर्चा के बिना देश की आज़ादी की चर्चा अधूरी है। भारत माँ के इस वीर सपूत की हम चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा स्क्रैबल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है, मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा।

0: नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है।
1: रंग केसर शूरा।

सैनिक साथियों, शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह संदूर, माता का नाम विद्यावती कौर था। इनका जन्म लालपुर जिले के बंगा के सिख परिवार में हुआ था। इन्होंने गांव में ही 5वीं तक की पढ़ाई की और साथ में उसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया। और भगत सिंह जब नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे तो वहाँ इनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण व अन्य क्रांतिकारियों से हुई। और उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी, लेकिन लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने छोड़कर देश की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की इन्होंने स्थापना की और युवाओं में देशभक्ति की अलग जगाने लगे। वहीं उनके परिवार वाले इनकी जब शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने साफ मना कर दिया। लेकिन भगत सिंह को देशभक्ति का जुनून था और ये कॉलेज के नाटकों में ही भाग लिया करते थे। ये नाटक भी देशभक्ति से परिपूर्ण होते थे ताकि वे और दूसरे लोगों को भी आज़ादी के लिए प्रेरित कर सकें।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, कॉलेज शिक्षा के दौरान भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और वहीं इन्होंने लाला लाजपत राय व अन्य क्रांतिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और उनके विचारों से बेहद प्रभावित हुए। लेकिन देश की आज़ादी के लिए ये हिंसात्मक क्रांति को इन्होंने अपनाया, इसलिए वे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु के जुलूस में भाग लेने लगे और इनकी जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तो वहीं इनके परिवार का भी इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो सभी लोग देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन 9 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए चली पैसेंजर ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश सरकार का इन्होंने खजाना लूटा। वहीं 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खूब प्रदर्शन हुए। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस तरह का नारा लगाते हुए ये स्टेशन पर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन बाद में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के बाद मृत्यु हो गई। चर्चा भी जारी है, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

सैनिक साथियों, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह बेहद आहत हुए और देश की आज़ादी के लिए वे जी जान से जुट गए। इस तरह इन्होंने जेल में लगभग 2 साल बिताए और वहां इनकी लेखनी खूब चला करती थी और ये क्रांतिकारी विचार व्यक्त किया करते थे। लेकिन इस दौरान वे लगातार अध्ययन भी किया करते थे और वहीं जेल में रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। और इसके साथ ही जो यतीन्द्रनाथ दास थे, इस भूख हड़ताल के दौरान इन्होंने प्राण भी त्याग दिए थे। सैनिक साथियों, भगत सिंह को जेल में यातनाएं खूब झेलनी पड़ी, पर 23 अगस्त 1930 को इन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधी करार दिया और 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट में 68 पृष्ठों के निर्णय से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ये लगातार ब्रिटिश सरकार के आगे झुके नहीं, लेकिन भारत माता की जयकार लगाते रहे और अंत में 23 मार्च 1931 की शाम को 7:31 पर इन्हें फांसी दे दी गई। सैनिक साथियों, देश के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की जयंती पर आज हम इन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।

सैनिक साथियों उसी के साथ सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उत्तरकाशी जिले में मौसम खुलने के बाद कालिंदी ट्रैक के ऑर्डेंस कॉल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकालकर हर्षिल पहुंचाया गया। विपरीत मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू टीमों द्वारा अन्य ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ट्रैकर्स और पोर्टर्स की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में सभी आवश्यक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला जाए। मौसम में सुधार के बाद प्रदेश में चार धाम यात्रा फिर से सुचारू कर दी गई है। श्रद्धालुओं से भी मौसम की जानकारी लेकर और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। देहरादून के आंगनवाड़ी केंद्र नंदा की चौकी में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और लाभार्थी महिलाओं व किशोरियों को महालक्ष्मी किट, बेबी किट तथा पोषण किट वितरित किए। पिथौरागढ़ जिले में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। जिले में ग्राम प्रधान के 2 और ग्राम पंचायत सदस्य के 285 पदों पर चुनाव होगा। मतदान 12 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक और मतगणना 14 अक्टूबर को होगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज कराई गई। इनमें से 32 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। गढ़वाल मंडल के जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 यानी 100.5 गीगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3:03 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए नाटक सरफरोशी की तमन्ना। आलेख है BK डोभाल का।
2: प्रस्तुत है नाटक सरफरोशी की तमन्ना। आलेख डॉक्टर VK डोभाल का। पात्रों की भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: भगत सिंह अनुराग वर्मा, दुर्गा भाभी मिताली पुनेठा, राजगुरु सनवर अली, सुखदेव योगंबर पोली, लाला लाजपत राय डॉक्टर VK डोभाल। संपादन एवं प्रस्तुति रमेश चंद्रा की है।

0: Simon Commission, go back!
1: Go back! Go back!
0: Simon Commission, go back!
1: Go back! Go back!
0: Simon Commission, go back!
1: Go back! Go back!
0: Inqilab,
1: Zindabad!
0: Inqilab,
1: Zindabad!
0: Inqilab,
1: Zindabad!
0: Inqilab!
2: Maro! Maro! Maro! Maro!
0: Bachao!
2: Bachao!
0: मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी।

0: einmal gemischt.
1: सत्रह नवंबर 1928 पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में घायल होने के ठीक 18 दिन बाद वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि
2: बस बहुत हुआ भगत, दिन दहाड़े हमारे नेता को मार दिया। अरे हम कब तक सिर्फ नारे ही लगाएंगे?
3: ये लाठियां सिर्फ लाला जी के शरीर पर नहीं पड़ी सुखदेव, ये हर हिंदुस्तानी के सीने पर पड़ी हैं। इस कॉर्ड को सजा मिलनी ही चाहिए।
4: हाँ राजगुरु, लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। अब वक्त है कि हम वो कील ठोक दें।
2: लेकिन कैसे? वो अंग्रेज अफसर हर वक्त सिपाहियों से घिरा रहता है।
4: हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे सुखदेव, लेकिन याद रखना ये निजी बदला नहीं है, ये एक जालिम हुकूमत को चेतावनी है।
5: चेतावनी ही नहीं भगत, इंसाफ चाहिए इंसाफ। अखबार वाले लिख रहे हैं बूढ़े नेता की मौत हार्ट फेल से हुई। झूठ, सरासर झूठ। सरेआम हुए कत्ल को ये लोग हादसा बता रहे हैं।
4: इसीलिए दुनिया को बताना पड़ेगा भाभी कि हमने ऐसा कदम क्यों उठाया।
3: स्कॉट रोज 4:30 बजे डीएवी कॉलेज के सामने से मोटरसाइकिल पर निकलता है और एक अंगरक्षक भी साथ में होता है।
4: ठीक है, तो मैं और राजगुरु हम दोनों गोली चलाएंगे। सुखदेव तुम भीड़ संभालना और हमारे भागने का रास्ता देखना।
5: और मैं क्या सिर्फ खाना बनाऊंगी और खबर लाऊंगी?
2: भाभी ये काम खतरनाक है, अंग्रेज औरतों को भी नहीं छोड़ते। अगर आपके ऊपर शक हुआ तो?
5: देश की आजादी क्या सिर्फ तो मर्दों का काम है सुखदेव? लाला जी के लिए मेरी भी आंखें रोई हैं, मुझे भी हिस्सा चाहिए। क्या फांसी का फंदा सिर्फ मर्दों की ही गर्दन नापता है? देश पर जब चोट पड़ती है ना तो ये दर्द सबको बराबर होता है।
4: अच्छा ठीक है भाभी, आप बताइए आप क्या करना चाहती हैं?
5: मैं हथियार पहुंचाऊंगी, पुलिस को चकमा देकर पिस्तौल ठिकाने तक लाना हम औरतों के लिए आसान काम होगा। बुर्के के अंदर कौन झांकेगा? और हाँ, अगर तुम लोगों में से कोई भी पकड़ा गया, कोई भी, तो मैं ही मुकदमा

0: सब तैयार है ना?
1: हाँ, 17 दिसंबर 1928 लाला लाजपत राय की मौत के ठीक एक महीने बाद, इंसाफ का दिन, इनकलाब
2: जिंदाबाद,
1: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
3: योजना के मुताबिक हमला होगा, लेकिन पहचान में गलती हो गई। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेपी सैंडर्स सामने आ गया और गोली उसे लगी।

0: भगत वो स्कॉट नहीं था, सैंडर्स था। हमने गलत आदमी को।
1: वो भी इसी साम्राज्य का हिस्सा था राजगुरु। जिस लाठी से लालाजी को मारा गया वो इसी हुकूमत ने दी थी। पर्चे बांटे तुमने?
0: हाँ, साइकिल से पूरे इलाके में हमने लालाजी की मौत का बदला लिया। सबको पता चल जाएगा कि हम क्यों लड़े।
2: पुलिस आ रही है। हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने पीछा किया, लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या सुखदेव?
2: चंद्रशेखर आजाद ने आत्मरक्षा में उस पर भी गोली चलाई। वो नहीं बचा।

0: लहू तो बहना ही था। इस साम्राज्य की नींव लाशों पर टिकी है। ठीक है, एक दो और सही। अब हमें यहां से निकलना होगा। भाभी, आप हमें यहां से जल्दी निकालने में मदद करिए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए।
1: भगत, एक बात पूछूं?
0: हाँ हाँ भाभी।
1: तुम तो पढ़े लिखे हो, वकील बन सकते थे, आराम की जिंदगी जीते, फिर ये खून खराबे का रास्ता क्यों भगत?
0: क्योंकि भाभी, किताबें पढ़कर मैं समझ गया कि जुल्म की इमारत सिर्फ दलीलों से नहीं गिरती, उसके लिए बारूद चाहिए। लाला जी ने दलील दी, बदले में लाठी मिली। बस अब दलील का वक्त खत्म।
1: और अगर अगर कल तुम, मेरा मतलब है, अगर हम में से कोई ना बच पाया तो?
0: तो क्या भाभी, व्यक्तियों को कुचलकर वो विचारों को नहीं मार सकते। हमारा मरना ही हमारी जीत होगी। लोग पूछेंगे, ये लड़के कौन थे जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, और बस चिंगारी फैल जाएगी।
1: चलो, तुम्हारी शर्ट पर साहबी का ठप्पा लगाती हूँ ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। कल तुम्हें अंग्रेज अफसर बनना है ना?
2: ये देखो भाभी, कैसा लग रहा हूँ, कोई पहचाने का तो नहीं?
1: वाह, बिल्कुल बड़े अफसर के सर्वेंट लग रहे हो। हाँ सुनो, गोली चलाते वक्त ये हाथ नहीं कांपने चाहिए। लाला जी को याद रखना, वो लाठी खाकर भी नहीं हिले थे।
3: भगत, तू दाढ़ी कटवा दे, ये पैंट कमीज पहन ले, और हाँ ये अंग्रेजों वाला हैट भी पहन ले ताकि तुझे कोई पहचान न सके। राजगुरु तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। दुर्गा भाभी भी साथ चलेगी।
1: डर तो नहीं लग रहा भगत? स्टेशन पर पुलिस ही पुलिस है।
4: शहर में हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, हर गली में नाके। कहते हैं कि क्रांतिकारियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म है।
1: तो क्या हुआ, डर गए? तेरे भगत भाई ने कहा था ना, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। हमारा ये विचार मर नहीं सकता सुखदेव।
4: भाभी, मरने से नहीं डरता,

0: डर तो इस बात से लगता है कि अगर हम न रहे तो माँ भारती को कौन पूछेगा। अरे लाला जी की चिता ठंडी पड़ जाएगी।
1: डर भाभी, डरते तो आज यहाँ होते ही नहीं। लाला जी का चेहरा याद है, वो डरते तो लाठी के सामने सीना तान कर खड़े ना होते। और कौन कहता है हम मर जाएंगे सुखदेव? शरीर मरता है, विचार नहीं मरते। हम तो वो दिए हैं जो तूफान में जलकर दूसरों का रास्ता रोशन करेंगे।

0: बस 10 मिनट है जीवी जी, ज्यादा बात नहीं, चलिए।
1: 10 मिनट? 23 साल की जिंदगी का हिसाब सिर्फ 10 मिनट? भगत
0: नहीं,
2: नहीं भाभी, रोना मत। अरे ये बेड़ियां तो गहने हैं, देखना कल ये उतर जाएंगी हमेशा के लिए।
1: कल 23 मार्च तुझे राजगुरु और सुखदेव को कथा।
2: भाभी कल, अरे शहादत का दिन रोने के लिए नहीं होता। सुखदेव और राजगुरु भी तैयार हैं और हम तीनों ने तय किया है कि फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमेंगे। और भाभी याद है ना आपने स्टेशन पर क्या कहा था? आपने कहा था कि हंसते हुए जाना, तो मैं तो वही कर रहा हूं।
1: पर भगत एक बार, बस एक बार कह दे, तुझे मरना नहीं है। मैं उस वॉइस राय से जाके ना माफी मांग लूंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी मैं।
2: भाभी भाभी, भगत सिंह माफी मांगे? जिससे लाला जी की लाठी का बदला लिया उससे माफी? नहीं भाभी, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं।
0: टाइम पर
1: रुकिए, एक मिनट। भगत कुछ कहना है इस दुनिया से, कोई आखिरी पैगाम?
2: हाँ भाभी, मैं नहीं रहूंगा पर मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे, उन्हें देश के हर नौजवान तक पहुंचा देना। साथियों, इसे मेरा आखिरी प्रणाम समझना। मैं, सुखदेव और राजगुरु फांसी के तख्ते पर होंगे, हमें इसका कोई अफसोस नहीं। मुझे फांसी से डर नहीं लगता, डर लगता है तो इस बात से कि कहीं मेरी मौत बेकार ना चली जाए। मैं चाहता था कि नौजवान पढ़े, सोचे, सवाल करे। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार तो विचारों की सान पर तेज होती है। पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम्हारे सवालों से हुकूमत की नींद उड़ जाए। लाला लाजपत राय की लाठी का कर्ज मैंने चुका दिया, अब देश का कर्ज तुम्हारे ऊपर है। आखिर में यही कहूंगा, कभी समझौता मत करना, झुकना मत, और जब भी जरूरत पड़े तो हंसते हंसते कुर्बान हो जाना। भाभी, बुराई के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। हम अपराधी नहीं हैं, हम तो वो दीवाने हैं जो अपने लहू से आजादी का इतिहास लिख रहे हैं।

पहुंच जाएगा भगत। हर गांव, हर शहर, हर स्कूल में पहुंचेगा तेरा ये पैगाम। और मैं वादा करती हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी तेरी लड़ाई लड़ूंगी। उस वॉइस

0: कि ट्रेन तो बच गई पर ये साम्राज्य नहीं बचेगा।
1: इंकलाब जिंदाबाद।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक सरफरोशी की तमन्ना। आलेख था डॉक्टर वी के डोभाल का। पात्रों का भूमिका सहित परिचय: भगत सिंह अनुराग वर्मा, दुर्गा भाभी मिताली पुनेठा, राजगुरु सनवर अली, सुखदेव योगंबर पोली, लाला लाजपत राय डॉक्टर वी के डोभाल। संपादन एवं प्रस्तुति थी रमेश चंद्रा की।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक सरफरोशी की तमन्ना। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 3:28 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

0: ये स्वर थे रीति मोहन, विशाल डड्डानी और साथियों की फिल्म का नाम था हैप्पी न्यू ईयर। गीता इरशाद कामिल का और संगीत विशाल शेखर का था।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: कहानियाँ इंश्योरेंस की।
4: उस दिन घोष बाबू लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, तभी उनके कान के पास कोई गुनगुनाने लगा, एक मक्खी। घोष बाबू ने उसे मारा नहीं, फिर भी किस्मत ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। बोनट पे बहुत बड़ा डेंट आया था, पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं थी, बल्कि मुस्कुराकर बोले, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया, अब गाड़ी की मरम्मत का खर्चा इंश्योरेंस देगा।
5: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए अच्छा किया इंश्योरेंस लिया .com एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।
6: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
0: गाने नए तराने का ये अगला गीत कमाल खान और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम है डर्टी पिक्चर। शब्द हैं रजत अरोड़ा की और संगीत विशाल शेखर के हैं।

0: इंश्योरेंस की।
1: 11:05 हो रहे थे। हर रोज की तरह मेरी आंटी सोसाइटी के कुत्तों को बिस्किट खिलाकर घर आई। शांताबाई घर का फर्श पोछ रही थी कि अचानक मेरी आंटी का पैर गीले फर्श पर से फिसला और मारी बिस्किट की तरह टक से उनकी हड्डी टूटी। हॉस्पिटल का लंबा बिल देखकर मेरी आंटी हिचकिचाई नहीं बल्कि हंस के बोली, अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब बिल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा।
2: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए achakiainsurancelia.com an insurance awareness initiative by General Insurance Council of India।
3: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
4: समय 3:40 और 2 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं शाहिद माल्या, आशीष कौर और साथियों को। फिल्म का नाम है पंगा। गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: कहानियाँ इंश्योरेंस की।
1: 11:05 हो रहे थे। हर रोज की तरह मेरी आंटी सोसाइटी के कुत्तों को बिस्किट खिलाकर घर आई। शांताबाई घर का फर्श पोछ रही थी कि अचानक मेरी आंटी का पैर गीले फर्श पर से फिसला और मारी बिस्किट की तरह टक से उनकी हड्डी टूटी। हॉस्पिटल का लंबा बिल देखकर मेरी आंटी हिचकिचाई नहीं बल्कि हंस के बोली, अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब बिल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा।
2: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए अच्छाकियाइंश्योरेंसलिया.com एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।
3: अच्छा किया।

आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम था पुष्पा द राइज। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है AR रहमान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हाईवे। गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज़ ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप।

0: ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: हम आपको याद दिला दी, शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा उस्ताद विलाद हुसैन खां का ख्याल गायन। शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। एक कलाकार, आज की कलाकार होंगी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। आइए श्रोता, बढ़ते हैं गाने नए तराने के अंतिम गीत की ओर। सुनते हैं शान कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ में। गीत फिल्म का नाम है फना। गीत है प्रसून जोशी का और संगीत जतिन ललित का है।

0: श्रोता सुन रही थी ईशान कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था फना। श्रोता में से गीत के साथ ही गाने नए तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार। आज की कलाकार होंगी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 4 बजे ही आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में खराब मौसम के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स की सुरक्षित निकासी के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ऑर्डेंस कॉल क्षेत्र के सभी 29 और कालिंदी पास क्षेत्र के 9 ट्रैकर्स समेत अब तक 38 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। शेष लोगों की निकासी के लिए अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ट्रैकर्स और पोर्टर्स की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में सभी आवश्यक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला जाए। रुद्रप्रयाग जिले में चीरवासा के पास भारी बारिश के कारण केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग फिर अवरुद्ध हुआ। मलबा और पत्थर आने से सोनप्रयाग और गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों को सुरक्षा के दृष्टिगत बीच के पड़ावों पर रोका जा रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का संवेदनशीलता और समयबद्धता से समाधान करने तथा केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिलाने के निर्देश दिए। चीन के शंघाई में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने 6 रजत पदक और 20 उत्कृष्टता पदक हासिल कर वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स और पार्थ वोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। पौड़ी गढ़वाल के पाबो विकास खंड के चिपलघाट में सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिविर में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। और राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। गढ़वाल मंडल के जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए उस्ताद विलायत हुसैन खां का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग सावनी नट और जयत कल्याण। तो कार्यक्रम में पहले सुनिए उस्ताद विलायत हुसैन खां का गाया राग सावनी नट।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद विलायत हुसैन खां का ख्याल गायन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हमारी आज की कलाकार हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने 6 दशकों के कार्यकाल का जो समय रहा है बहुत ही उपलब्धि भरा रहा है। उन्होंने अपनी आवाज से 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत अपनाया है और भारत की सबसे लोकप्रिय सुर सम्राज्ञी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर उनका नाम है। इनका जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कार्यक्रम में इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे। पहले सुनवाते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

शुदम पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को लता दीदी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बचपन का नाम हेमा था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचे नायक थे। इन्होंने लता जी को आरंभ में संगीत की शिक्षा दी जब वे मात्र 5 वर्ष की थी, और इनके साथ ही साथ इनकी बहनें आशा, उषा और मीना ने भी संगीत सीखा। बाद में इन्होंने अमान अली खान साहिब से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। और लता मंगेशकर की आवाज़ को अगर यूँ कहें कि कुदरत की देन है, जी बिल्कुल यही हम कह सकते हैं कि वे इतना सुरीला गाती थी कि साथ ही वे किसी भी गीत को समझने और अभिनय की कला में भी वो बहुत निपुण थी। आइए अब सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज की कलाकार पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। श्रोताओं, जब ये मात्र 5 वर्ष की थी तो पहली बार इन्होंने नाटक में अभिनय किया और ये अवसर दिया था इनके पिता ने और यहीं से फिल्मों में इनके अभिनय की शुरुआत हुई। लेकिन इनकी रुचि संगीत के गायन में थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई और इस समय ये मात्र 13 वर्ष की थी। तब इनके पिता के एक मित्र और नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनकी मदद की और एक सफल गायक कलाकार बनने में इनकी सहायता की।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार, आज की कलाकार हैं पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। श्रोता कहते हैं ना, सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी ने भी अपना स्थान बनाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और शुरू में तो बहुत से संगीतकारों ने इन्हें काम देने से मना कर दिया और धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत के बल पर ये आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इनकी मेहनत को रंग लाने लगी और ये मेहनत की कामयाबी इन्हें मिलने लगी और एक दिन ऐसा आया कि फिल्म जगत की मशहूर हस्ती बन गई। श्रोता बात करें इनकी करियर की तो संगीत में लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली वर्ष 1947 की फिल्म जिसका नाम था आपकी सेवा में, जिसके लिए इन्होंने पहली बार गीत गाने का इन्हें मौका मिला और इसके बाद फिल्म जगत में इन्हें धीरे धीरे पहचान मिलने लगी और एक के बाद एक गीत गाने के इन्हें मौके मिलने लगे। पर इनका पहला गीत वर्ष 1949 में बॉम्बे टाकीज की फिल्म महल से आया। गीत था आए गाने वाला और ये गीत इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ और इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों के लिए बहुत से गीत गाए।

श्रोता, इस प्रकार से लता मंगेशकर ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक संगीतकारों के साथ काम किया है, जिनमें अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जय किशन, एस टी बर्मन, आर डी बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र, कल्याण जी आनंद जी आदि शामिल हैं। साथ ही अनेक फिल्मों के लिए गीत गाए हैं और कुछ फिल्मों में से इन्होंने बेहतरीन गीत गाए हैं जो हमेशा लोकप्रिय हो गए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। आइए अब सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, इस प्रकार से लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में फिल्मी गीतों के अलावा भजन, गजल, कव्वाली और देशभक्ति गीत भी गाए हैं और इनका गाया गैर फिल्मी गीत ये मेरे वतन के लोगों, तो जैसे इनकी आवाज में अमर ही हो गया। श्रोताओं, इस प्रकार से लता मंगेशकर ने 36 से अधिक भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा फिल्मी गीत गाए हैं और जिनमें विदेशी गीत भी शामिल हैं। फिल्मों में योगदान के लिए इन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें फिल्म फेयर का पुरस्कार प्राप्त किया है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं और साथ ही ये पद्म भूषण से सम्मानित की गई और 1990 में इन्होंने फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें पुरस्कार मिला। 1994 वर्ष 2004 में फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड से ये सम्मानित की गई और 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी और वर्ष 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ लॉरल से ये सम्मानित की गई। श्रोतम, वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया।

श्वेतांपाल शिव गायिका लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में गाए गीतों से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन ऊपर वाले को जैसे कुछ और ही मंजूर था और वे 6 फरवरी 2022 को संगीत यात्रा को छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई और वे हमेशा के लिए हमारे लिए छोड़ गई अपनी आवाज में गाए गीत जो आज भी अमर है। आइए कार्यक्रम के समापन में सुनवाते उनकी आवाज में कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुंबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि UAE ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल N. वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉ. मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की गई। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

0: बाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले जानकारी दे रहे हैं आज के शेष कार्यक्रमों की। आपको बता दें कि आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 10 बजे आप सुनेंगे जापान में आयोजित 20वें एशियन खेलों पर आधारित डेली हाइलाइट्स। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

शाम 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय अंचल के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा पशुधन पशु कल्याण विषय पर श्री सावन कुमार से विनिध्यानी की बातचीत। रात 8 बजे हिंदी वार्ता में आज आप सुनेंगे श्री शोएब समी से वार्ता, विषय रहेगा भगत सिंह स्वाधीनता आंदोलन का अमर स्वर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी अब से थोड़ी ही देर में, यानी 5:10 पर, और शाम 7 बजे किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम का समय होगा जिसमें चर्चा होगी पशुओं के टीकाकरण पर। साथ ही आप शाम 7:50 पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे ज्ञान दर्पण। 8:10 पर विशेष सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल।

और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल मंगलवार का दिन 29 सितंबर 2026 है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:05 पर चिंतन और भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के साथ होगी। कल सुबह 7:30 पर शैल संगीत में आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00 और 9:10 पर विशेष सीरीज के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल जो कि NST की प्रस्तुति होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर सुनिएगा विविध कलाकारों के गाए गुजराती लोकगीत। दोपहर 12:30 पर महिला जगत में आप सुनेंगे स्वास्थ्य भेंट वार्ता जिसमें आप प्रीति डॉक्टर प्रीति से बात होगी। विषय रहेगा महिलाओं में हृदय रोग कारण लक्षण और उपचार। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर जिसमें कल बात होगी कैप्टन दविंदर सिंह जस की। कल शाम 7:00 किसान वाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे बागवानी में वैज्ञानिक विधि और आधुनिकता के विषय पर श्री इंद्र सिंह नेगी से बातचीत।

0: शाम की नरम हवाओं में सुकून सा घुल जाए, ढलते सूरज का रंग दिल को खूब भा जाए,
1: दिन भर की थकान भी हंसते हंसते मिट जाए और ये प्यारी सी शाम हर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाए। तो गुड वाली गुड इवनिंग है जी दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवानी में और हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। मैं हूँ आपके साथ दोस्त अंशिका शर्मा
0: और मैं दोस्तों सिमरन अग्रवाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी शाम को अच्छे से आप बिता रहे होंगे। और आज इस इवनिंग का प्राइम टाइम पर हम लेकर आए हैं दोस्तों एक ऐसे डोज जो आपके थके हुए दिन को एकदम वीआईपी अपग्रेड दे देगी।
1: अच्छा सिमरन, क्या बात है भाई, क्या बात
0: जी
1: है।
0: अंशिका। अच्छा अंशिका, एक बात बताओ, ये शाम का वक्त आते ही दिमाग की बत्ती क्यों गुल होने लग जाती है? ऐसा लगता है कि दिन भर की एनर्जी किसी ने चुपके से चोरी कर ली हो।
1: सही बात है सिमरन भाई, एनर्जी चुराई नहीं है, तुमने खुद सुबह से रील्स देख देख कर खत्म कर दी है।
0: अरे नहीं अंशिका, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, सुबह से बॉस की डांट और कॉलेज के अटेंडेंस, या फिर कल से पक्का पढ़ेंगे या फिर कल से पक्का इवनिंग एक्सरसाइज जरूर करेंगे, ये वाले अब झूठे वादे ना, इन सब से हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अब वक्त आ गया है, शाम का मतलब होता है दोस्तों ये नहीं कि आप रेस्ट पे चले जाओ, शाम का मतलब होता है कम बैक और एक नई शुरुआत भी कर सकते हो।
1: क्या बात है, क्या बात है सिमरन, आज तो कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो आप। हाँ क्या लाइन मारी है भाई, शायद किसी रील से ली होगी,
0: अरे
1: है
0: नहीं,
1: ना।
0: बिल्कुल नहीं,
1: पर
0: बिल्कुल
1: देखो
0: नहीं।
1: सच में दोस्तों, अगर आज का दिन बेकार गया हो ना तो कोई बात नहीं, कल का सूरज फिर से नया मौका लेकर आएगा, पर आज की शाम हमारे नाम है।
0: बिल्कुल सही कहा अंशिका। तो आज के शो में हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं 10,000 रूल के अकॉर्डिंग। और साथ ही दोस्तों आपका फेवरेट यूथ वीक सेगमेंट, जिसमें आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088 000731 पर। तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में हम पूछने वाले हैं आप ही से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपके रिस्पांस पढ़कर हमें बहुत ही अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आज के यूथ वेव सेगमेंट का टॉपिक क्या है। तो क्या आज के यूथ के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी है? और इस पर आपको अपने विचार हमें लिख भेजने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088 000731। तो जल्दी से जल्दी आप अपने विचार हमें लिख भेजिए, तब तक सुनिए अरिजीत सिंह को फ्रॉम द मूवी एनिमल।

0: LRC की अमृत बार ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में चोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LRC हर पल आपके साथ।
1: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
2: सुनो सुनो सुनो, अरे भाइयों जरा संभाल कर, नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है
3: और कोई भी नदी के पास मत जाना।
4: प्रधान जी, पानी तो अभी गांव से काफी दूर है।
2: पानी कब बढ़ जाए पता नहीं चलता। तेज बहती नदी और बरसाती नाले को पार करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बच्चों और बुजुर्गों को भी नदी नालों से दूर रखना। हा?
4: अगर पानी और बढ़ने लगे तो?
2: अरे तुरंत निचले इलाके को छोड़कर सुरक्षित और ऊंची जगह पर चले जाएं और प्रशासन की चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना।
4: प्रधान जी, जरूरत पड़ने पर मदद कहाँ से मिलेगी?
2: अरे भाई 112-1070 और 1077 पर तुरंत सूचना दें। मोबाइल में सचेत ऐप भी डाउनलोड कर लेना हाँ, ताकि मौसम और आपदा की चेतावनी समय पर मिलती रहे। याद रखिए, नदी के पानी से सुरक्षित रहने की जरूरत है।
5: जी प्रधान जी, सावधानी रखेंगे,
6: चिंता कतई न कीजिए।
7: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
8: कहानियां इंश्योरेंस की।
9: 11:05 हो रहे थे। हर रोज की तरह मेरी आंटी सोसाइटी के कुत्तों को बिस्किट खिलाकर घर आई। शांताबाई घर का फर्श पोछ रही थी कि अचानक मेरी आंटी का पैर गीले फर्श पर से फिसला और मारी बिस्किट की तरह टक से उनकी हड्डी टूटी। हॉस्पिटल का लंबा बिल देखकर मेरी आंटी हिचकिचाई नहीं बल्कि हंस के बोली, अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब बिल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा।
10: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए अच्छा किया इंश्योरेंस लिया .com एन इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।
11: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
12: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना का आपका अपना प्रोग्राम युवानी सिमरन और अंशिका के साथ।
13: दोस्तों आज का दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं बल्कि उस जज्बे को महसूस करने का दिन है जिसने एक नौजवान को पूरे देश की आवाज़ बना दिया।
12: जी हाँ अंशिका, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस युवा क्रांतिकारी की जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने विचारों, साहस और देश के लिए समर्पण से करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई, शहीद आज़म भगत सिंह।
13: और दोस्तों आज ही का दिन यानी 28 सितंबर को पूरे देश भर में भगत सिंह जयंती मनाई जाती है। आपको बता दें कि भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ था और अब ये गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद ज़िले में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कि भगत सिंह का जीवन हमें याद दिलाता है कि छोटी उम्र हो सकती है लेकिन किसी की सोच वो बहुत बड़ी हो सकती है।
12: बिल्कुल सही कहा अंशिका। दोस्तों भगत सिंह

0: सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक विचारक, एक लेखक और जागरूक युवा भी थे। वो मानते थे कि देश की आजादी सिर्फ राजनीतिक बदलाव ही नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और समानता लाने का माध्यम भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, उनकी एक बात ना आज के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल पूछिए, सोचिए और अपने विचारों को समझिए।
0: क्योंकि दोस्तों, भगत सिंह की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका साहस ही नहीं था, उनकी सोच और विचारों की क्लैरिटी भी एक बहुत बड़ी उनका पॉइंट थी।
1: बिल्कुल। और सिमरन, आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो क्यों ना हम खुद से एक सवाल पूछें कि हम अपने देश और समाज के लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंशिका, शायद किसी जरूरतमंद की मदद करके,
1: हाँ बिल्कुल।
0: शायद शिक्षा को बढ़ावा देकर, या फिर अपने आसपास की किसी गलत बात के लिए आवाज उठाकर।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि देशभक्ति ना दोस्तों सिर्फ शब्दों में नहीं होती, हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियों में भी दिखाई देती है। और भगत सिंह की जयंती पर हम उनके साहस, विचारों और देश के प्रति समर्पण को नमन करते हैं। और साथ ही दोस्तों, उनके जीवन से यही प्रेरणा लें कि एक जागरूक, जिम्मेदार और बेहतर समाज बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहा है यूथ वेव सेगमेंट, जिसमें हमने किया था आपसे एक सवाल, और सवाल था कि क्या आज के यूथ के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी है, और इस पर आपके क्या विचार हैं। जल्दी से लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। तब तक के लिए सुनिए विकी डॉनर से आयुष्मान खुराना को, कहीं जाइएगा नहीं, अभी लौट कर आते हैं। अभी आप सुन रहे हैं 100.5 FM देहरादून।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: कहानियाँ इंश्योरेंस की।
4: 11:05 हो रहे थे। हर रोज की तरह मेरी आंटी सोसाइटी के कुत्तों को बिस्किट खिलाकर घर आई। शांताबाई घर का फर्श पोछ रही थी कि अचानक मेरी आंटी का पैर गीले फर्श पर से फिसला और मारी बिस्किट की तरह टक से उनकी हड्डी टूटी। हॉस्पिटल का लंबा बिल देखकर मेरी आंटी हिचकिचाई नहीं बल्कि हंस के बोली, अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब बिल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा।
5: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए अच्छा किया इंश्योरेंस लिया.com एन इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।
6: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
7: LIC की अमृत बाग ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में चोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC, हर पल आपके साथ।
8: वेलकम बैक दोस्तों, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम युवानी सुनमना और अंशिका के साथ। दोस्तों, हमने कार्यक्रम से पहले आपसे पूछा था यूथ वेव सेगमेंट में कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का असली मतलब क्या है, एक अच्छी सैलरी या फिर कुछ और। और इसी के साथ हमारे एक युवा साथी कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, नेहा देहरादून से, जिन्होंने लिख के भेजा है, मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं है, असली सक्सेस तब है जब हम अपने काम से खुश हों और अपने परिवार को भी खुश रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका, जो आप हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं।
9: और उसी के साथ ही सिमरन हमें आदित्य भी कनेक्ट कर रहे हैं हरिद्वार से, और ये कहते हैं कि आज के समय में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना ही सक्सेस है। भाई वाह, क्या बात है।
8: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अंशिका। हमारे काफी युवा साथी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और दोस्तों हमारी आपसे अपील रहेगी कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट होइए। हमारा टॉपिक है कि क्या आज के युद्ध के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ एक अच्छी सैलरी है। जल्दी से आप हमें अपने विचार को लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों, एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही आपको किसी पुराने प्यार की याद आ जाए, किसी बिछड़े रिश्ते की कमी महसूस हो, या फिर देशभक्ति का जज्बा दिल में उठ जाए।
9: दोस्तों, कुछ आवाज़ें ना सिर्फ सुनाई नहीं देती हैं, सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और ऐसी ही एक आवाज़ थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत की उस महान शख्सियत को जिनकी आवाज़ ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा के गीतों को अपनी पहचान दी।
8: दोस्तों, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और एक रंगमंच कलाकार थे।
9: और सिमरन, लता जी ने ना बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरुआत आसान नहीं थी, जैसे सबकी होती ही है, लेकिन अपनी मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखने की जो चाह थी उनके अंदर, उसने उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उनकी आवाज भारतीय संगीत की एक पहचान बन गई।
8: बिल्कुल अंशिका, जैसे की एक बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप रखने पड़ते हैं।
9: बिल्कुल सही,
8: तब भी हम अपनी सक्सेस की राह को पकड़ पा रहे हैं। और दोस्तों, लता जी की खासियत सिर्फ उनकी सुरीली आवाज ही थी। सोचिए, एक आवाज कभी खुशी बनकर हमारे सामने आती है, कभी दर्द बनकर, कभी भक्ति बनकर, और कभी देश के लिए गर्व की भावना बनकर।
9: बिल्कुल, और सिमरन यही तो कमाल था ना लता जी का। भाई, उन्होंने हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए और हजारों गीतों को अपनी आवाज दी। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों समेत अनेक सम्मान मिले हैं।
8: बहुत ही बढ़िया, कितना खूबसूरत लगता है ये सब पढ़ने में ना।
9: बिल्कुल,
8: लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था दोस्तों लोगों का प्यार, हम सब का प्यार।
9: बिल्कुल,
8: आज उनकी जयंती पर हम उनकी उपलब्धियों को याद कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी तो बनता है, आखिर कोई आवाज दशकों तक बाद भी लोगों के दिलों में कैसी बनी रहती है?
9: शायद सिमरन इसीलिए क्योंकि लता जी ने सिर्फ सुरों को नहीं साधा, उन्होंने भावनाओं को आवाज दी। उनके गीतों में हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों की झलक मिलती है, कभी पहला प्यार तो कभी बिछड़ना, कभी इंतजार, कभी खुशी, कभी उम्मीद, और कभी कभी अकेलापन भी।
8: बिल्कुल सही कांशिका। और दोस्तों, यही वजह है कि पीढ़ियां बदल गई, जनरेशन बदल गई, संगीत का अंदाज बदल गया, लेकिन लता जी की आवाज आज भी उतनी ही अपनी लगती है। तो आज उनकी जयंती पर आपके आगे आसपास अगर कोई भी गीत बज रहा है तो दोस्तों अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करिए और उस पल को आप इंतजार में अच्छे साथ मेमोरी के साथ कैप्चर करिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपको सुनाते हैं लता जी का ये प्यारा सा ट्रैक, चलिए सुनते हैं इस ट्रैक को।
10: दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना।
11: अय्या

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट इवनिंग रेडियो शो सिमन और अंशिका के साथ, जहां बातें होती हैं आपकी, आपके ड्रीम्स की और उन छोटे छोटे स्टेप्स की जो हमारे गोल्स को और भी करीब ले आते हैं।
1: और दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मोटिवेशनल है और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी है। हम बात कर रहे हैं 10,000 आवर्स रूल की।
0: दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10,000 रूल्स आखिर है क्या? क्या किसी स्किल में मास्टर बनने के लिए सच में हमें 10 घंटे देने पड़ते हैं?
1: और दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ है मलकॉम ग्लैडवेल की बुक आउटलाइंस के बाद। सिंपल आइडिया है कि किसी स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की एक्सपर्टीज पाने के लिए बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
0: लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्टॉपवॉच लेकर बैठ जाएं और बोलें कि आज से मेरे 10 घंटे शुरू। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करता है तो दोस्तों, इसे कंप्लीट करने में कम से कम 9 से 10 साल लग जाते हैं, 10,000 घंटे को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।
1: हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ टाइम देना इनफ नहीं है, प्रैक्टिस कैसी है, फीडबैक कैसा है और आप अपनी मिस्टेक से कितना कुछ सीख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल सही कहा अंशिका। दोस्तों, मान लो आपको गिटार सीखना है, रोज 2 घंटे बैठे बस वही 3 कॉर्ड्स को बजाते रहना है, या फिर बोलना है मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अरे नहीं अब बोर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, डेलीब्रेट प्रैक्टिस ही आपको सही दिशा में आपको कदम रखवा सकती है।
1: बिल्कुल सिमरन, और सबसे जरूरी बात कि आपको नई टेक्निक सीखनी होगी, अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होगी, लोगों से फीडबैक भी लेना होगा और धीरे धीरे आपको लेवल अप भी करना होगा
0: और उन चीजों को इनकॉर्पोरेट भी करना पड़ेगा लाइफ में। अगर आपको आपकी कमियां कोई बता रहा है तो उसको आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट भी करके चलना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली।
0: और दोस्तों, यही बात है कि करियर पर भी लागू होती है, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, सिंगल हो, एथलीट हो, फोटोग्राफर हो, डिजाइनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, पब्लिक स्पीकर हो या कोई फैकल्टी हो, एक्सपर्टीज ओवरनाइट नहीं आती है।
1: बिल्कुल सही। और सिमरन, पता है कभी कभी तो हम सोशल मीडिया पर किसी का सक्सेस देखते हैं तो सोचते हैं कि यार वाओ, कितनी अच्छी किस्मत है इसकी, काश मेरे भी होती।
0: बिल्कुल, और एकदम से उसके फॉर्चून पे चल जाते हैं ना कि कितना अच्छा फॉर्चुनेट रहा है, ये रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें उनके पीछे के हजारों अनसीन आर्स दिखाई नहीं देते हैं।
1: Exactly.
0: वो प्रैक्टिस, फेलियर्स, रिजेक्शन और लगातार इम्प्रूवमेंट से ही आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको लगेगी कि यार मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, तो शायद आपको खुद से ही कहना चाहिए कि
0: बिल्कुल कि
1: अभी
0: और
1: भी अच्छा नहीं हूँ,
0: और
1: लेकिन
0: आगे बेहतर हो सकता है।
1: हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, मास्टरी का कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं होता, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्मार्ट प्रैक्टिस, और यही है असली गेम चेंजर।
0: तो दोस्तों, अपने गोल को 10,000 घंटे की डरावनी संख्या मत बनाइए, उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। आज 30 मिनट्स, कल 40 मिनट्स, देखते देखते आपकी छोटी छोटी एफर्ट्स एक बड़ी जर्नी कब बन जाएगी दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए, तब तक सुन लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक फ्रॉम द मूवी दिल धड़कने दो, जिसको आवाज़ दी है यशिता शर्मा, फरहान अख्तर और शंकर महादेवन ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवानी सुमन और अंशिका के साथ। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत में और बीच में हमने आपसे पूछा था यूथ वेव सेगमेंट में कि क्या आपके लिए सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, सैलरी या कुछ और। तो दोस्तों इसी के सिलसिले में हमारे पास एक सुझाव हमारे युवा साथी ने लिख के भेजा है, ऋषिकेश से प्रिया ने लिख के भेजा है। इन्होंने लिखा है, मेरे हिसाब से सक्सेस का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं। किसी के लिए अच्छी जॉब सक्सेस है तो किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना ही वही सक्सेस है।
1: भाई क्या बात है। वही हमको रुड़की से साक्षी कनेक्ट कर रही है और कहती है कि आजकल सोशल मीडिया पर सबकी अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने जर्नी को दूसरों से कंपेयर ना करना भी एक तरह की सक्सेस ही है।
0: क्या
1: भाई
0: बात है।
1: क्या बात है। हमारे दोस्तों से एक बात तो साफ लग रही है कि
0: हाँ
1: सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग ही
0: अलग
1: है ना।
0: अलग है।
1: किसी के लिए पैसा, किसी के लिए इंडिपेंडेंस और किसी के लिए फैमिली, है ना।
0: और किसी के लिए नेम फेम, हर कोई
1: बिल्कुल
0: सिर्फ एक मनी से ही कंपेयर नहीं करता है अपनी सक्सेस की स्टोरी को।
1: बिल्कुल। और दोस्तों देखते ही देखते अब हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। तो आप हमें अपने विचार लिख भेजिए पत्रों के माध्यम से। नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम युवानी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल। हमारा पिन कोड है 248001।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी सिमरन अग्रवाल
1: और मुझे यानी अंशिका को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून 100.5 FM पर। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 हुए हैं, सुनिए पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम का सभी सुनदारों ते नी वीरेंद्र दत्त गैरुला की छोड़ बिटी नमस्कार शिवसोली पहलाग बेबनो कना छना उम्मीद च सभी राजी खुशी होला और अपनी बोली भाषा का ये कार्यक्रम ग्राम जगत ते सुनना होला। दगड़ियों आज शहीदेव आजम भगत सिंह की जयंती, उनको जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब का लायलपुर जिला का बांगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में हुए छो। देश की आज़ादी में उनका अदम्य साहस और बलिदानन भारत की स्वतंत्रता तें नई दिशा देनी। वो न बहुत कम उम्र में ही देश की आज़ादी की खातिर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेनु शुरू करिया ली छो। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था बल्कि समाजवाद और बराबरी की सोच रखने वाला एक गहरा विचारक भी था। वो को जीवन आज भी देश का युवाओं को साहस त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा दिंदु। जयंती पर शहीद आजम भगत सिंह ते कोटि कोटि नमन। भाई बहनों, अब आज का कार्यक्रम का बाबत आपते बते देनु। आज आपते सुनोला एक भेंट वार्ता जैकु विषय छ पशुधन एवं पशु कल्याण। ये माँ श्री सावन कुमार जी से बातचीत करला हमारा दगड़िया विनय ध्यानी जी। ये का अलावा काफ़ी कुछ रंत रहबार भी छन। आप दगड़ी कुछ विषयों पर हम छुई बात लगोला और आप ते सुनोला गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी गीत संगीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करदा एक सुंदर सी गढ़वाली गीत से स्वर्च मंजू सुंदरियाल को। गीत का अग्नय पिछने छन रंत रहबार।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस। LIC, हर पल आपके साथ। LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। LIC, हर पल आपके साथ।
5: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
6: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
5: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी

उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: भाई बंधु, अभी आपन सुनिन यू गीत। और अब आप सुना भेंट वार्ता जय माँ की जो छ पशुधन एवं पशु कल्याण विषय पर श्री सावन कुमार जी दगड़ी बातचीत करना छन विनय ध्यानी जी।
1: श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं छू विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में म्यार दगड़ मेहमान छन जो कि सुदूर नंद प्रयाग चमोली बिटकी हमारे बीच आया श्री सावन कुमार। सावन कुमार जी पिछला 15-20 वर्षों बिटकी पशुधन और पशु कल्याण का विभिन्न गतिविधियों में काम करना छन और ये क्षेत्र में उनकी एक अलग नोच यहाँ साहब काम करना छन। पशु कल्याण का खातिर, पशुधन का खातिर, पशुओं की नस्ल सुधार का खातिर या कृत्रिम गर्भाधान में उनको एक अलग नोच। तो सावन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान जी, आपको जो आप हम इतनी सुदूर क्षेत्र में आई और मैं मंच प्रदान करी अपने बात रखने मौका देनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: सावन जी धन्यवाद तो हम भी दिवला के लिए कि बहुत सारी चीज बता आपक दगड़ लगनी, खास करी कि पशुधन पर हम बात कर ला। आज मिजा गाँव में बहुत कम लोग छन जो कि गोर बछुर पलना छन, खेती छोड़ा लोग तो गोर बछुर, तो आपके लिए क्षेत्र में काम करना छन, तो आप क्या अनुभव छे कि सचिक माँ हम पशुधन से विमुक्त हुए क्यों क्या?
2: जी बिल्कुल ध्यान जी, आप बिल्कुल सत्य बना चे कि जिस हिसाब से पहले क्षेत्र में जानवर छा वो हिसाब से जानवर कम हुए गया। जब हम पहले गौशाला में देखना चाहिए कि 10 जानवर ची, 8 जानवर ची, आज वो टॉप 2 जानवर दिखना, और जब पहले 2 दिखाना चाहिए वो कब गुटार खाली चे,
1: ठीक बना
2: साल खाली चे बना।
1: अच्छा पहले तो यू चाहे कि जरा हेल दंगा आने तो कम से कम है कक बल्द मैंग दिन चाहे, है ना? अब ऊपर चलन भी खत्म हो गया, वो पावर ट्रिलर आएगी ना अब तो बल खेती का, है ना?
2: बिल्कुल
1: तो लोग बल्द छोड़ तो जाना ही नहीं चाहिए। तो अब आप ही बताओ कि हम पशुधन कैसे मनना चाहो, क्या बल्द घोड़ा भैंसा या कुछ और भी हो सके तो आपक जो कार्य शैली च या पशुपालन विभाग से आप जुड़े हैं तो क्या कहते हैं पशुधन मनना चाहिए?
2: ध्यान जी मेन बात ये कि पहाड़ों में ना 2 तबका सिर्फ गोर भैंस पालन जी, एक जो सबसे गरीब जी,
1: बिल्कुल,
2: एक जो सबसे अमीर जी।
1: अच्छा
2: ठीक, 2 तबका गोर भैंस पालन जी, बाकी जो मध्यम वर्ग जी तो कोई बच पाने लगे बाहर चली गई, कोई नौकरी का तना चली गई, तो सब दाएं बाएं हो गया। तो 2 तबका जो सबसे गरीब जी गोर भैंस वो किधर यहाँ बस, बाकी पहाड़ों में बहुत चैलेंज है काम कर ले।
1: निश्चित तौर पर चुनौती छन पहाड़ में, तभी तो लोग सट सटक जाना छन और गाँव का गाँव खाली हो जाना छन। लेकिन वे का बाद भी अगर कुछ लोग जिनकी आपन बता कि ये तो गरीब लोग छन या फिर जो व्यवसायिक सोच रखना छन,
2: बिल्कुल
1: वो लोग ये बात पशुधन थे खूब पलना छन। अब हम बात कर ला थे कि आपक जो ये जैसा कि पैरावेट बोल दे, तो ये जितना भी कार्यकर्ता छन ये पशुपालन विभाग का सहयोग से इधर बढ़ देने क्या क्या

0: गतिविधियां रहते हैं आपके क्षेत्र में?
1: जी, तो पहली गतिविधि यानी ध्यान जी की, एक तो प्राथमिकता कृत्रिम गर्भाधान लैची, नस्ल सुधार लैची, तो जो हम काम कन्हे रन फील्ड में इतने सालों पर टीनों विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भी, और 10-10 किलोमीटर पैदल जाना, कोई कोई 7 किलोमीटर पैदल जाना, कख रोड टूटनी ची, कच्ची रोडों में जाना रहना, तो एक तो नस्ल सुधार कृत्रिम गर्भाधान कार्य होना चाहिए। दूसरा विभागीय योजना जन टीकाकरण हुईगी, जैसे अभी FMD फैली चाहिए और LSD फैली चाहिए, ठीक, तो ये टीकाकरण हुईगी और पशुगणना हुईगी, तो बहुत सारे जितने विभागीय योजनाएं रहनी तो सब में साथ देना हम विभाग की तगड़ी।
0: अच्छा, एक अपन अभी लंपी रोग की बात करी, वो तो हम घड़ीक में पकड़ ला, वो से पहले अपन पशुगणना की बात करी।
1: जी
0: तो जो आपक क्षेत्र छ, चाहे नंद प्रयाग छ या वैसे और विस्तृत हुआ लू, मिथे नहीं पता, आप तो पता छ, पशुगणना में लगातार अगर पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखा तो बढ़ना छन की घटना छन?
1: घटना चिन्ह,
0: घटना
1: हाँ
0: छन।
1: घटना चिन्ह, पशु बिजा घटा गया।
0: अगर पूछे जाओ अंगुलियों में तो छे कदा होला।
1: ये बताना जरा मुश्किल ची कि पहली ग्राफ से कम हुई कि पशु बहुत ज्यादा कम हुई गया, कि लेकिन मैं आप फर्स्ट वही बोल चु जिस साल में हम पहले 10 जानवर देखने चाहे, वे साल में अब हम मात्र टुप्पू दू दिखना,
0: बिल्कुल
1: ठीक।
0: बिल्कुल।
1: मैं तो 2010 बटे काम करूँ ची, तो आप विश्वास नहीं मना ला कि इतनी पैदल जाइ छो मैं क्षेत्रों में, पैदल गई आज उन गाँव में रोड रोड पहुंचेगी, मेरे सामने सामने बहुत गाँव में रोड पहुंचेगी, तो
0: क्या
1: बड़ी
0: बात,
1: बड़ी अच्छे लगा कि रोड पहुंची, चलो हमें सुविधा, पर ये 2-3 महीना बस के आल ची, बरसात का महीना ची, बहुत ही मुश्किल काम होनी हमें, रोड बंद रहनी वह गाँव तक हम पहुँच नहीं सकना, लेकिन रोड जान से पैदला बाटा खटा सब बंद हुई गया।
0: अब जरा वही रोग की बात करला जो कि ये बात खास करी चर्चाओं में कि लंपी रोग
1: जी
0: जानवरों में हुए जानो, क्या लक्षण छ और क्या आप वो इलाज कर देन वक जाके?
1: जी देखो पशुपालन विभाग द्वारा भी इलाज होनो और हम लोगों द्वारा भी होन, कि लेकिन अगर मान हम कहीं गांव में कृत्रिम गर्भाधान कर जाया, वक्त सामने कोई को जानवर बीमार पड़ी और 20 किलोमीटर दूर ची वो क्षेत्र मानो, तो हमें कोशिश ये रहनी कि सामने जो प्राथमिक उपचार ची वो जानवर दियो, न कि वे बोलो कि तुम 20 किलोमीटर दूर जाके डॉक्टर बुलावा, डॉक्टर में इलाज करावा, तब तक जानवर मर भी सकन, ठीक, तो वो इलाज हम प्राथमिक उपचार वहीं पे
0: कर दे।
1: हाँ कर देना वहीं।
0: सबसे दूरस्थ इलाका आपक कोच कि जख आप पशु कल्याण का खातिर सोच दिन के यहाँ साहब देखा हमन वक गया चाहिए और वक हमारा दगड़ियों ने हमने बहुत सुंदर काम करी, कुछ क्षेत्र चो कु गाँव चो?
1: गांव तो बिजा ची, अब 15-16 साल भी गया, तो गांव तो इत्याची की मी के या गांव नौ गढ़ के हो गांव में होना राज भी नहीं कर सकूं,
0: हाँ
1: ठीक,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बहुत गांव ची हमारा सामने, सैकोट, मैठाणा, सरतुली, पलेठी, नंद प्रयाग, मेन तो नंद प्रयाग भी ची, ठीक, सामने सोनला हुएगी, मंगरोली हुएगी, पुरसाड़ी हुएगी, बहुत गांव ची क्या।
0: लेकिन दूरस्थ पैदल चलने की बात करूं चाहे मैं भी आपके क्षेत्र में जब जाऊं चाहे ना तो पता ना कहीं बोले कि साहब कभी हमारा गांव आओ दी वक 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा।
1: सरतुली,
0: हाँ
1: सरतुली, भतिंगाला,
0: बिल्कुल
1: धारकोट,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बगना, बहुत
0: जी जी
1: दूरस्थ
0: जी
1: गांव ची।
0: तो वक किला की मने जान कि जो हमारा सीमांत क्षेत्र छ ना वक ज्यादातर लोग भेड़ पालन कर दे और भेड़ को जिक्र हमन कतई नहीं करी, जबकि हम देख दा कि पशुधन और पशु कल्याण की जब बात हो तो पहाड़ में बोल देन की आर्थिकी और समृद्धि की एक ही पहचान च बल भेड़ और पेड़, तो कख गए नु भेड़ वो एक जिक्र करो दी वो यू भी आम सब पशुधन में ये का खातिर भी आप काम
1: बिल्कुल
0: करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, भेड़ जब बीमार पड़ना तब इलाज ले जाना चाहिए वो, तो भेड़ पालन अब बहुत कम हुएगी,
0: कम हो गया
1: कम हुएगी।
0: वो जो सुदूरवर्ती बर्फीला इलाकों में छन लोग शायद
1: हाँ
0: वही करना ना,
1: बिल्कुल
0: बाकी और
1: बिल्कुल
0: कोई नहीं करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अच्छा अब नस्ल सुधार की बात कर ला, हम ये देखना चाहूँ कि साहब लगातार सरकार का प्रयास है कि साहब देश विदेश बटिक भी हम नई तकनीक का साथ नस्ल सुधार करा। आपके मानना छन कि पहाड़ में जो हमारे बद्री गाय या बाकी होर छन जो सुंदर बुगैलो घास चरना छन उनमें भी नस्ल सुधार की जरूरत छ या काफी छो?
1: जी अगर व्यवसाय ले नस्ल सुधार अति आवश्यक छ,
0: हाँ व्यवसाय का खातिर
1: व्यवसाय के खातिर,
0: और व्यक्तिगत करना चाहो तो कोई जरूरत नहीं।
1: व्यक्तिगत जे 1.5 लीटर दूध चाहू तो
0: हाँ
1: बद्री गाय 1.5 से 2 किलो दूध देनी तो पर्याप्त छ, अगर व्यवसाय ले छी तो उसीले नस्ल सुधार अति आवश्यक छ।
0: कह नस्ल की बात आप करना चाहिए कि ये बात सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में इन नस्ल छ ना, अगर ये नस्ल का पशु हम धरला तो हम व्यवसाय भी और घर में भी खूब चकल पकल हो जाए तब तक।
1: जी बिल्कुल, पहाड़ों ले सबसे उत्तम नस्ल में मानदू कि जर्सी नस्ल हो, हम उन तो चमोली जिले में HF भी कल हॉरिस्टन फ्रीजन,
0: अच्छा
1: उस भी नस्ल भी दिन रेड सिंधी दी, साहिवाल ची और गिर भी।

0: फिर HF क्रॉस बिछी, जर्सी क्रॉस बिछी,
1: हम्म,
0: तो बहुत सारी नस्लें जी, बहुत सारा बछड़ा बछिया बहुत क्षेत्रों में पैदा हुए हैं कृत्रिम गर्भाधान माध्यम से। और बड़ी खुशी की बात है कि पहले जो काश्तकार इंजेक्शन नहीं लगाना चाहो, टीका, कृत्रिम गर्भाधान टीका नहीं लगाना चाहिए, हमने प्रचार प्रसार करके आज लगभग सब गाँव में कृत्रिम गर्भाधान कार्य चलाना चाहिए।
1: पर लोग के लिए ना धोड़ा झुलाना चाहे कि ना भाई ना हमें नहीं लगाना के लिए और अब के लिए। हाँ
0: वो हमारे पहाड़ों दुर्भाग्य भी बतौन में तुम दे कि पहली क्या होना चाहिए कि जानवर बीमार पड़ी, जानवर बीमार पड़ी तो लो दवे भी निकलना चाहिए।
1: हाँ छाछ गोरी की अब मियाँ थोड़ा डाल
0: बस
1: देना चाहे अब मन भी देखियो ना
0: बस बस
1: कब
0: बस
1: छाछ दोरे ये था बस।
0: आज हम उन लोगों जागरूक कर करी लो जा रात जाना बीमार पड़ना सुबह फोन कर कि भाई साहब आप तुरंत हमारे यहाँ जा। तो लोग इतनी जागरूक हो गया कि आप बीमार पड़ रहा तो बाद में देखो ला, जानवर बीमार पड़ रहा तो पहले बता दो ला।
1: क्या बात क्या
0: ये
1: बात। अच्छा सावन कुमार जी एक बात खनखनी बना मिला आपक दगड़ आप सुंदर काम करना छन पशुपालन में और लोगों तक जागरूक भी करना छन कि खूब गोर बछोर पलिन और उनका सुख सुविधा भी देना छन। एक तरफ दूसरी तस्वीर यह अच्छी कि लोगों तक दवे और इलाज नहीं मिलनो हम कख गोर बछोर छुई करना चाहूँ सचेक में इन छेच कि आज हम यूं की चिंता भी करनी पड़ गई जो कि बोल नहीं सकता
0: बिल्कुल
1: उनकी चिंता करना चाहो हम।
0: बिल्कुल करना चाहो। कभी हम मैं अपना पर्सनल तुम एक्सपीरियंस बताऊँ कि कभी कभी रात 12 बजे भी गोरो बच्चा निकाल चले जान, रात 1 बजे भी बच्चे निकाल चले जान
1: क्या बात।
0: रात को, तो जब सुविधा बन जाने वो अपनी गाड़ी लेके जान, जो सुविधा नहीं बन जाने तो वो कोई लोग लिहाना होना, तो रात को बच्चा निकालना होगी, जीरे गाना होगी। और कृत्रिम गर्भाधान तो शायद एक मीच हो जो अपनों गांव से भी एच या गांव छो गुआई पन छो, तो वह भी मैं रात कभी 11 बजे आई कन जाई,
1: क्या
0: दस
1: बात।
0: बजे आई कन जाई, 9 बजे आई कन जाई रात, किले की वो खा लोग ना मैं रात जान छो ना दिन भर तो रोड साइड वो काम करी और वो मेरा गांव का एच दूसरा गांव छे, तो वक में पैदल जान छो तो मैं आई वक कन छो वो लोग मैं घर छाने उन जाए।
1: क्या बात। अच्छा आज हम बात करना चाहूँ आपक जो पैरावीट छे ना
0: जी
1: कार्यकर्ता और ये के अलावा हमारे पशुपालन विभाग हो गया जो लोग छन जो का आप छुई लगाना छन कि साहब वो हम तो बुलाना छन और तबीयत खराब हों अगर पशु की तब भी वो हम तो दे लगा दें
0: जी
1: तो लोगों में जागरूकता है छे क्या पशु कल्याण का खातिर या वो सोचना छन कि नहीं भाई यो हमारा धन छ ये था इन गंवाण।
0: बिल्कुल बिल्कुल सोचना बिना सोचना लोग, और लोग यन करना चाहिए जन रात जाना बीमार भी तो रात फोन कर देना, अगर रात मन की कोई बीमार पड़े लोग बोल चल फुक सुबेर जोला ठीक, पर जब जाना बीमार पड़े तो रात फोन करना कि हमारा जाना बीमार रहेगी तुम सुबेर का और जाग नहीं जाए पहले हमारे यहाँ खाए। रात अगर जानवर हीट में पड़े तो रात फोन कर देना कि सुबह करके होड़ जागना पहले हमारे का है, तो ये जागरूकता बहुत बड़ी क्षेत्र में।
1: सावन कुमार जी सब आपका प्रयास छिन आपका दगड़ियों का आपका संगठन का प्रयास छिन कि लोग सच में पशुधन और पशु कल्याण का खातिर इतना चिंता करना चाहिए और लोग भी जागरूक होना चाहिए यही बात से हम थोड़ा तसल्ली करना चाहूँ कि सचेक में लोग फिर से अपना गोर बछरों का प्रति एक मोह रखना चाहिए। अभी मोह सिर्फ दूध दे नोनी घ्यू तक ही नहीं चाह
0: जी
1: वो जो घ्यू की मैणी चो तो देहरादून पहुंच जानी है ना लेकिन अगर हम व्यावसायिकता का हिसाब से देखा तो अब आप हम तो ही बताओ कि पशुधन और पशु कल्याण से व्यावसायिकता तय हम कन के जुड़ सकते पहाड़ में।
0: बिल्कुल ये नस्ल सुधार से ही व्यवसाय बोलो, कि लेकिन लोग बैर बेटे अच्छी नस्ल का जानवर ले गाना वक्त फिर वो को क्लाइमेट में वो जानवर नहीं रह सकन, लंबा टाइम तक वो दूध जो रुड़की देना चाहे वो दूध चमोद में नहीं दे सकन जानवर, तो एक तो अच्छो फीड नहीं पर्याप्त तो नहीं वक, दूसरों अच्छो चारा नहीं छे, तीसरों यहाँ कि रहन सहन में भी बहुत दिक्कत छे। अभी तो कुछ काश्तकार बहुत बड़े करियो कि गोपेश्वर कोठालसैन से लेकर और नंदप्रयाग डिडोली वगैरह बहुत तेफना बहुत जगह जानवर अच्छी व्यवस्था करी रहने की और अच्छा दूध उत्पादन में करना लोग, तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग जागरूक होना और व्यवसायिक काम करना।
1: चलो साहब हम तो भी खुशी हुआ ये जाने कि आप जय क्षेत्र में काम करना चाहिए वहाँ का लोग पशुधन पशु कल्याण से व्यावसायिकता का तरफ ऐसा बढ़ना चाहिए और ये अच्छी बात है कि जय तरह से आप क्षेत्र में लोग रुचि लेना चाहिए जागरूक छिन पशु कल्याण का खातिर पशुधन का व्यावसायिकता का खातिर तो बाकी और क्षेत्र का लोग भी इसे लाभान्वित होला आपक और हमारे छुई बात सुनने की
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम में आप हैं महत्वपूर्ण चर्चा आपक दगड़ हुए बहुत बहुत आभार धन्यवाद।

0: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
1: LIC जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
2: LIC हर पल आपके साथ।
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
2: LIC हर पल आपके साथ।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
1: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: दगड़ियों, अभी आपन सुनिनी रैबार और आप बात करदा विश्व रेबीज दिवस पर। आज विश्व रेबीज दिवस छे। यू दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाए जांद। ये को मुख्य उद्देश्य रेबीज बीमारी का प्रति लोग होते हैं जागरूक करनो और ये की रोकथाम का उपायों ते बढ़ावा देनो छे, ताकि इंसानों और पशुओं ते जानलेवा बीमारी से बचे जा सको। यू दिन फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाए जांद, जौन की रेबीज को पहलू सफल टीका विकसित करी छो। ये साल की थीम छ एक साथ मिली ते मजबूत, जो रेबीज खत्म करण की खातिर सामूहिक प्रयासों पर जोर देंदी। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित कुकुर, बिरावा, बांदर और अन्य जानवरों का काटन या खरोंचन सी फैल दी। श्रोताओं, अब आप सुना एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत स्वर्च बिमला पंत को। गीत का अग्नि पिछने छन कुछ रैबार।
0: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
6: अरे अरे रुको, आगे सड़क पर बरसाती नाला बह रहा है।
7: पानी तो ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, कार निकाल ले क्या?
6: बिल्कुल नहीं, तेज बहते पानी को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पानी जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरा और तेज हो सकता है।
7: तो अब क्या करें?
6: यही सुरक्षित जगह पर रुकते हैं और पानी कम होने का इंतजार करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से रास्ता बदलने या सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी मिले तो उसका पालन करेंगे।
7: सही कहा। और आपात स्थिति के लिए मोबाइल चार्ज है?
6: हाँ, टॉर्च, पानी और जरूरी सामान भी साथ है। जरूरत पड़े तो 112-1070 या 1077 पर मदद के लिए कॉल करेंगे। सचेत ऐप से भी मौसम की जानकारी लेते रहेंगे।
7: एक गलत फैसला और मुसीबत बड़ी हो सकती है,
6: इसीलिए याद रखो, सड़क पर पानी दिखे तो रुकना है, जोखिम नहीं लेना है।
8: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: दगड़ियों, अभी आपन सुनी यू रेबार, और रेबार से पहले आपन सुनी बिमला पंत का स्वरमा सुंदर सी कुमाऊनी गीत। अब जरा बात कर दा पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष। आजकल पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चलनु च, जो कि 27 सितंबर बिटी शुरू हुई और 10 अक्टूबर तक चललो। ये दौरान पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य का जरिया पितरों का प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे जाते।

0: पूर्वजों की मृत्यु तिथि का अनुसार श्राद्ध करे जानन। यदि कहते हैं तिथि ज्ञात नीच तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करे जानन। मान्यता छे कि यों दिनों सादगी रख दो, पितरों को स्मरण और जरूरतमंदों की सेवा करी चेंद। श्राद्ध करण का पिछने एक मान्यता छे कि जो पूर्वजों का कारण हम आज अस्तित्व में छा, जो का गुण और कौशल आदि हमते विरासत में मिलिया छन, वो को हम पर न चुकाए जा सकण वालो ऋण छ, वो पूर्वज हमारा पूजनीय छन। दगड़ियों आप सुना एक सुंदर सी जौनसारी गीत स्वर छ गंभीर भारती को, लेकिन गीत से पहली छे एक रैबार।
1: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

श्रोताओं, अभी आपन सुनी यू सुंदर सी जौनसारी गीत स्वर छो गंभीर भारती को। आप ते हमारो ग्राम जगत कार्यक्रम कनु लगदू ये बारा मा आप चिट्ठी लिखी भेजिन। हमारो ईमेल को पता छ चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com और डाक को पता छ चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून निकट रिस्वनापुल पिन कोड 248001। और अब भगत होनवालो छ उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो थोड़ी ही देर बाद आप सुन ला उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे 40 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया। शेष लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। पौड़ी के चिपल घाट में सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।

0: और चीन के शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन, उत्तराखंड की सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने जीते रजत पदक। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम के बीच फंसे ट्रैकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स की सुरक्षित निकासी के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आज हेलीकॉप्टरों की मदद से ऑर्डेंस कॉल क्षेत्र से 29 और कालिंदी पास क्षेत्र से 11 ट्रैकर्स समेत 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। शेष लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक ट्रैकर की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने और मौसम की स्थिति के अनुसार रेस्क्यू अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी गढ़वाल के पाबो विकासखंड के चिपल घाट में सेवा संकल्प अभियान के तहत आज बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिविर में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में 15 विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने जितोली के आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की। डॉक्टर रावत ने कहा कि पाबो विकासखंड के लगभग सभी राजस्व गांव सड़क सुविधा से जुड़ चुके हैं। शेष 3 तोकों को भी मार्च तक सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
1: छिपलगाड़ में जन जन की सरकार का कार्यक्रम था और लगभग 15 विभागों के यहाँ पे अधिकारी हमने बुलाए थे, उनके स्टॉल भी लगाए थे। सैकड़ों लोग इस जन जन की सरकार में सम्मिलित हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनकी भी समस्या है वो यहीं पे हम लोग पूरा करते हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा इस समय कि भाई अब हमारे पावो ब्लॉक में लगभग सभी राजस्व गाँव में सड़कें चले गई है। अब हमारे 3 तोक रह गए जहाँ की हमने सड़क देनी है और उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं कि जल्दी हम वहाँ सड़क से जो है आच्छादित कर दें ताकि हम मार्च तक ये घोषणा कर दें कि भाई हमारा पावो ब्लॉक 100% जो है टोक भी और गांव भी वहां सड़कें पहुंच गई।
0: देहरादून के आंगनवाड़ी केंद्र नंदा की चौकी में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और लाभार्थी महिलाओं व किशोरियों को महालक्ष्मी किट, बेबी किट तथा पोषण किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। श्रीमती आर्या ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और किशोरियों से संवाद करते हुए उनकी जरूरतों और समस्याओं को सुना गया, साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए।
2: आज आंगनवाड़ी केंद्र नंदा की चौकी में आने का अवसर, यहाँ हमारे सभी लाभार्थी, चाहे वो गर्भधात्री हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे हमारे 0 से लेकर 6 वर्ष के हमारे बच्चे हों, किशोरियों हों, सभी के साथ संवाद, उनके अनुभवों को उनके साथ में सुनने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से इस केंद्र से जो उनको शक्ति मिल रही है, उनके चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो, उसका सशक्तिकरण का जो है यहाँ पर प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे रहा है। और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का, सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इस प्रकार से निश्चित रूप से उनकी दिनचर्या में एक बड़ी मदद जो है सरकार की ओर से होती है। तो ये सुखद अनुभव रहा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने आज देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक कल्याण की समीक्षा की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का संवेदनशीलता और समयबद्धता से समाधान करने तथा केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने और सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई में आधुनिक तकनीक और मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा। पर्यावरण मित्रों को नियमित रूप से सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। अध्यक्ष ने पर्यावरण मित्रों के वेतन की समीक्षा कर न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने, जीवन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नमस्ते योजना से अधिक पर्यावरण मित्रों को जोड़ने और उनके परिवारों को कौशल विकास व स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया। चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने 6 रजत पदक और 20 उत्कृष्टता पदक हासिल कर वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि में उत्तराखंड की सानिया जोशी और पार्थ वोरा ने भी योगदान दिया। सानिया जोशी ने रिटेल स्किल्स और पार्थ वोरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। दोनों प्रतिभागियों का चयन इंडिया स्किल्स 2025-26 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। कौशल विकास व सेवायोजन विभाग और उत्तराखंड कौशल विकास समिति के प्रयासों से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग में आज विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से 53वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने भाग लिया। किसानों ने सब्जी, फल, बीज और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जबकि संस्थान ने आधुनिक कृषि तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। किसान गोष्ठी में विशेषज्ञों ने किसानों को नई कृषि तकनीकों और उन्नत फसल प्रजातियों की जानकारी दी। संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मीकांत ने बताया कि मेले में VL मटर श्रेष्ठा और VL बायो एजेंट 9 का लोकार्पण किया गया, जबकि VL मटर 13 और VL पॉलीटर्नर के लिए करार भी किया गया।
4: आज इस किसान मेले में दो नई तकनीकों का जो है जनता के लिए विमोचन किया जा रहा है। इसमें सबसे एक सब्जी मटर की प्रजाति है VL श्रेष्ठ, और इसकी खासियत ये है कि ये जल्दी पकने वाली एक किस्म है, यानी इसमें फसल की तुड़ाई जल्दी ले सकते हैं और जिसकी जो उत्पादन क्षमता है फलियों की वो 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। इसके साथ ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण करार आज होने जा रहे हैं। एक हमारी सब्जी मटर की प्रजाति है VL सब्जी मटर 13, जो कि पूरे भारत वर्ष में इस समय काफी ज्यादा डिमांड में है, तो इससे क्या होगा कि ये हमारे किसानों के मध्य में बीज की उपलब्धता इसकी बढ़ेगी। इसके साथ ही एक हमने VL पॉलीटनल बनाया जो कि नर्सरी के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उसका भी एक करार होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया और नई फसल प्रजातियों तथा कृषि प्रकाशनों का विमोचन किया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 32 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
5: जिसमें अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं, कई शिकायतों में आज मौके पर ही निस्तारण किया गया है अधिकारियों को। साथ ही कई शिकायतों का निस्तारण के लिए मौके पर जहां पर शिकायत दर्ज हुई है वहां पर फील्ड में भी भेजा गया है शिकायतकर्ता के साथ, ताकि तत्काल उसका निराकरण किया जाए। कुछ पेंशन और राशन से संबंधित शिकायत थी जिसका आज यहीं पर तत्काल निस्तारण किया गया है। इसके साथ ही CM हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है। अधिकारियों को डायरेक्शन दिया गया है कि न केवल शिकायतकर्ता से बात करें बल्कि शिकायतकर्ता के जहां पे कार्य होना है वहां पर स्वयं निरीक्षण करें और उसको वहीं पर निस्तारित करके शिकायतकर्ता के संतोष तक उसको कार्य करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे 40 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया। शेष लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। पौड़ी के चिपल घाट में सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। और चीन के शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन। उत्तराखंड की सानिया जोशी और पार्थ वोरा ने जीते रजत पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत छे आपको अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा मीचो वीरेंद्र दत्त गैरोला। अब बात कर दा छोटू व्यवसाय बड़ा सुपनिया मुद्रासी स्वरोजगार की। दगड़ियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटा और सूक्ष्म उद्यमियों ते बिना गारंटी का 10 लाख और कुछ मामलों में बड़ी

सीमा का तहत अधिक भी आसान ऋण दीते हैं, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का सुपनते हैं साकार करनी छे। यह योजना उन लोगों की खातिर वरदान छे जो अपनों खुद को काम करनु चाहन लेकिन पैसों की कमी से जूझना छन। मुद्रा लोन का तीन प्रकार छन, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक को लोन मिल दो। किशोर लोन में व्यवसाय तय बढ़ोणक 50,000 से 5 लाख तक को लोन और तरुण लोन में स्थापित व्यवसाय तय बढ़ोणते 5 लाख से 10 लाख तक को ऋण मिल दो। लोन की खातिर बैंक में कोई गिरवी या जमानत नहीं रखना पड़ दी। वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थानों का जरिया उचित दरों पर ऋण उपलब्ध हों दो। दगड़ियों, अब आप सुना एक सुंदर सी गढ़वाली गीत स्वर्च रेखा उन्याल को।

श्रोताओं, अभी आपन सुनी रेखा उनियाल का स्वर में यू सुंदर सी गढ़वाली गीत। अब आप तें एक और गढ़वाली गीत सुनो ना, तो सुना यू गढ़वाली गीत।

श्रोताओं, अभी आपन सुनी सुंदर सी गढ़वाली गीत और ये का दगड़ा ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम इखिमा संपन्न हुंदू। मैं वीरेंद्र दत्त गैरुलते द्यावा आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी प्रियंका। पहली मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का केंद्र सरकार का फैसला पर रोक लगाने से इनकार। कैरी बैंकों की

0: आज बिटी हूँ वाली 3 दिने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। उत्तरकाशी का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसा ट्रैकर और पर्वतारोहियों ते सुरक्षित निकलने को बचाव अभियान जारी। मौसम में सुधार का बाद राज्य में चार धाम यात्रा फिर से शुरू। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरवासा में औणी जानी बंद और उत्तराखंड में संस्कृत ते जनभाषा का रूप में बढ़ावा द्योण पर जोर। सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित किए जाला। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करना का केंद्र सरकार का फैसला पर रोक लगाने से इनकार कर डाली। यह शुल्क 15 अक्टूबर बेटी प्रभावी होला। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाबी मांगी और 4 सप्ताह का भीतर जवाब दाखिल करना को निर्देश दीनी। न्यायालय वेली की यू मुद्दा कानूनी से ज्यादा तकनीकी च। केंद्र सरकार की तरफा बिटी पेश हुआ अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामनन पीठ ते बते कि भुगतान गेटवे का 96% उपयोगकर्ता ये सी मुक्त राला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा करी कि आज बेटी शुरू होने वाला 3 दिन का राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दिए गए। यूनियन ने भारतीय बैंक संघ का दगड़ी हुआ समझौता का बाद लिए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड वेली की यू निर्णय ब्याली राती भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक का बाद लिए गए। उत्तरकाशी जिला का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अलग अलग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण मार्गों पर फंसे लोगों से सुरक्षित निकलने को बचाव अभियान जारी च। यही क्रम में कालिंदा ट्रैक का ऑडेन कोल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रैकर्स से आज हेलीकॉप्टर का माध्यम से सुरक्षित निकाली की हर्षिल पहुंचेगे। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमनन बते कि ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों से सुरक्षित निकलने को सभी आवश्यक प्रयास किए जाना छिन। ट्रैकर राज चौहानन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बचाव अभियान चलाउन का वास्ता सरकार और सेना को आभार व्यक्त करी।
1: अभी हम लोग ऑर्डन कॉल बेस कैंप से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हुआ है। हमारा जो स्टेट मशीनरी है जिसने आर्मी से लेके आपके SDRF एंड अदर यूनिट्स इन्वॉल्व थे, बहुत सिचुएशन काफी ट्रिकी थी। एरिया भी बहुत ट्रिकी है, काफी स्नोफॉल वहाँ गिर चुकी थी। बहुत ही प्रोफेशनली किया गया सर। यहाँ पे पहुँचने पे रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट, बेसिक मेडिकल चेकअप भी हुआ सारे जो लोग हैं यूनिट्स में, के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में सुधार का बाद आज 4 धाम यात्रा फिर से शुरू कर दिए गए। गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूपन बते कि यात्रा संचालन का संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों ते आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए नी। शासन जिलाधिकारियों ते अपना अपना क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों का अनुसार यात्रा संचालन को निर्णय लेने ते वेली। मार्ग अवरुद्ध होने या ज्यादा बरखा की स्थिति में यात्रा ते अस्थायी रूप से रुके जा सकेंदु। ये बीच में केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग पर चीरवासा का नजीक मरम्मत और मार्ग दे मजबूत कनकु काम जारी च। फिलहाल ये क्षेत्र में औन जानी पूरी तरह से बंद च। ध्यान दियोन वाली बात च कि मौसम का पूर्व अनुमान और यात्रियों की सुरक्षा ते देख दी 26 सितंबर की दोपहरा बेटी 27 सितंबर तक 4 धाम यात्रा स्थगित किए गए छे। अल्मोड़ा का हवालबाग स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 53वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किए गए। मेला में किसानों ने सब्जियों, फलों, बीज और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगे, जबकि संस्थान की तरफा बिटी विकसित आधुनिक कृषि तकनीकों और यंत्रों को प्रदर्शन किए गए। संस्थान का निदेशक डॉ लक्ष्मी कांदन बते कि संस्थान अब तक 25 से ज्यादा फसलों की 400 से ज्यादा प्रजातियां विकसित कर ली, जो कि किसानों का वास्ता लाभकारी साबित होनी छिन। डॉक्टर कांदन बते कि कृषि विज्ञान मेला किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने को महत्वपूर्ण माध्यम छ।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो छ। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तराखंड में संस्कृत ते पाठ्य पुस्तकों से निकाली की आम बोलचाल और दैनिक जीवन तक पहुंचाने कुनी सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित किए जाना छिन। दगड़ा ही संस्कृत शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने को गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू किए गए। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोलन बते कि उत्तराखंड संस्कृत आयोग को गठन की प्रक्रिया संस्कृत भाषा का शिक्षा ते बढ़ावा दियोन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम छ। प्रस्तावित आयोग का माध्यम से संस्कृत शिक्षा

0: खुद प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षण और उनका डिजिटलीकरण का दगड़ी ही भारतीय ज्ञान परंपरा ते बढ़ावा द्योण पर काम किए जालू।
1: कि हमने ये संस्कृत ग्राम वाली जो परिकल्पना थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दिशा निर्देश है, हमारे मंत्री जी भी इसमें लगे रहते हैं। तो अभी हमने जो प्रारंभ किया है वो एक जिले में एक गांव, धीरे धीरे अगर हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती रहती है तो आने वाले 5 साल के अंतर्गत हम प्रत्येक ब्लॉक में, अभी तो हमारा एक जिले में एक गाँव है, फिर एक ब्लॉक में हमारे 95 ब्लॉक है, हम हर ब्लॉक में एक गाँव को चिन्हित करेंगे कि वहां संस्कृत संभाषण सिखा करके वहां की जनता को संस्कृत संभाषण सिखा करके और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जाए।
0: हरिद्वार में 30 सितंबर का दिन जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेला को आयोजन किए जालू। प्रभावी जिला सेवायोजन अधिकारी मुकेश प्रसाद रयालन बते कि मेला में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परा स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सक दिन। अभ्यर्थियों की आयु 18-40 वर्ष का बीच और उत्तराखंड को स्थायी निवासी हो आवश्यक। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भोल देहरादून में सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों का पदाधिकारियों का दगड़ी त्रैमासिक बैठक आयोजित कर लू। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि बैठक में विभिन्न केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों का सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की समस्याओं और कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा किए जाली। दगड़ा ही उनकी समस्याओं ते भी सुने जालू। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करुच। भगत सिंह को जन्म आज ही का दिन वर्ष 1907 में पंजाब का लायलपुर जिला का बंगा गांव में हुए छो, जो अब पाकिस्तान में। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाणु छ। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा का पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्यवाही करी छे। 18 सितंबर का दिन उरी आतंकी हमला का बाद ये कार्यवाही किए गए छे। आकाशवाणी पर 42 प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेली कि पिछला एक दशक में आतंकवाद से निपटने का भारत का तरीका में बदलाव है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आने वाली 4 अक्टूबर तक राज्य का उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिला में कखी कखी बरखा होने की संभावना जते, वही राज्य का अन्य क्षेत्रों में मौसम ठंडू रौन वल्च। राजधानी देहरादून में आज सुबेर मौसम साफ रहे, जबकि दोपहर का बाद कुछ क्षेत्रों में हल्की सी बरखा दिखनुते मिली। राज्य का ऊंचाई वाला क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और निचला इलाकों में पिछला दिनों हुई बरखा से तापमान में गिरावट दर्ज किए गए। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से ऊंचाई वाला क्षेत्रों की यात्रा का दौरान ठंड से बचाव का वास्ता पर्याप्त गर्म कपड़ा और आवश्यक सामग्री दगड़ा में रखने की सलाह दीनी। ये बीच पिछले दिनों हुई बरखा और भूस्खलन का कारण अवरुद्ध सड़कों ते खुलने को काम तेजी से जारी छ। अंत में मुख्य समाचार एक दो फिर से। सर्वोच्च न्यायालय ने UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का केंद्र सरकार का फैसला पर रोक लगाने से इनकार करी। बैंकों की आज बटी शुरू होने वाली 3 दिने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। उत्तरकाशी का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसिया ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों से सुरक्षित निकलने कुणी बचाव अभियान जारी। मौसम में सुधार का बाद राज्य में 4 धाम यात्रा फिर से शुरू। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरवासा में आन जानी बंद और उत्तराखंड में संस्कृत जनभाषा का रूप में बढ़ावा द्योण पर जोर। सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित किए जाला। ये कही दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। अब किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, और मैं हूं आपका साथी मधुसूदन नौटियाल। किसान साथियों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। खेती किसानी के साथ ही आप सभी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत होंगे। जी हाँ साथियों, आज के समय में खेती केवल खेत में फसल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है। किसान खेती के साथ पशुपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण सहित कई गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय के नए स्रोत तैयार कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज के कृषि जगत कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, स्वरोजगार आर्थिकी का आधार। किसान साथियों, स्वरोजगार का सरल अर्थ है अपनी क्षमता, कौशल और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्वयं कोई काम या व्यवसाय शुरू करना और उससे आय अर्जित करना। इसमें व्यक्तिगत किसी दूसरे के रोजगार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जाता, बजाय इसके स्वयं रोजगार का अवसर तैयार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि हमारे पास भूमि, पशुधन, कृषि उपज और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान जैसे अनेक साधन मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसान के पास कुछ भूमि है तो वो केवल एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फूलों की खेती या मसालों की खेती को भी अपना सकता है। इसी तरह पशुपालन में रुचि रखने वाले किसान दूध उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसान साथियों, स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि उत्पादों का मूल्यांकन, मूल्य संवर्धन भी है। मान लीजिए किसान ने टमाटर, आम, मिर्च या अन्य कोई फसल पैदा की। यदि वह पूरी उपज कच्चे रूप में बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण करके अचार, चटनी, सॉस, जैम, सूखे उत्पाद या अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करके बाजार में बेचते हैं, तो वो अपनी उपज से अतिरिक्त मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दूध से पनीर, घी, दही और अन्य उत्पाद तैयार करना या स्थानीय फलों से जैम और जूस बनाना भी स्वरोजगार का अच्छा माध्यम हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, कोई भी स्वरोजगार शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी रुचि, कौशल और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करें। दूसरा, जिस काम को शुरू करना चाहते हैं उसकी बाजार में मांग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। केवल यह देखकर व्यवसाय शुरू न करें कि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें सफल हो रहा है, बल्कि आपके क्षेत्र में कच्चा माल, ग्राहक, बाजार और परिवहन की सुविधाएं कैसी हैं, इन सभी बातों पर जरूर विचार करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है छोटे स्तर से शुरुआत करना। किसान साथियों, शुरुआत में बहुत बड़ी पूंजी लगाने के बजाय छोटे स्तर पर काम शुरू करके बाजार की प्रतिक्रिया समझना अधिक सुरक्षित हो सकता है। जब अनुभव और ग्राहक दोनों बढ़ने लगें, तब धीरे धीरे व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। स्वरोजगार के लिए कौशल विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास संस्थान और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से खेती और उससे जुड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध होते हैं। इसलिए किसान भाई बहन अपने क्षेत्र में उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी जरूर लें और प्रशिक्षण का लाभ उठाएं। अब बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन की। किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपनी बचत के साथ साथ बैंक ऋण, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाओं और पात्रता के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ली जा सकती है। लेकिन ऋण लेने से पहले यह जरूर समझ लें कि कितनी धनराशि की जरूरत है, उसकी वापसी कैसे होगी और व्यवसाय से अनुमानित आय कितनी हो सकती है। किसान साथियों, स्वरोजगार की शुरुआत किसी बड़े कारोबार से ही हो ये जरूरी नहीं है। एक छोटा विचार, सही जानकारी, उचित योजना, मेहनत और बाजार की समझ, बस यही आगे चलकर एक सफल उद्यम की नींव बन सकते हैं। किसान साथियों, समय उचला है आज की भेंट वार्ता का। विषय है पशुओं में बांझपन की समस्या। इस विषय पर डॉक्टर गौरव जैन से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली।
1: किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर गौरव जैन और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई सारे हमारे पशु हैं जिनमें बांझपन की समस्या देखी जाती है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, तो इस विषय में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में।
2: किसान भाइयों नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा आज का विषय है दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या, अक्सर देखी जाती है हमारे जो पशु हैं सही समय से वो गर्भधारण नहीं करते या फिर एक बार तो उन्होंने गर्भधारण किया है।

0: अगली बार वो गर्भधारण करने में उनको दिक्कत आ रही है। तो ये बांझपन की समस्या इस समय क्यों देखी जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे?
1: वर्तमान समय में पशुओं के अंतर्गत बांझपन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण हमारे पशुपालकों को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशुपालन के अंतर्गत जितने भी हमारे दुधारू पशु हैं, उनमें पशुओं के अंतर्गत बांझपन की समस्या बढ़ने के कई कारण प्रमुख हैं। जैसे एक पशु की उम्र होती है, एक नॉर्मल पशु को कम से कम 3 साल के पश्चात ही हमें गर्भधारण कराना चाहिए, ताकि जो 3 साल में हमें इसलिए गर्भधारण कराना चाहिए, जो पशु का शरीर होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, वो पूर्णतया विकसित हो जाता है। अगर हम एमेच्योर या अपूर्ण विकसित प्रजनन तंत्र के साथ गर्भधारण कराने की कोशिश करेंगे, तो उस समय उसके अंदर संक्रमण की दर जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और अविकसित शरीर के साथ हमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो पशु होते हैं, उनको समय समय पर उनको कीड़े मारने की दवा, डिवर्मिंग की दवाई हमें पशुओं को कराना चाहिए। वर्तमान समय में देखें, हम लगभग 30% पशु हमारे बांझपन की समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि पशुओं में हम अगर उम्र के अनुसार बात करें, पशु के शरीर के अनुसार बात करें, पशुओं की दिनचर्या के अनुसार बात करें, या उनके पोषण से संबंधित बात करें, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं जिसके कारण पशुओं में बांझपन बढ़ता है। जैसे पशुओं में एक जन्मजात बांझपन होता है, उनमें कार्यात्मक होता है, एक पशुओं के जनन तंत्र के अंतर्गत रोग उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर उनके प्रबंधन पोषण से संबंधित काफ़ी हमारे प्रमुख कारण जिसके कारण पशुओं में हमारी बांझपन की समस्या बढ़ रही है।
0: जी, आपने कहा सही उम्र में पशुओं को गर्भधारण हम कराएं, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि पशु जो है पूरी हीट में है, इस समय वो गर्भधारण करने के लिए तैयार है?
1: आपका ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी भी पशु को पालते हैं, तो लगभग 36 माह के पश्चात जब पशु हिट पर आता है, मध्यकाल पर आता है। सामान्यतया गाय जो होती है और भैंस में अगर हम प्रमुख अंतर की बात करें, भैंस का मध्यकाल का हमारा किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता है, तो और गाय थोड़ा बेचैन होना शुरू कर देती है, खाना खाना भोजन ग्रहण करना समाप्त कर देती है, कम भोजन करती है, या दूसरे पशु, एक मादा पशु दूसरे ही मादा पशु के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है गायों में अगर हम देखें, जबकि भैंसों में वो इस तरह की कोई भी शारीरिक गतिविधि शो नहीं करती है या प्रदर्शित नहीं करती है, जिसके कारण हम पशुपालकों को भैंसों के अंतर्गत इन समस्याओं का या मध्यकाल का पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण हमारे पशु गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर पशु शांत है और हमारे पशुपालकों को पशु के मध्यकाल की संपूर्ण जानकारी नहीं है, तब भी हमारा पशु गर्भधारण नहीं कर पाता है, या फिर अगर कोई पशु है उसने प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण कराया है, या फिर हम कृत्रिम तरीके से मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI जो हमारे पशु चिकित्सकों के द्वारा हम पशुओं को गर्भधारण कराते हैं, अगर हम उस तरीके से गर्भधारण करा रहे हैं और पशु कोई गर्भधारण कर चुका है और हमें जानकारी नहीं है कि पशु गर्भधारण कर चुका है, उसके पश्चात भी हम उनको गर्भधारण करा रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर पशु जननांग के अंतर्गत कई बार संक्रमण पैदा हो जाता है और जननांग जो होता है वो खराब होने की दृष्टि के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण पशुओं के अंतर्गत बांझपन की समस्या की वृद्धि के जो प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है।
0: अच्छा, जैसे आपने बताया कि कुछ पशुओं को जन्मजात ही गर्भधारण करने में समस्या होती है, इसके अलावा क्या कुछ बीमारियां भी हैं जिनके होने से पशुओं में ये समस्या आ सकती है?
1: सर, जैसे अगर हम पशु बात करें, पशुओं में जन्मजात कुछ पशु ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम पशुओं के अंतर्गत बात करें, एक फ्रीमाटीन एक होता है, इसमें जब कोई मादा पशु एक साथ जुड़वा बच्चों को उत्पन्न करती है या जुड़वा बच्चे पैदा करती है, तो उसमें जो नर और मादा बच्चे होते हैं, उसमें मादा जो बच्चा होता है, मादा पशु जो होती है, वो जन्म से ही 90 से 95% तक बांझ उत्पन्न होती है, उसके जो जननांग होते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते, और जो मादा के अंदर अंडाशय या ओवेरी जिससे ओवम प्रोड्यूस होते हैं, ओवम पैदा होते हैं, जिसके साथ नर का स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के पश्चात एक एम्ब्रियो या भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है भ्रूण, वो नहीं हो पाता है, और जब किसी भी मादा पशु के अंदर मादा जननांग पूर्ण डेवलप नहीं होंगे, पूर्ण विकसित नहीं होंगे, कोई भी मादा पशु सर कभी गर्भधारण नहीं कर पाएगी। ये हमारे पशुओं में के अंतर्गत, और इस तरह के जो पशु होते हैं, हमें उन पशुओं को पशु चिकित्सक के द्वारा उनका जब हम उनको AI कराते हैं या पशु चिकित्सक के हमें से हमें उनकी जांच करानी चाहिए, और उन पशुओं को हमें अपने ग्रुप से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये बीमारी है, डिजीज़ है, ये अदर पशुओं में भी फैल सकती है, परंतु ये चूंकि जन्मजात होती है तो मादा पशुओं में दूसरों में कम फैलती है, परंतु इसके फैलने के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए हमें उन पशुओं को अलग कर देना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को आर्थिक तौर पर भी नुकसान प्राप्त ना हो।
0: अच्छा, अगर गर्भ धारण करने में पशुओं को दिक्कत आ रही है तो क्या कुछ उपाय भी?

0: तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, उन चीज़ की बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर हम उसको प्रदान नहीं करेंगे तो उसका जो शरीर का पूर्ण विकास है वो कभी नहीं हो पाएगा सर। और जब तक मादा पशु का शरीर का पूर्ण विकास नहीं होगा, मादा जननांगों का पूर्ण विकास नहीं होगा, वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमें प्रतिदिन प्रति पशु को कम से कम 50 से 60 ग्राम जो हमारे मिनरल्स होते हैं, वो हमारा कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और पशुओं को हमें प्रतिदिन अवश्य प्रदान करने चाहिए। साथ ही साथ पशुओं को कुछ समय के लिए ओपन एरिया में भी ग्रेजिंग करानी चाहिए। क्योंकि तो ओपन एरिया में हमें पशुओं को इसलिए चराना चाहिए क्योंकि जब पशु खुले में चारा ग्रहण करता है, चलते हुए भोजन ग्रहण करता है, तो उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भी पूर्णतया कार्य करेगा। और जब जितने भी वो न्यूट्रिएंट्स ग्रहण कर रहा है, पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, वो उसकी शरीर को प्राप्त होंगे। जब तक सभी पोषक तत्व पशु शरीर को प्राप्त नहीं होंगे, उसकी शरीर की पूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
1: इसके अलावा नस्ल सुधार के भी कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि अच्छा दुग्ध उत्पादन मिले। क्या इन नस्ल सुधार के माध्यम से भी ये बांझपन की समस्या पशुओं में कम की जा सकती है?
0: जी सर, अगर हम नस्ल सुधार के अंतर्गत बात करें, जैसे अगर कोई डेयरी फार्म है और हम डेयरी फार्म पर एक ही ब्रीड के, एक ही नस्ल के पशु रखे हुए हैं, अगर हमारे पास साहीवाल नस्ल के पशु हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि और जो अच्छे गुणवत्ता वाला सांड है, हमें उसी से पशुओं में प्रजनन कराना चाहिए, प्राकृतिक संबंध बनाने चाहिए, कराने चाहिए। या फिर अगर हम कृत्रिम तरीके से पशुओं में गर्भाधान करा रहे हैं, किसी वेटनरी ऑफिसर से, डॉक्टर से की मदद से हम पशुओं में गर्भधारण करा रहे हैं, तो उसमें हमें जो उनके पशुओं का वीर्य होता है, सीमेन की क्वालिटी होती है, वीर्य की गुणवत्ता होती है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अच्छी गुणवत्ता का वीर्य यूज़ नहीं कराएंगे डॉक्टर के द्वारा, और उससे हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार, अगर हम किसी भी देसी पशु को भी अगर हम अच्छी नस्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें अच्छी नस्ल का वीर्य डॉक्टरों से मंगवाना चाहिए। चाहे वो हमारी साहिवाल नस्ल है, गिर नस्ल है, या रेड सिंधी है, या जर्सी है, तो हमें अच्छी गुणवत्ता का सीमेन यूज़ करना चाहिए। और जो हम एक नस्ल सुधार के अंतर्गत किसी सामान्य पशु में किसी एक विशेष प्रजाति का वीर्य यूज़ करें, तो हमें लगातार फिर उसी प्रजाति का वीर्य लगातार यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली अगली नस्लें हैं, उनमें उसकी दूध की का उत्पादन जो है वो भी वृद्धि हो सके, दूध की क्वालिटी जो है की भी वृद्धि हो सके, दूध की क्वालिटी में जो हमारी फैट परसेंटेज है, प्रोटीन है, SNF है, उसकी भी क्वालिटी हो सके। क्योंकि वो सब हमारा जो हमारा एक जेनेटिकली होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसके भी हमारा सीमेन की क्वालिटी से इफेक्ट करता है, और पशुओं का दुग्ध उत्पादन में हमारी वृद्धि होती है।
1: जी, उत्तराखंड की हम बात करें तो हमारे किसान साथी दूरस्थ स्थानों में भी रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र यहाँ का है, तो वहाँ तक ये नस्ल सुधार कैसे किया जाएगा? क्या सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं?
0: सर, अगर हम देहरादून की, उत्तराखंड की बात करें, तो जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जितने भी हमारे नस्ल सुधार के अंतर्गत कार्यक्रम है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो हमारा कृषि से संबंधित कार्य चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग मिलती रहती है। स्पेशली जितने हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर हमारे पशु चिकित्सक होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 7 डेज या कृषि एग्जीबिशन, कृषि प्रदर्शनी मेला लगता है, वहाँ पर हमारे स्पेशलिस्ट वेटरनरी ऑफिसर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, वो नस्ल सुधार के संबंध में कार्य कर रहे हैं, और वो संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तथा जितने भी हमारे KVK हैं, जैसे हमारा देहरादून में KVK है, यहाँ पर भी हमारे जितने वेटरनरी ऑफिसर्स हैं, वो नस्ल सुधार के अंतर्गत अच्छी अच्छी जानकारी और जितनी हमारी योजनाएं हैं, वो किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं, कि गाँवों में संगोष्ठी करते हैं, वहाँ पर उनको जानकारी प्रदान करते हैं। और अगर किसी गाँव में किसी भी कारणवश अगर कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहा है या संगोष्ठी नहीं, तो वे डायरेक्ट भी जाकर, सीधे तौर पर जाकर किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पर वो उनको निःशुल्क सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, और उनको अच्छी गुणवत्ता का, अगर उनको वीर्य भी चाहिए, तो वहाँ से भी वो उनको पूरा संपूर्ण जानकारी उनको प्रदान की जाएगी, और वीर्य भी उपलब्ध कराया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, टीकाकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम टीकाकरण के माध्यम से रोक सकते हैं, और उन बीमारियों से बांझपन की समस्या भी आ सकती है।
0: जी, अगर हम देखें सर, पशुओं में टीकाकरण की बात करें, सबसे पहले जैसे हमारा कोई भी पशु है, जन्म के पश्चात और गर्भधारण करने की प्रथम आयु अर्थात 0 दिन से लेकर जब उसको 3 से 3.5 साल के बीच में जब प्रथम प्रथम बार गर्भधारण कराते हैं, उसके मध्य हमें प्रति पशु को

0: 6 महीने में एक डिवर्मिंग का टीका या डिवर्मिंग की दवाई अवश्य खिलानी चाहिए। अर्थात डिवर्मिंग मतलब पशुओं में जो पेट के अंतर्गत कीड़े या एस्केरिस जितनी भी हमारे सूक्ष्म कीटाणु पैदा हो जाते हैं उससे संबंधित पशुओं में अवश्य टीकाकरण कराना चाहिए। क्योंकि अगर हम पशुओं में जब तक टीकाकरण नहीं कराएंगे, उनको कीड़े मारने की दवा या डिवर्मिंग नहीं कराएंगे, तो पशुओं में जनन तंत्र संबंधित बीमारी उत्पन्न होती रहेगी। और एक जैसे हमारे पशुओं में हमारी ओवेरी होती है, अगर ओवेरी हमारी पूर्ण डेवलप नहीं है, जब तक हमारे पशुओं में हॉर्मोन्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भी पशु प्रॉपर हीट पर नहीं आ पाएगा, मध्यकाल में नहीं आ पाएगा। तो उसका भी हमें पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। और पशुओं में टीकाकरण जो है सर, हमें पशु चिकित्सक के अनुसार कराना चाहिए। क्योंकि जब तक पशु चिकित्सक किसी भी पशु को देखेगा नहीं, फिजिकली तौर पर उसको प्रत्यक्ष तौर पर देखकर उसकी अवस्था क्या है, वो देखकर उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जानकारी नहीं होगी पशु चिकित्सक को, तब तक एक हर पशु के शारीरिक भार के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार टीकाकरण क्या कराया जाता है। हम ऐसे किसी भी पशु को कोई भी टीका नहीं लगा सकते। पशु को जो भी टीका लगता है वो पशु चिकित्सक की जानकारी के अनुसार ही लगाना चाहिए।
1: जी, इसके अलावा ब्याहत के समय जब पशु ब्याहता है उस समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, या हम अपने जो बछड़ा है या बछड़ी है उसको दूध पिलाने की बात करते हैं।
0: जी सर, अगर जैसे हमारा कोई भी पशु प्रसव की क्रिया अगर हमारी प्रारंभ हो चुकी है, तो प्रसव की क्रिया से पूर्व सर मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। जितने भी हमारे दुधारू पशु होते हैं, हमें उनको जैसे गर्भकाल हमारा 9 माह का होता है, तो 9 माह से 2 माह पूर्व अर्थात 7 माह पूर्व ही हमें उनका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो उसके पोषक तत्व तो बच्चा अपने पोषक तत्व तो माता से ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए हमें 2 माह पूर्व उसको ड्राई कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए, दूध नहीं निकालना चाहिए, ताकि भ्रूण है उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, मादा को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। और जब प्रसव क्रिया होती है, प्रसव क्रिया के दौरान हमें कभी भी पशुओं में संपूर्ण दूध नहीं निकालना चाहिए। और बच्चा होता है जो हम जहाँ पर हम मादा पशु की प्रसव क्रिया चल रही है वहाँ पर हमें स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को हमें तुरंत साफ कर देना चाहिए। अगर उसकी नाक में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है, हमें उसको साफ कर देना चाहिए ताकि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ हमें विशेष तौर पर एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो मादा पशु होती है वो ब्याहने के बाद में जो जेर गेरती है, जेर गेरने के लिए उसके पास 18 घंटे के अंतर्गत मादा पशु को जेर डाल देनी चाहिए। परंतु किसी कारणवश अगर मादा पशु 12 या 18 घंटे के बीच में जेर नहीं डाल पा रहा है और जेर मादा पशु के पेट के अंदर ही रह जाती है, तो हमें पशु चिकित्सक की अवश्य मदद लेनी चाहिए। क्योंकि जो जेर होती है वो मादा पशु के जननांग के अंतर्गत रह जाएगी, जिससे संक्रमण पैदा होगा और उसका जननांग खराब होना शुरू हो जाता है। उससे मादा पशु को अगली बार गर्भधारण करने में समस्या होती है। या अगर हम बात करें, मादा पशु ने जेर गेर भी दिया और पशुपालक ने ध्यान नहीं दिया, कभी कभी पशुपालक व्यस्त हो जाता है किसी भी काम में, तो उस समय अगर मादा पशु ने गलती से या किसी भी कारणवश उस जेर को ग्रहण कर लिया और खा लिया, तो वो जेर जो होता है पेट में जाने के पश्चात एक तरह से जहर उत्पन्न कर देता है, जिससे मादा पशु के जननांग खराब होने शुरू हो जाते हैं। जे पशु के ब्याने के बाद में हमें जेर का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जब पशु का प्रसव क्रिया समाप्त हो जाती है, हमें मादा पशु को इस तरह का भोजन देना चाहिए कि जिससे मादा पशु को तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो सके। स्पेशली हम उसमें गुड़ या अजवाइन यूज करते हैं। साथ ही साथ हमें गुनगुना पानी पशु को पीने के लिए अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि प्रसव क्रिया के दौरान मादा पशु के शरीर में जल की काफी क्षति हो जाती है। जब कोई भी पशु किसी बच्चे को उत्पन्न करता है, तो जो हमारा बच्चा होता है उसको प्रारंभिक दूध अर्थात जो कोलेस्ट्रम या खीस उसको हम बोलते हैं, पेवस बोलते हैं, उसको हमें अवश्य ग्रहण कराना चाहिए। और जो बच्चा होता है उसका जो शरीर भार का कम से कम 10% उसको खीस अवश्य पिलाना चाहिए, ताकि जो नवजात बच्चा होता है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो उस कोलेस्ट्रम से, उसको खीस से या पेवस से उसको प्राप्त होती है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खीस के माध्यम से उसकी वृद्धि होती है और उसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ताकि भविष्य में जो बच्चा होता है तो वो रोगों के प्रति अपना सहनशीलता प्रदर्शित कर सके और कम प्रभाव दिखा सके बीमारी उसके ऊपर। अच्छी वृद्धि के लिए कोलेस्ट्रम या खीस हमें अवश्य उसको पिलाना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर गौरव जैन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे किसान साथियों को दी कि कैसे बांझपन की समस्या से हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं, अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों के साथ साझा करने के लिए, स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी पशुओं में बांझपन

किसान साथियों, सितंबर और अक्टूबर का महीना मौसम में बदलाव का समय होता है। मानसून धीरे धीरे विदा लेने लगता है, लेकिन कई क्षेत्रों में वातावरण में नमी बनी रहती है। ऐसे समय में पशुपालकों के लिए अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पशु हमारे परिवार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए केवल बीमारी के होने के बाद उपचार करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समय पर टीकाकरण कराकर बीमारी से पहले ही सुरक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। टीकाकरण पशुओं को कई गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचाने का

0: प्रभावी तरीका है। किसान भाइयों, अपने क्षेत्र में चल रहे पशु टीकाकरण अभियान की जानकारी जरूर लें और निर्धारित समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय पशु चिकित्सक से सलाह लें। स्वस्थ पशु ही स्वस्थ परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। साथियों, समय उचला है एक और लोकगीत का, लीजिए सुनिए ये रुहेलखंडी लोकगीत। श्रोता हूँ, आइए सुनवाते हैं आपको एक संदेश।
1: कहानियाँ इंश्योरेंस की।
2: उस दिन हांडा साहब ऑफिस से घर आए, उनके साथ दुग्गल जी भी थे। हांडा साहब को अपने घर का दरवाजा खुला मिला, सारा सामान बिखरा हुआ था, टीवी फ्रिज गहने सब गायब थे। जिंदगी भर की कमाई एक रात में चली गई थी। हांडा साहब ने दुग्गल जी के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सही सुझाया था आपने दुग्गल जी, अच्छा किया होम इंश्योरेंस लिया। चोरी से जो नुकसान हुआ है अब इंश्योरेंस कवर करेगा।
3: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए अच्छा किया इंश्योरेंस लिया .com एन इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।
4: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
5: LIC की अमृत बाल ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में जोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC हर पल आपके साथ। LIC की अमृत बाल ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में जोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC हर पल आपके साथ।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ही समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, देहरादून, 24801। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने साथी मधुसूदन नौटियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं, सुनिए कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारक दगड़ मी कुसुम लता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय यूबीआई लेन देन मा मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करनक केंद्र सरकारक फैसले पर रोक लगान बटी मना करो। बैंकों का आज बटी शुरू होने वाले 3 दिनक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। उत्तरकाशी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसी ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। मौसम में सुधारक बाद राज्य में चारधाम यात्रा फिर शुरू। केदारनाथ पैदल बाट चीरवासा में 8 जान बंद। और उत्तराखंड में संस्कृत के जनभाषा के रूप में बढ़ावा देने पर जोर। सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित करी जाए। और अब समाचार विस्तारल। सर्वोच्च न्यायालय 2000 रुपये बटी सकरग यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करनक केंद्र सरकार का फैसले पर रोक लगान बटी इनकार कर हेलो। यो शुल्क 15 अक्टूबर बटी प्रभावी हो छी। न्यायालय केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और द्वार प्रतिवादियों ने जवाब मांगरो और 4 हफ्तक अंदर जवाब दाखिल करनक निर्देश ले दी रो। न्यायालय को कि यो मुद्द कानून बटी ज्यादा तकनीकी छू। केंद्र सरकार और बटी पेश है अपर सॉलिसिटर जनरल N. वेंकट।

0: पर अमनल पीठ के बता कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता येल मुक्त रॉल। यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियंसल घोषणा कर रहे कि आज बटी छोड़ होने वाले 3 दिनक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी जा रहे। यह निर्णय भारतीय बैंक संघक दगड़ही समझौतक बात ली को सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशनल कह कि यह निर्णय बेई रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियंसक बीच हड़ताल बटी संबंधित मुद्दों पर हई बैठकक बाद ली गो। उत्तरकाशी जिलक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अलग अलग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण मार्गों पर फंसी लोगों के सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी छु। यही क्रम में कालिंदी ट्रैकक ऑडिन कोल क्षेत्र में फंसी सभी 29 ट्रैकर्स के आज हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाल भेर हर्षिल पहुंचाई गो। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनीत कुमार सुमनल बता कि ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के सुरक्षित निकालने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करी जा रहे। ट्रैकर राज चौहानल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव अभियान चलाना लीजिए सरकार और सेना का आभार व्यक्त करो।
1: अभी हम लोग ऑर्डन कॉल बेस कैंप से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हुआ है हमारा। जो स्टेट मशीनरी है जिसने आर्मी से लेके आपके SDRF एंड अदर यूनिट्स इन्वॉल्व थे, बहुत सिचुएशन काफी ट्रिकी थी, एरिया भी बहुत ट्रिकी है, काफी स्नोफॉल वहाँ गिर चुकी थी। बहुत ही प्रोफेशनली किया गया सर। यहाँ पे पहुँचने पे रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट, बेसिक मेडिकल चेकअप भी हुआ सारे जो लोग हैं यूनिट्स में, के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में सुधारक बाद आज चारधाम यात्रा फिर शुरू कर दी गई। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूपल बता कि यात्रा संचालन के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश जारी करी जा रही। शासनल जिलाधिकारियों के अपू अपू क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों अनुसार यात्रा संचालनक निर्णय लेने लीजी कह रहो। बाट बंद होने या सकर उद्योग स्थिति में यात्रा के अस्थायी रूप से रोकी जा सकू। यो बीच केदारनाथ धामक पैदल बाट चीरवासा पास सुधार और बाट के मजबूत करने काम जारी छू। यो बखत यो क्षेत्र में आणजणपुर तरीकल बंद छू। ध्यान देने वाली बात छू कि मौसम पूर्वानुमान और यात्रियों की सुरक्षा के देखते हुए 26 सितंबर के दोपहर बटी 27 सितंबर ताले चार धाम यात्रा के स्थगित कर रो छी। अल्माड़ा खौलबाग स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 53 कृषि विज्ञान मेल आयोजित करी गो। मेल में किसानों सागपात फलों बीज और हस्तशिल्प उत्पादों प्रदर्शनी लगे, जबकि संस्थानक ओरबटी विकसित आधुनिक कृषि तकनीकों और यंत्रों प्रदर्शन करी गो। संस्थानक निर्देशक डॉक्टर लक्ष्मीकांतल बता कि संस्थान अब ताले 25 ज्यादा फसलों 400 ज्यादा प्रजातियां विकसित कर चुकी छू जो किसानों के लिए लाभकारी साबित। डॉक्टर कांतालाल कौ की कृषि विज्ञान मेल किसानों ताले आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाना महत्वपूर्ण माध्यम छो।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: उत्तराखंड में संस्कृत के पाठ्य पुस्तकों बटी निकाल भीर आम बोलचाल और दैनिक जीवन ताले पहुंचानक लीजिए सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित करी जानी। दगड़े ही संस्कृत शिक्षा में चेलियों भागीदारी बढ़ानक लीजिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजनालय शुरू करी जरे। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गेरोलाल बता कि उत्तराखंड संस्कृत आयोग गठनक प्रक्रिया संस्कृत भाषा और शिक्षा के बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम छो। प्रस्तावित आयोग माध्यमल संस्कृत शिक्षा शोध प्राचीन पांडुलिपियों संरक्षण और उनर डिजिटलीकरण दगड़ भारतीय ज्ञान परंपरा के बढ़ावा देने पर काम करी जाल।
3: हमने ये संस्कृत ग्राम वाली जो परिकल्पना थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दिशा निर्देश है, हमारे मंत्री जी भी इसमें लगे रहते हैं। तो अभी हमने जो प्रारंभ किया है वो एक जिले में एक गांव। धीरे धीरे अगर हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती रहती है तो आने वाले 5 के अंतर्गत हम प्रत्येक ब्लॉक में, अभी तो हमारा एक जिले में एक गांव है, फिर एक ब्लॉक में हमारे 95 ब्लॉक हैं, हम हर ब्लॉक में एक गांव को चिन्हित करेंगे कि वहां संस्कृत संभाषण सिखा करके वहां की जनता को संस्कृत संभाषण सिखा करके और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जाए।
0: हरिद्वार में 30 सितंबर के जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेलक आयोजन करी जल। प्रभारी जिला सेवायोजन अधिकारी मुकेश प्रसाद रयालल बता कि मेल में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परा स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकनी। अभ्यर्थियों के उम्र 18-40 सालक बीच और उत्तराखंडक स्थायी निवास से हो जरूरी छू। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भोल के देहरादून में सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों के दगड़ त्रैमासिक बैठक आयोजित करोल। जिला समाज कल्याण अधिकारी बता की बैठक में अलग अलग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की समस्याओं और कल्याण बटी जुड़ी विषयों पर चर्चा करी जल और उन समस्याओं के सुनी जल। देश आज शहीद आजम भगत सिंहक 119वीं जयंती पर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करनो। भगत सिंहक जन्म आज ही का दिन साल 1907 में पंजाबक लायलपुर जिला बगा गांव में हो जो अब पाकिस्तान में छू। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइकक 10वीं वर्षगांठ मनानो। 28 और 29 सितंबर 2016 रात सेनाल नियंत्रण रेखा पार आतंकवादी ठिकानों में लक्षित कार्रवाई करी थी। 18 सितंबर के उरी आतंकी हमलक बाद यह कार्रवाई करी गई थी। आकाशवाणी में भी प्रसारित मनक बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि पिछड़ एक दशक में आतंकवाद बटी निपटने में भारत लल अपू ढंग में बदलाव लाई छू।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: मौसम विभागल आणवल 4 अक्टूबर ताले राज्यक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागसर और पिथौरगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्क द्योग संभावना जते रहे। वे राज्यक दोहर जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रूणक अनुमान छू। राजधानी देहरादून में आज रत्ती मौसम साफ रहो जबकि दोपहर के बाद कुछ जागों में हल्क बटी मध्यम द्यो हो। राज्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजियों और तली इलाकों में पिछड़ दिनों हई द्योल तापमान में गिरावट दर्ज करी गई। मौसम विभाग चारधाम यात्रियों और पर्यटकों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों यात्रा के दौरान ठंड बटी बचावक लीजिए, पर्याप्त गर्म लुकुड़ और आवश्यक सामग्री दगड़ में रखने की सलाह दी रहे। यो बीच पिछड़ दिनों हईद्यो और भूस्खलन कारण बंद सड़कों के खोलने काम तेजिल जारी छू। आखिर में मुख्य समाचार आई। सर्वोच्च न्यायालय यूपीआई लेन देन में मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने केंद्र सरकार फैसले पर रोक लगान बटी मना करो। बैंकॉक आज बटी शुरू होने वाले 3 दिनक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। उत्तरकाशी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसी ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। मौसम में सुधारक बाद राज्य में चारधाम यात्रा फिर शुरू। केदारनाथ पैदल बाट चीरवासा में आजान बंद और उत्तराखंड में संस्कृत के जनभाषा रूप में बढ़ावा देने पर जोर। सभी जिलों में आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित करी जल। यो का दगड़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों यो अंक ये खत्म हो। नमस्कार।
5: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म है नमक हलाल।

0: आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 7:50 हुए हैं। अब सुनिए विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून के राज्य की समसामयिक घटनाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम राज्य भर में पिछले सप्ताह घटित तमाम महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की बात करते हैं और ये समसामयिक घटनाएं तमाम श्रोताओं के साथ साथ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। श्रोताओं इस कार्यक्रम की शुरुआत हम पहले प्रश्न से करेंगे जो है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित। श्रोताओं पहला सवाल आपसे यही कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस गढ़वाली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसका उत्तर आपको बताते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म ढोली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल हाल ही में 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर यानी केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में गढ़वाली फीचर फिल्म ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार फिल्म के निर्देशक दिनेश पुंडलिक भोंसले को प्रदान किया गया और इस पुरस्कार समारोह में संताली फिल्म अंगेन और तुल्लू फिल्म

0: इम्बू को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2024 में प्रमाणित फिल्मों की उपलब्धियों के लिए प्रदान किए गए हैं। इसके विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को की गई थी तथा पुरस्कार समारोह 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और अमरन तमिल के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए। उत्तराखंड में वर्ष 2041 एवं 2045 के दीर्घकालीन विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कितनी महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं? क्या आपको इसका उत्तर पता है? चलिए हम बताते हैं। इसके लिए 98 महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं। दरअसल उत्तराखंड में तेजी से हो रहे शहरीकरण को व्यवस्थित एवं दीर्घकालीन स्वरूप देने के लिए कुल 98 महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन सभी महायोजनाओं को मुख्य रूप से वर्ष 2041 और 2045 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, ताकि शहरों का विकास भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। कुल 98 महायोजनाओं में अमृत वन के अंतर्गत 7 शहर तथा अमृत 2 के अंतर्गत 23 शहर शामिल किए गए हैं। अमृत वन के अंतर्गत शामिल 7 शहर हैं देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, नैनीताल और हल्द्वानी। अमृत 2 के अंतर्गत 23 शहर हैं कोटद्वार, श्रीनगर, पौड़ी, जसपुर, नगला, खटीमा, किच्छा, बाजपुर, सितारगंज, गदरपुर, रामनगर, मंगलौर, लक्सर, टनकपुर, गोपेश्वर, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 7 क्लस्टरों में 65 नगर निकायों के लिए महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत 3 अन्य महायोजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। इन महायोजनाओं में GIS बेस्ड प्लानिंग यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार राज्य देश का पहला राज्य बनने की दिशा में है, जहां द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के नगर निकायों के लिए भी GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए यह है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जल सृष्टि पार्क विकसित किया गया है? साथियों, क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। ये पार्क देहरादून के मियांवाला में बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पार्क का लोकार्पण किया। पार्क का विकास मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 8.64 करोड़ की लागत से किया गया है। ये पार्क देहरादून के मियांवाला यानी रायपुर क्षेत्र में एक पुराने तालाब का पुनर्जीवन कर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न। सितंबर 2026 में उत्तराखंड के चार धाम एवं पर्यटन स्थलों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी संसदीय समिति ने उत्तराखंड राज्य का दौरा किया है? श्रोताओं, इसका उत्तर है प्राकलन समिति ने। जी हाँ, हाल ही में संसदीय प्राकलन समिति द्वारा 24 से 28 सितंबर के बीच उत्तराखंड के देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश का दौरा किया गया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचे, तीर्थयात्री प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का जमीनी स्तर पर आकलन करना रहा। यह निरीक्षण केंद्र सरकार के देश के धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मुद्दों के आकलन विषय के तहत किया गया। साथियों, आप जानते हैं कि प्राकलन समिति लोकसभा की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है, जिसका गठन पहली बार 1950 में किया गया था। इसमें 30 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल सामान्यतः 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है। और अगला प्रश्न। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2026 का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया जा रहा है? तो श्रोताओ, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ जिले में किया जा रहा है। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2026 के यानी 18वें संस्करण का आयोजन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। नोमैडिक एलिफेंट 2026 का आयोजन 21 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। यह भारत और मंगोलिया के बीच वार्षिक प्लाटून स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत अर्ध शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। नोमेडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण मई से जून 2025 में उलानबटोर मंगोलिया में किया गया था। और इसके साथ ही अगला प्रश्न कि हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त द्वारा देहरादून के लोक भवन में विमोचित पुस्तक यात्रा फ्रॉम सोरो टू जॉय के लेखक कौन है? श्रोता, इसका उत्तर है डॉक्टर कृष्णा अवतार। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून के लोक भवन में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और लेखक डॉक्टर कृष्णा अवतार द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा फ्रॉम सोरो टू जॉय का विमोचन किया। डॉक्टर कृष्णा अवतार ने इस पुस्तक में एक चिकित्सक के रूप में अपने 3 दशक से अधिक के अनुभवों, आध्यात्मिक चिंतन और मानवीय संवेदनाओं को संकलित किया है। ये पुस्तक पाठकों के दुख को केवल एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि स्वयं को समझने और अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करने के एक अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही आगामी अर्धकुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए 709 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिनमें हरिद्वार में आगामी अर्धकुंभ मेले में पहले शहर में सड़क, पुल, स्नान घाट और पैदल मार्गों के निर्माण जैसे ढांचागत परियोजनाओं के लिए 709 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा निकासी को ध्यान में रखते हुए आस्था पथ का विस्तार हर की पौड़ी के पास धनुष पुल से लेकर बैरागी कैंप के आयरन ब्रिज तक किया जाएगा। श्रोता, अर्धकुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक समागम है, जबकि आप जानते हैं कि पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में होता है। इसके साथ ही वर्ष 2026 का विद्यासागर नौटियाल स्मृति साहित्य सम्मान संयुक्त रूप से किसे दिया जाएगा? तो इसका उत्तर है गुरुदीप खुराना और मदन शर्मा को। जी हाँ, वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित विद्यासागर नौटियाल स्मृति साहित्य सम्मान दून घाटी के 2 वरिष्ठ कथाकारों गुरुदीप खुराना और मदन शर्मा को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह सम्मान समारोह 29 सितंबर 2026 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। दरअसल विद्यासागर नौटियाल उत्तराखंड के माली देवल गांव टिहरी में जन्मे प्रसिद्ध वामपंथी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार थे। वे देवप्रयाग से विधायक भी रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं में टिहरी की कहानियां, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, यमुना के बागी बेटे, झुंड से बिछड़ा, भीम अकेला और मोहन गाता जाएगा शामिल हैं। यह सम्मान 2021 से शुरू किया गया था और पहला सम्मान सुभाष पंत को मिला था। वर्ष 2022 में यह सम्मान शेखर जोशी, 2023 में डॉक्टर शोभा राम शर्मा और 2024 में पंकज बिष्ट को प्रदान किया गया। 2025 में यह सम्मान साहित्यिक क्षेत्र के बजाय समाज सेवा के लिए प्रभात ध्यानी को दिया गया था। तो श्रोताओ, इसी के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी देहरादून है। रात के 8 बज रहे हैं। हिंदी वार्ता में आज सुनिए श्री शोएब समी से वार्ता। विषय है भगत सिंह, स्वाधीनता आंदोलन का अमर स्वर।
2: गुलामी और आज़ादी का अंतर वही समझ सकता है जिसने गुलामी का जीवन जिया हो। प्राचीन काल से ही एक क्षेत्र के शासक दूसरे क्षेत्र के शासक को हराकर उनकी जनता को गुलाम बनाते रहे हैं और तरह तरह के अत्याचार करते रहे हैं। ये तब और महत्वपूर्ण विषय बन गया था जब यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी विस्तारवाद नीति के तहत विश्व के अन्य राष्ट्रों को उपनिवेशवाद के तहत गुलाम बना लिया था। इसके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे देशों के क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करके अपने हितों के अनुसार शासन करता था। यूरोप के स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन आदि राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद को स्थापित किया था। गुलामी का जीवन जीते हुए भारत की जनता स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करती रही, परंतु ब्रिटिश शासकों के निरंकुश नीति के तहत भारतीय जनता में असंतोष फैलता गया। 19वीं सदी में

1857 की क्रांति के बाद आंदोलन होते रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए अनेक महापुरुषों ने अपनी जान का बलिदान दिया। इन्हीं में एक नाम है शहीद भगत सिंह। इतिहास के पन्नों में गूंजता यह नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की गाथा केवल युद्धों तथा संधियों की दास्तान नहीं है, यह उन चेतनाओं की महागाथा है जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में आज़ादी की मशाल जलाई। इस महागाथा का सबसे दीप्तिमान और उग्र स्वर थे अमर शहीद भगत सिंह। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे जो हाथ में पिस्तौल थामे ब्रिटिश हुकूमत के सामने खड़े थे, वे एक प्रखर विचारक, स्वप्न दृष्टा और दार्शनिक थे। उन्होंने क्रांति को हिंसा की तंग गलियों से निकालकर विचारों के खुले आकाश में ला खड़ा किया। उनका जीवन उस ज्वाला के समान था जिसने न केवल अंग्रेजों के अहंकार को झुलसाया बल्कि वर्षों से सोई हुई भारतीय जनचेतना को भी झंझोर कर जगा दिया। माटी का मोह और क्रांति का बीजारोपण 28 सितंबर 1907 को बंगा की पावन माटी में जन्मे भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे सिपाही थे जिनकी रगों में स्वराज का जुनून दौड़ता था। लेकिन इस बालक के मन में क्रांति का बीजारोपण हुआ था 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। महज 12 वर्ष की उम्र में जब एक बालक खेल कूद में व्यस्त रहता है, भगत सिंह अमृतसर पहुंचे। उन्होंने वहां की रक्त रंजित मिट्टी को एक शीशी में भरा और अपने पास रखा। वह मिट्टी आगे चलकर उनके क्रांतिकारी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने विश्व इतिहास, मार्क्सवाद, समाजवाद और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे लेनिन, ट्राटस्की और फ्रांसीसी विचारकों को पढ़ते थे। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सांप्रदायिकता से दूर रखकर राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के मार्ग पर लाना था। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया। नाम में सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द का जोड़ना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह इस बात का ऐलान था कि उनका संघर्ष केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं बल्कि शोषण मुक्त भारतीय समाज के निर्माण के लिए है। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंज उठे। लाहौर में इस शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक स्कॉट के आदेश पर हुए बर्बर लाठी चार्ज में लाला जी की गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः शहीद हो गए। लाला जी की शहादत ने पूरे देश के गौरव को ठेस पहुंचाई। HSRA ने तय किया कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर JP सैंडर्स को मार गिराया। यद्यपि लक्ष्य स्कॉट था परंतु सैंडर्स की मौत ने भी ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दिया कि भारत का युवा अब चुपचाप अत्याचार सहने वाला नहीं है। ब्रिटिश सरकार जब देश के मजदूरों और आम नागरिकों के अधिकारों का दमन करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जैसा काला कानून लाने जा रही थी, तब भगत सिंह ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली जगह पर दो बम फेंके। बमों का धमाका किसी को मानने के लिए नहीं बल्कि नींद में सोई ब्रिटिश हुकूमत के

0: कान खोलने के लिए था। धमाके के बाद उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, उन्होंने हाथ उठाकर इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए और स्वेच्छता से गिरफ्तारी दी। वे जानते थे कि आंदोलन का मंच उनके विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम बनेगा। जेल जाने के बाद भगत सिंह का वैचारिक संघर्ष और भी तेज हो गया। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ यूरोपीय कैदियों की तुलना में जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इसके खिलाफ उन्होंने 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इस दौरान उनके प्रिय साथी यतीन्द्र दास शहीद हो गए, लेकिन भगत सिंह का हौसला नहीं टूटा। जेल में ही उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा। इस लेख में उन्होंने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले आडंबरों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने साबित किया कि उनका विरोध केवल राजनीतिक गुलामी से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक गुलामी से भी है। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चले मुकदमे में भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत के कटघरे को क्रांति का मंच बना दिया। उनको आंदोलन के लिए लाया जाता अदालत में उनके गगनभेदी नारों से पूरा सदन गूंज उठता। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भगत सिंह जेल के बाहर जितने खतरनाक हैं, जेल के अंदर भी उतने ही खतरनाक हैं। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। 23 अप्रैल 1931 का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा वह पन्ना है जो हमेशा अमर रहेगा। जनाक्रोश से डरी हुई ब्रिटिश सरकार ने नियत समय से 12 घंटे पहले शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का फैसला किया। तीनों वीरों ने मेरा रंगदे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। भगत सिंह ने कहा था, व्यक्तियों को मारकर विचारों को नहीं मारा जा सकता। आज भले ही वे हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद ना हों, लेकिन जब भी देश में सामाजिक न्याय, समानता और वैचारिक स्वतंत्रता की बात होती है, तो भगत सिंह का स्वर सबसे आगे गूंजता है। वे स्वाधीनता आंदोलन की आत्मा थे और आज भी भारत के विवेक का अमर स्वर हैं। भगत सिंह का जीवन बताता है कि सच्ची देशभक्ति केवल देश के लिए मरने में नहीं, बल्कि देश का भविष्य सोचने में भी है। प्रश्न पूछना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी राष्ट्र सेवा है। आज भगत सिंह को याद करने का सार्थक तरीका केवल उनके नारे दोहराना नहीं, बल्कि उनके तर्कशील और न्यायपूर्ण समाज के सपने को समझना है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, जिसका विषय था भगत सिंह स्वाधीनता आंदोलन का अमर स्वर। वार्ताकार थे श्री शोएब समी। रात के 8:10 हुए हैं। विशेष सीरीज़ के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल, और ये NSD की प्रस्तुति है।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गांव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का

0: सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद और नमस्कार।
0: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए। और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
2: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में। सबसे पहले जो ड्रॉपआउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉपआउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो जनवरी 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही है, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
0: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
1: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे,

0: एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था। तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा, आयशर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था, और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था, क्योंकि ये प्रारंभिक है, तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था, ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर। जैसे वो घर में अभी तक रहा, उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉप आउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान, यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय, इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता। और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही, उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया, और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉप आउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी,
2: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फोरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
0: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपने तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वहां भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई है, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई है, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
1: जी,
0: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं UGC में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उनको ऑटोनमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं, उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है, पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं BA हूँ, मैं MA हूँ, मैं PhD भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और UGC के माध्यम से भी कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें,

0: इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है। एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ऑनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है और इसमें बहुविषयक और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और IITs का नंबर बढ़ाया गया है, IIMs का नंबर बढ़ाया गया है, NITs बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए, ICERs बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है,
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला ABC सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पर आधारित था, ज्ञान, जो नॉलेज, विजडम, प्रज्ञा और ट्रूथ, सत्य को अचीव करने के लिए। सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका, ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर किए, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है। अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में हैं, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है। जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले दो दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
0: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो दो मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है। और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए, तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, पीएम KVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे आईआईटीज होती थी स्किल करने के लिए, आईआईएम्स थे, लोअर लेवल पे आईटीआईज वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम्स जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
3: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो 2 दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए। घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से, कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
0: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, 9वां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी ये है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको अर्थ कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
2: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को यह भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीले देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सके। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: जी बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष सीरीज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल। ये प्रस्तुति NSD की थी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम रात के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए समाचार।
5: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
6: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
7: Annually, we have been meeting regularly.
8: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
7: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
9: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
5: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
11: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
12: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
11: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
13: So if you want to make more export,
14: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
13: 6% so it comes to 10%.
5: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
15: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
16: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
15: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को
17: एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
16: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
18: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
16: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
19: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons

0: कलाकार फिल्म से गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: कहानियाँ इंश्योरेंस की।
2: 11:05 हो रहे थे। हर रोज की तरह मेरी आंटी सोसाइटी के कुत्तों को बिस्किट खिलाकर घर आई। शांताबाई घर का फर्श पोछ रही थी कि अचानक मेरी आंटी का पैर गीले फर्श पर से फिसला और मारी बिस्किट की तरह टक से उनकी हड्डी टूटी। हॉस्पिटल का लंबा बिल देखकर मेरी आंटी हिचकिचाई नहीं बल्कि हंस के बोली, अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब बिल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा।
3: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए achakiainsurancelia.com एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।
4: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
1: कहानियाँ इंश्योरेंस की।
2: उस दिन घोष बाबू लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, तभी उनके कान के पास कोई गुनगुनाने लगा, एक मक्खी। घोष बाबू ने उसे मारा नहीं, फिर भी किस्मत ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। बोनट पे बहुत बड़ा डेंट आया था पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं थी बल्कि मुस्कुराकर बोले, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया, अब गाड़ी की मरम्मत का खर्चा इंश्योरेंस देगा।
3: मुश्किल वक्त में सब यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विजिट कीजिए achakiainsurancelia.com एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। रात के 10 बज रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और इतना बड़ा मंच, उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियाँ। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह जलवा रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली शशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसने गलत साबित किया। नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर, तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए। लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर दूरी फरांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओक्षी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15 मिनट 14

0: 1.6 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया। लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनुराघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हीट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई। लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णय शूट ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट ऑफ में हुआ लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games while at the 2022 Games her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
0: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक दिस प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarterfinals.
0: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
0: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को

0: डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। तीन खेलों में तीन बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में नवे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में चौथे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र अनुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में छठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।

0: The stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals. And India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किप और डिंग की स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। राश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुरबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज के इस कार्यक्रम में मैं वंदना आप सभी को नमस्कार करती हूं और हमेशा की तरह कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारा नंबर नोट कीजिए। नंबर है 7088000731। इस नंबर पर आप भेज सकते हैं अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने पसंद के गीत के साथ अपना मैसेज। मैसेजेस बहुत सारे आ चुके हैं, तो पहला मैसेज जो हमें मिला है वो हम लेते हैं। ये मैसेज आया है ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतेही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ, अनाविया, अलीशा, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, अफान सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं। दूसरा मैसेज हमारे पास आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का चंडीगढ़ से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, जो कि पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज भेज रहे हैं सनावत से शेखा मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना। और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है नई बस्ती गंजडुनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की। साथ ही मैसेज मिला है गांव फारसी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी हमें मैसेज कर रहे हैं। अगली फरमाइश आई है आप श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और नागलोई दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और गीतिका खोरवाल। साथ ही मैसेज कर रहे हैं हमें गंजडुनवारा से ही आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लूबना अंसारी और आलिया अंसारी। और इन सबकी पसंद का कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है एम असलम सैफ़ी, ज़ैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफ़ी, सोनी सैफ़ी, जाहिद सैफ़ी और आबाद खान की। ये हमें मैसेज कर रहे हैं बलराम गेट कासगंज से। साथ ही मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। कार्यक्रम में अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं जनेश्वर कुमार आलूवालिया, बालेश्वर कुमार आलूवालिया, राकेश कुमार, डुग्गू, नंदू, किट्टू, कुलश्रेष्ठ, सारांश और वेदांत चीकू आलूवालिया। ये हमें ज़िला मुजफ्फरनगर से मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का। और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्या मस्कीन, मेघा मस्कीन हमें मैसेज कर रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। साथ ही चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रदान खुराना का मैसेज हमें मिला है। हमें मैसेज मिला है आप श्रोता हैं जलालबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। साथ ही मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, सब्जी मंडी झज्जर से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगली फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही और मेर जहां, ये हमें मैसेज कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। इन सबकी पसंद का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सभी के लिए।

संबलपुर कांके से फागुनाम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे पास जलालबाद शामली से मैसेज आया है सोनू कश्यप और राजू कश्यप का। साथ ही अगले श्रोता हैं फाजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा और शालिनी तिवाशी, वाणी आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार हमें मैसेज कर रहा है। इसके साथ ही मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज आलम हाशमी, असद आराम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीम, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, जो कि गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू पटेल नगर मालौट से हमें मैसेज कर रहे हैं। अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं राजेंद्र।

रविंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, जो कि बठिंडा रोड मंडी डाबवली से हमें मैसेज कर रहे हैं, और इसके साथ ही अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी, जो कि मोहल्ला बरादरी महमूद खां रामपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं। और बहुत सारे श्रोता ने लिखा है कि आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिवस है, और उसकी बधाई देते हुए हमारी ओर से भी आप सभी को इसकी बधाई, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हीं का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज़ में। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। रात के 10:40 होने को हैं स्टूडियो क्लॉक में। एकता कॉलोनी रोहतक से हमें अगला मैसेज मिला है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध और अंकित कांगड़ा का। साथ ही मैसेज हमें कर रहे हैं आकोट से विनायक, श्रीमती मंगला भेंडे, विजय, शुभम भेंडे, पवन जरिए के, संजीव डाबे राव। और साथ ही मैसेज करने वाले अगले जो श्रोता हैं उनका नाम है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनफ यशव अब्बासी, जो कि मारहरा दरवाज़ा एटा से हमें मैसेज कर रहे हैं। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है गंजडुनवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव की। ग्राम चातुपुर कुंदर की, मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मोअजम मुस्तफ़ा और गौसिया भी हमें मैसेज कर रहे हैं। और साथ ही मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रामदेव पटेल, फैजल इमाम, अरविंद कुमार झा, राजेश पटेल, रुद्र प्रताप संगम बिहार से, रणधीर कुमार, धीरज परिचय, सत्यम, शिवम सुंदरम हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं, ये श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भाटिया, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। और इन सब की पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगली फरमाइश शिवाजी चौक कटनी से आई है। अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस, सौम्य और इनके पूरी फैमिली हमें मैसेज कर रही है। साथ ही मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं जैन मंदिर वाली गली कुरवाली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान के। सिंधौली बरेली से जशान वारसी हमें मैसेज कर रहे हैं। जसपुर रोड दूल्हापुर ज़िला मुरादाबाद से महमूद दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और अलशिफा अंसारी का मैसेज हमें मिला है। कार्यक्रम में अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना, निवान शर्मा मैसेज कर रहे हैं। अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं अस्तपुरा ज़िला मऊ से मज़र अली अंसारी, राज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आज़ाद हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं हमें मैसेज कर रहे हैं शेख जियाउर रहमान हमें मैसेज कर रहे हैं और

वेस्ट अफ्रीका से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर से, बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा, नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इन सबकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोम की गुड़िया से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से और रात के 10:54 स्टूडियो क्लॉक में हुए हैं। कार्यक्रम में कुछ अंतिम मैसेजेस अब लेने जा रहे हैं क्योंकि अब पेश करेंगे कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है कोहली नादेर से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, उत्तम कुमार जमदाड़े और वाकोडी से हमें ये मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज करने वाले श्रोता हैं गांव झगुड़ी ज़िला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज का मैसेज मिला है। कार्यक्रम में अगली फरमाइश परी महल कासगंज से आई है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से मैसेज कर रहे हैं आफरीन खान और ज़मीर खान। साथ ही मैसेज भेजने वाले अगले जो श्रोता हैं वो हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाकर, निर्मला विशाल, साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुनेकर मैसेज कर रहे हैं। कार्यक्रम में अगली फरमाइश भेजने वाले जो श्रोता हैं कस्बाना चिलकाना से ज़रीफ़ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, नाजिम अंसारी और दानिश अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं। हमें मैसेज कर रहे हैं जसपुर रोड दूलापुर ज़िला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार और साथ ही मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं बंडू लोहार, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़ और बंडू पोपलगढ़, ये हमें मैसेज कर रहे हैं खुपटी महाराष्ट्र से। अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा, लाल कुट्टी रोड की कैंट से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और कार्यक्रम का जो अंतिम मैसेज हमें मिला है वो मिला है आदर्श नगर मौलौट पंजाब से राज शर्मा, ये मैसेज हमने लिया था। श्रोताओं आपसे बेहद और बार बार हम गुजारिश करते हैं कि अगर एक बार किसी का मैसेज शामिल हो जाए तो कृपया आप दोबारा मैसेज ना करें। आखिरी मैसेज जो हमें मिला है गांधी चौक राजस्थान से मिला है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार हमें मैसेज कर रहे हैं खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान। और इन सबकी पसंद का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अलका याग्निक की आवाज़ में आप सभी के लिए। और इस गीत के साथ ही मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 107.5 MHz पर। रात के 11 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुवाट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय